सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 2, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: शास्त्र ज्ञान भेनै की हुए। जीवन जीबाक कला जँ नहि अबैछ तो शास्त्र ज्ञान कोनो काज नहि देत। दोसर दिस जँ शास्त्र नहि अबैछ आ व्यावहारिक कुशलता अछि तो संसार यात्रा सुचारू रूप सँ पूर्ण है। क्यों पंडित जी बड़ पैघ शास्त्रवेत्ता रहथि, ओ नाव पर यात्रा कऽ रहल छलाह। यात्रा समय साध्य रहनि, नाव पर दुइये गोटे रहथि, स्वयं आ नाव खेनिहार केवट। केवट तो अपना काज में व्यस्त छल, पंडित जी चुपचाप बैसल रहथि। मौन भंग करैत पंडित जी केवट के पूछलखिन, तोरा धर्मशास्त्र पढ़ल छौ? केवट अकचकाइत बाजल, केकरा कहै छै धर्मशास्त्र? पंडित जी घोर उपेक्षा भाव सँ ओकरा कहलखिन, जखन नामो नहि सुनल छौ तहन तू की बुझबहक? अच्छा कह, गणित पढ़ल छौ? केवट अस्वीकार में मात झुला देलक। पंडित जी पुनः पूछलखिन, इतिहास, आयुर्वेद, दर्शन किछु छौ पढ़ल? केवट बाजल, पंडित जी पाँचे बरखक रही तखने बाप करुआर धरा देलक, हम भट्ठो नहीं धो सकलों, तखन अहाँ जे पूछै छी से हमरा कोना बुझल रहत? पंडित जी बजला, जा, तोहर जीवन व्यर्थ भ गेलो। जे व्यक्ति शास्त्र नहि पढ़लक ओकर जिनाई बेकार। केवट पंडित जी कथन पर कोनो ध्यान नहीं दो अपना काज में लागल रहल। कने कालक बाद उठले बिहार, नदी में नमहर नमहर तरंग उठ लगले, नाव दोलायमान होम लागल, होय जना आब उंटते आब उंटते। केवट पंडित जी के पूछलकन, पंडित जी बिहार बड़ तेज अछि, नाव उनट जेबे करत, हेलो अबैय? पंडित जी भयातुर भ के बजला, नहि हमरा हेलो कहाँ अबैय, तु ही कोनो उपाय कर, कहुना जान बचाब। केवट जी जान सँ करुआर चलबऽ लागल, कहुना बीज धारा सँ नाव का दिस जाय, एहि लेल प्रयास करऽ लागल। किंतु धाराक वेग प्रबल रहिक, नाव सम्हारनाय संभव नहि रहिक। अंततः केवट धोती फोललक, अंगपोछा पहिर लेलक, धोती लग्गाक छोर में कसिक बान्हि देलकै आ धोतीक छोर पंडित जी के पकड़बैत बाजल, कसिक धेने रहब? ई कहि ओ लग्गा नेने धारा में कूदि पड़ल। नाव उनटि गेलै, किंतु केवट पंडित जी के सुरक्षित तट तक घीच आनलक। नदीक अहरी पर पहुँचलाक बाद केवट बाजल, पंडित जी अहाँ के हेलनाय आबों सीख लेबाक चाही, एहन एहन बेर में काज देत, शास्त्र कोनो काज नहि देत। पंडित जी निरुत्तर भ गेलाह।
1: श्रोता सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। सुबह के 5:55 हुए हैं, समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।
2: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। संतुलित आहार सब जीव जंतुक लेल आवश्यक अछि, मुदा दुधारू पशुक लेल ई बेसी आवश्यक अछि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन के बड्ड बेसी योगदान अछि। तो आओ किसान भाई लोकनि, आइ कृषि चर्चा में दुधारू पशु के संतुलित आहार केहन हेबाक चाही आ एकर ओरियान कोना करी, एहि संबंध में विस्तार सँ गप करी। पशु सभक आहार के मात्रा ओहि पशु के दूध उत्पादन क्षमता आ प्रजनन के आवश्यकता पर निर्भर करैत अछि। पशु के सामान्य रूप सँ कुल आहार के 50% भूसा आ चारा आ बाँचल आहार के 50% दाना के मिश्रण सँ पूरा करबाक चाही। चारा में दलहनी आ गैर दलहनी फसिल सभक चाराक मिश्रण देव सेहो उचित अछि। अपन सभक देश भारत में जुगाली करय वाला माल जाल के संतुलित आहार के व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानीय रूप से भेटय वाला दाना आ खल्ली के दूध उत्पादन के हिसाब से देबाक चाही।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: जना जना समय बीतल जाय मनुष्य जीवन जटिल सँ जटिलतर भेल जाय, जीवन संघर्ष बढ़ल जाय आ ओहि संघर्ष में सफल हेबाक लेल मनुष्य के नित्य नवीन युक्ति सोच पड़े। एही संघर्षमय जीवन में वह व्यक्ति सफल भ सकै छ जकरा जीवाक लूर छैक, जकरा नै छैक ओकरा संघर्ष तोड़ि दै छैक, मेटा दै छैक। समस्त ज्ञान विज्ञान रीति नीति आचार विचार आ कला कुशलता मनुष्य के यह लूरि सिखबै छ, संसार में कोना रही, सांसारिक संबंधक निर्वाह कोना करी, लोक आ वेद दोनों के रक्षा कोना करी, कोना संसार यात्रा सकुशल पूर्ण करी, यह तो मानवीय चेतना के मूल उद्देश्य थिक। देखल जाय छ जे लोक शास्त्र पढ़ियो के व्यावहारिक दृष्टिएं अकुशल रह जाय छथि,

0: अनेक तरहक खाद्य पदार्थ सब में अलग अलग तरहक पोषक तत्व सब प्राप्त होते है। किसान भाई लोकन के एहन आभास त निश्चित रूप से भेल हेतन जे दाना चोकर खली खनिज पदार्थ आ विटामिन के उचित अनुपात में मिला कर पशु के देल जाए तो पशु के भोजन के आपूर्ति निक जका भ जाते है। खाद्य पदार्थ के संतुलित मिश्रण के आवश्यकता जलवायु अतिरिक्त क्षेत्र के विचार से बनावल जाते है। संतुलित मिश्रित पशु के आहार के मुख्य घटक संबंध में जो विचार करी तो ओ अछि पहिल दाना। दाना में अपने मकई ज्वार गहूम चाउर जई जौ मरुआ मिलेट सब व्यवहार कर सकै छी। चोकर के रूप में अपने मालजाल के तेल रहित चाउर के चोकर गहूम आ मकई के चोकर के व्यवहार सेहो कैल जा सकते है। प्रोटीन खलीक रूप में सरसों के प्रोटीन सोयाबीन मूंगफली नारियल पाम तिल तीसी आ सूर्यमुखी के खली के व्यवहार कैल जा सकते है। चुन्नी एलेल राहर उरीद मूंग चना व आन दलहनी फसल के चुन्नीक रूप में व्यवहार करब उचित है। अब ई प्रश्न उठब स्वाभाविक है जे संतुलित आहार कोना बनाओल जाए। अनेक तरह खाद्य पदार्थ सबके 3 मिलीमीटर धरि पीस देल जाते है। पिसला के उपरांत एकरा नीक जका मिला लेल जाते है। किछ खास भोज पदार्थ सब जकर व्यवहार कम मात्रा में होत है जेना विटामिन खनिज लवण कैलासाइट पाउडर नोन एकरा मिलाकर सुरक्षित राखल जाइत अछि। आप सबटा पिसल सामग्री के सुखायल भाप से जीवाणु प्रभाव खत्म करबाक लेल पास करायल जाइत अछि। एकर बाद जूट के बोरा में भर कर राखल जाइत अछि। एकर उपयोग पशु के आहार के रूप में कयल जाइत अछि। संतुलित पशु आहार के गुणवत्ता के नियंत्रण के संबंध में जो गप करी तो पशु के आहार उत्पादन में सबसे पहिने हरेक खाद्य पदार्थ के प्रयोगशाला में नीक जकां जांच कयल जाइत अछि। पशु के आहार के गुणवत्ता सुनिश्चित करबाक लेल सब तरहक मिलावटी व संक्रमित खाद्य पदार्थ के हटा देल जाइत अछि। पशुपालन आ डेयरी विभाग आ कृषि विभाग द्वारा 3 तरहक मिश्रित संतुलित आहार के अनुशंसा कयल गेल अछि जे एहि तरहे अछि। मिश्रित पशु आहार के प्रकार होइत अछि अपन सभक देश के अनेक भाग में निम्न मध्यम आ बेसी मात्रा में दूध देबय वाला दुधारू पशु सब भेटैत अछि। तैं पशु आहार निर्माता अलग अलग तरहक पशुक आहार के निर्माण करै छथि। शुष्क पदार्थ के आधार पर मिश्रित पशु आहार के मानक टाइप 1 मिश्रित संतुलित पशु आहार एहि में कांच प्रोटीन 22%, कांच वसा 40%, फाइबर रेशा 10%, सिलिका 3%, विटामिन ए आई यू 7000, विटामिन डी आईयू प्रति किलोग्राम 1200, विटामिन ई आईयू प्रति किलोग्राम 30, नोन के मात्रा 1%, कैल्शियम 0.8%, फास्फोरस 0.5%। एकर अतिरिक्त किछ आन पदार्थ सब सेहो मिलाओल जाइत अछि। एहि संग आब आजुक कृषि चर्चाक समय संपन्न भ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 होने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम

0: वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय है नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: नेत्र रोग के क्षेत्र में ये जो चिकित्सा की जो नई नई तकनीक आ रही है वो कैसी तकनीकें हैं ये बताइए।
3: जो मॉडर्न डेवलपमेंट हम लोगों के विभाग में हो रहा है, 3 डिवीजन में उसको बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कैटरैक्ट रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा है, पहले जैसे था कि 55 साल का आदमी हो गया, रिटायर कर गया, घर बैठ गया, अब एक 60 साल का आदमी भी एक्टिव जिंदगी लीड कर रहा है, तो उसको भी एक अच्छी रोशनी की रिक्वायरमेंट है। तो कैटरैक्ट मोतियाबिंद एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा आदमी को कैटरैक्ट होगा। कैटरैक्ट होगा तो पहले जब हम लोग कहते थे कि मोतियाबिंद पकने दीजिए, जब अंधे हो जाइएगा तब आइएगा, अब हम लोग ये नहीं कहते,
2: मैच्योर हो जाए तब।
3: जी, अब हम कहते हैं कि आपको आपके दिनचर्या में दिक्कत हो रही है और आपकी रोशनी अगर 95% भी है तो हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। इतना अच्छा लेंसेज आ गया है और इतना अच्छा मशीन आ गया है कि बिना सुई और बिना पट्टी के ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन

0: के बाद जो नज़दीक के लिए चश्मा लगता था पहले, अब उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
1: क्या है ये तकनीक?
0: इसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं
1: जी,
0: और ये एक बहुत सूक्ष्म छेद से ऑपरेशन होता है जिसमें हम प्राकृतिक लेंस निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस या तो मोनोफोकल या मल्टीफोकल आँख में लगा देते हैं। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो पर्दे की बीमारियों में है। पहले डायबिटीज़ अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद होती थी, मगर आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि 20-25 साल के लोग बहुत तादाद में डायबिटिक हो रहे हैं। और ये जितने यंग एज में डायबिटिक होते हैं उतने जल्दी उनके नस में कमजोरियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चीनी के वजह से जो पहले पेशेंट अंधा हो जाता था वो अब हम रोक लेते हैं, या ब्लड प्रेशर के वजह से नस जो फट जाता था आंख के अंदर, खून की नली फट जाती थी, जिसका हमारे पास बहुत कारगर उपाय पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास आधुनिकतम मशीन आ गई है जिससे हम जांच लेते हैं।
1: कौन सी मशीन है?
0: इसको हम लोग OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी मशीन। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ही आंख के पर्दे का एंजियोग्राफी करते हैं। इससे हम लोग एंजियोग्राफी मशीन से हमें ये मालूम चलता है कि जो खून की नली है उसमें रिसाव हो रहा है या ब्लॉकेज है कि नहीं। और OCT ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी से हम पर्दा के डिफरेंट लेयर्स में सूजन है कि नहीं इसकी जानकारी ले लेते हैं। और डिपेंडिंग ऑन सूजन है कि रिसाव है, आँख के अंदर सुई देते हैं या फिर लेजर प्रक्रिया से उस लीकेज को बंद करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम अपने पेशेंट को फिर से अच्छी रोशनी दे सकते हैं, जो साधन हमारे पास पहले नहीं था।
1: पहले जांच ही नहीं हो पाती थी,
0: जांच ही नहीं हो पाती थी, हम जान ही नहीं पाते थे और हम कर ही नहीं पाते थे। जिन चीजों पर बताया जाता था जितने रोशनी कम होने के बाद इंटरवेंशन था, अब आजकल हम लोग नॉर्मल रोशनी में आंख में सुई डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजन दिख रहा है। एंड आई नो कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो 3 महीने बाद मेरे पेशेंट की रोशनी कम हो जाएगी।
1: एक भयावह स्थिति जो बन जाती है वो है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद।
0: ग्लूकोमा बिल्कुल भयावह स्थिति नहीं है।
1: अच्छा,
0: ग्लूकोमा भयावह स्थिति डॉक्टर के डायग्नोसिस मिस करने से और पेशेंट के को बीमारी की
1: जानकारी नहीं होने,
0: बीमारी के सिवेरिटी को और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझने के वजह से, जो तालमेल डॉक्टर और पेशेंट में नहीं होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया और आप उसका इलाज ठीक से कराते हैं, समय समय पर जाके दवाई चेकअप कराते हैं, प्रेशर चेकअप कराते हैं और अपना जाँच करा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी कट जाएगी, आपको रोशनी में कमी नहीं होगी। होता क्या है, लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने दवा लिख दी, मैं दवाई डाल रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिंदगी कट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद हो, मधुमेह हो, उच्च रक्तचाप हो या ग्लूकोमा हो
0: जी,
1: इन सारी स्थितियों में अगर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही वक्त पर इस्तेमाल करें, तो बहुत फायदा हो सकता है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आज विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आशीष शेखर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए ना इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। कहते हैं प्रातःकाल में जिस तरह सूर्य की प्रकाश निकलने के साथ ही अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, वैसे भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारे मन में जो विकार रूपी अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो स्वतः ही सूर्य प्रकाश के आने के साथ ही जैसे अंधकार दूर हो जाती है, वैसे ही ईश्वर के पावन नामों का उच्चारण या श्रवण मात्र से ही हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। आइए ना अपने मन को विकारों से मुक्त करें, प्रभु के चरणों का ध्यान करें।

कहते हैं जो पतित को भी पावन कर दे वही तो भगवान है। कहते हैं जिनके सामने सब बराबर होते हैं, न कोई ज्ञानी होता है ना ही कोई अज्ञानी, न निर्बल ना ही बलवान, जो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो सबको अपना ही पुत्र और पुत्री समझते हैं, जो हर वक्त हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे उदार कृपालु ईश्वर की शरण में जब हम आ जाएं, तो भला हमारा कौन बाल बागा कर सकता है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण, सद्विचार, ये वो गुण है जो हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। जब हम सब में अपने उसी आराध्य की छवि को देखने लगते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर हो रही है।

0: श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओ, आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड 38 38।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

श्रोता सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR। हमारे इस ऐप के माध्यम से आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10 फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 से 11 तक। दोपहर 12 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम फिल्म संकेत। महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम सुनिए नारी संसार दोपहर 12:30 पर, और दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकर

0: आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड नंबर है 846004। कुछ रोजगार संबंधी सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। शाम 6:10 पर आज आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। शाम 6:15 पर आज आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापति के। गाम घर कार्यक्रम होगा अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नन्ना मुन्ना राही, बच्चों के लिए ये कार्यक्रम। और किसान भाई सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी अपने निर्धारित समय शाम 7 से। रात 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। श्रोताओं आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य के। और रात 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। बारिश के इन दिनों में अपने घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। उन्हें वैसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे गड्ढे हो। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस समय सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। अब संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तत्क्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट ट्रैक इति शीघ्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने

0: की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झारी से स्वागत और नमस्कार। संगे ही प्रतिभाजी अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार आशुतोष जी, साथ ही सुनने वाले समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार।
0: शुक्र दिन अपना सब लौक आवे छे ने श्रोतागण के लिए ढेर हूँ जे रास सामग्री है से सब ने मुदा कार्यक्रम के शुरुआत अपना सब सदैव सुविचार से करी छी। तो किया ने पहले सुविचार आ कह दिए
1: सुभाषितानी है आज का। कहते हैं नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपह, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, मोह या आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है।
0: बहुत सुंदर उक्ति यहाँ कहलूँ हाँ जे ठीके है जे विद्या से बढ़ कर कोनो आँख नहीं, क्या कि ज्ञान ही से मनुख सही और गलत का विवेक

0: प्रदान करै छथि ने। सत्य से बढ़ के कोनो तप नहीं, क्योंकि सत्य के पालन करबाक लेल साहस धैर्य आ आत्म संयम के आवश्यकता होइत अछि।
1: बिल्कुल,
0: मोह आ आसक्ति मनुख के दुख के प्रमुख कारण अछि, क्योंकि ओ अपेक्षा आ चिंता बढ़बैत अछि। ओते त्याग सबसे पैघ सुख दैत अछि, क्योंकि त्याग से मन में शांति संतोष स्वतंत्रता और आत्मिक आनंद के अपना सबके अनुभव होइत अछि। ई श्लोक अपना सबके ज्ञान अर्जित करवा, सत्य के मार्ग पर चलवा, अनावश्यक आसक्ति से बचवा और उदारता के संग ही त्याग के जीवन में अपने बाग प्रेरणा देता है।
1: निश्चित तौर पर, और जो इन सब चीजों को इन बातों को समझ पाते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं।
0: ठीक है कॉलम,
1: और इतिहास की बात निकली तो जान लेते हैं आज के दिन का इतिहास क्यों है। आज का दिन इतिहास के आईने में खास। तो आज ही के दिन अर्थात 24 जुलाई 2000 को एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। आज ही के दिन यानी 24 जुलाई 1830 की बात करें तो चिली में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। 24 जुलाई 1991 में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति के साथ एलपीजी पॉलिसी की घोषणा की, जिसके तहत देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव मानी जाती है और इसके बाद देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ। 24 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव मिशन अर्थात अपोलो 11 को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में उतारा गया था।
0: बहुत सुंदर जानकारी सब अपना सब जे छे से श्रोतागण के समक्ष रख लो। मुदा देखियो अपना सब कार्यक्रम में ढेरों रास सामग्री आने छी, समय रही अपना सबके सीमित, तो किया ने अपना सब आगू बढ़ी
1: और सुनवाए अपने श्रोताओं को एक मैथिली गीत
0: सुनल जाए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे मैथिली गीत राखी कुमारी सिंह, धन्यवाद देते हैं। और जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं आशुतोष कुमार झा। आइए सुनते हैं इनसे हालचाल।
1: सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का हालचाल, हालचालक संग हम छी आशुतोष कुमार झा। हिंसक प्रदर्शन मामला में 23 लोगक तस्वीर जारी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक पर 23 जुलाई के भेल हिंसक प्रदर्शन मामला के बाद दरभंगा पुलिस कार्रवाई तेज कऽ देलक अछि। पुलिस प्रदर्शन के दौरान उपद्रव और हिंसा में शामिल 23 व्यक्ति के तस्वीर जारी करैत आम लोक से हुनकर पहचान बतेबाक

अपील कयलनि अछि। पुलिस दिस जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहल गेल अछि जे प्रदर्शन के दौरान किछ उपद्रवी तत्व पुलिस बल पर जानलेवा हमला कयने छलथि। एहि हमला में महिला आ पुलिस पुरुष पुलिसकर्मी घायल भेलथि, जखन कि सरकारी संपत्ति के सेहो नुकसान पहुंचाएल गेल। दरभंगा पुलिस कयलक दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल। विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का और बेसी प्रभावी बनेबाक उद्देश्य बृहस्पति दिन पुलिस केन्द्र में दंगा नियंत्रण के लेल व्यापक मॉक ड्रिल के नेतृत्व मिथिला क्षेत्रक पुलिस उप महानिरीक्षक कयलनि। एहि दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित जिला के कईक पुलिस पदाधिकारी मौजूद छलथि। मॉक ड्रिल के मध्य पुलिस बल के दंगा एहन विषम परिस्थिति सबसे प्रभावी ढंग से निबटबाक प्रशिक्षण सेहो देल गेल। जवान एंटी राइट गन, टीयर गैस, दंगा निरोधी ढाल, हेलमेट आ आन आधुनिक उपकरण सभक प्रयोग प्रदर्शन कयलनि। संगहि भीड़ के नियंत्रित करवा, उपद्रवी सब पर प्रभावी कार्रवाई करवा आ आम लोक सभक सुरक्षा सुनिश्चित करवाक रणनीति का अभ्यास सेहो कराओल गेल। स्कूली शिक्षक सभक तीन चरण में हेत तबादला, पहले म्यूचुअल फिर सामान्य। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 से लागू हेबाक बाद सेहो एखन धरि स्थानांतरण के मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी नहीं हेबा से राज्य के लाखों शिक्षक में असमंजस के स्थिति बनल अछि। शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण के विस्तृत कैलेंडर जारी कऽ देल गेल अछि, मुदा पूरा प्रक्रिया कोन प्रकारे हैत, आवेदन कोना हैत, प्राथमिकता के निर्धारण कोन आधार पर हैत आ ऑनलाइन प्रक्रिया के रूपरेखा की हैत, एकरा लऽ कऽ एखन धरि स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहि कयल गेल अछि। शिक्षा मंत्री स्पष्ट कयलनि अछि जे स्थानांतरण के प्रक्रिया तीन चरण में पूरा कयल जायत। आवेदन करय वाला लोक सब के स्थानांतरण कयल जायत। अचानक से कोनो शिक्षक के स्थानांतरण नहीं हैत। सबसे पहले समायोजन आ पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल स्थानांतरण कयल जायत। एकरा लेल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन लेल जायत। लेखक के विचार हुनकर बौद्धिक साधना के परिचायक होइत अछि। ई कहने छनि डॉक्टर भीमनाथ के, मौलिक तथ्यपरक और भाषिक रूप से शुद्ध लेखने साहित्य के पहचान अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG मैथिली विभाग और विद्यापति पीठ दिस से बृहस्पति दिन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण के पुस्तक अनुशीलन के लोकार्पण समारोह भेल। समारोह के अध्यक्षता करैत साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा कहलनि जे ई विभाग प्रतिभाशाली परीक्षार्थी विद्यार्थी सभक सशक्त परम्परा के केन्द्र रहल अछि। एतय से निकलल अनेकहु विद्यार्थी आई मैथिली भाषा और साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर छथि। ओ कहलनि जे लेखन सदैव मौलिक तथ्यपरक और गंभीर चिंतन पर आधारित हेबाक चाही। लेखक के विचार हुनकर बौद्धिक साधना के परिचायक होइत अछि। उत्कृष्ट लेखन के लेल निरंतर अध्ययन, मनन और मंथन आवश्यक अछि। विद्यार्थी सब से केवल परीक्षा आ नौकरी तक सीमित नहीं रहे मैथिली भाषा साहित्य के संरक्षण आ विकास में सक्रिय भूमिका निर्वाह करवाक सेहो ओ आह्वान कयलनि। ऑक्सफोर्ड और मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के बीच शैक्षणिक सहयोग, मिथिला के समृद्ध संस्कृत परंपरा और दुर्लभ पांडुलिपि सभक वैश्विक पहचान देवाक दिशा में महत्वपूर्ण डेग उठबैत बिहार सरकार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संग संस्थागत सहयोग का प्रस्ताव पठौलक अछि। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल 22 जुलाई का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर दिवाकर आचार्य का चिट्ठी पठा मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा आ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच दीर्घकालिक शैक्षणिक साझेदारी स्थापित करवाक इच्छा व्यक्त कयलनि अछि। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता बंता मिथिला विश्वविद्यालय के PG मैथिली विभागाध्यक्ष। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG मैथिली विभाग में नेतृत्व परिवर्तन हैत। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रोफेसर अरुण कुमार कर्ण के 31 जुलाई का सेवानिवृत्त हेबाक बाद विभागाध्यक्ष पद पर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के नियुक्ति के अधिसूचना जारी कऽ दिलक अछि। DLED पहल और द्वितीय खंड का परीक्षा आई से 2176 परीक्षार्थी हेता शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

0: का देश है। सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थान का डीएलएड फेस टू फेस पहल आ द्वितीय खंड का सैद्धांतिक परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त धरि जिला का दूटा केंद्र पर पहल आ दोसर दू पाली में आयोजित कल जाय। परीक्षा के लोग जिला प्रशासन सबटा आवश्यक तैयारी पूरा क लक। श्रोतागण अपना सब अखन सुन रहा आकाशवाणी दरभंगा से हालचाल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोता लोकन अहाँ आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहा हाल चाल। प्लास्टिक के इस्तेमाल से विद्यालय के कल गेल मुक्त। मोइनुद्दीन नगर प्रखंड के अंदौर मध्य विद्यालय के इको क्लब के छात्र लोकन अनुकरणीय पहल करैत अपन विद्यालय के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से पूरा तरह मुक्त कऽ देलन अछि। इको क्लब के सदस्य नोटू प्लास्टिक अभियान चला छात्र और स्थानीय समुदाय के प्लास्टिक से हुए वाला नुकसान के प्रति जागरूक कलन। ओत प्लास्टिक का झोरा पूरा तरह प्रतिबंध लगवे तो छात्र और शिक्षक कपड़ा और पुरनका अखबार से बन रहा पेपर का बैग का उपयोग कलन शुरू कर दलन। साइबर जागरूकता अभियान में डीएम एसपी कलन जागरूक। जिला समस्तीपुर जिला में साइबर थाना का पुलिस द्वारा शहर का आरएसबी इंटर स्कूल में बृहस्पति दिन साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित कल गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और एसपी अरविंद प्रताप सिंह कलन। यही अवसर पर साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक नेतृत्व में साइबर एक्सपर्ट छात्र छात्रा लोकन और शिक्षक का साइबर अपराध से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दलन आ ओकरा से बचाव का तरीका सेहो बतेलन। छोट वैज्ञानिक का पैघ आइडिया का लागत पंख। इंस्पायर से चमकत बिहार का प्रतिभा। जिला के सरकारी निजी और अनुदानित विद्यालय में पढ़ो वाला कक्षा 6 से 12 तक का विद्यार्थी का रचनात्मक सोच और नवाचार का नव आयाम देवाक लेल इंस्पायर अवार्ड मानक योजना शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शुरुआत भ चुकल अछि। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का राज्य परियोजना निदेशक द्वारा एहि संबंध में सबटा जिला शिक्षा अधिकारी के और जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्पष्ट जिला दिशा निर्देश दो दिल गेल अछि। दोनायर रेलवे गुमती से 2 किलोमीटर का दायरा में 56 गड्ढा अछि, जाहि में 7 बेसी जानलेवा देखवा में आबि रहल अछि। शहर के दोनायर से NH56 जाय वाला सड़क बहुत बेसी खतरनाक बन गेल अछि। ई सड़क दरभंगा बेनीपुर बिरौल और कुशेश्वर स्थान के जोड़ैत अछि। बिरौल के लोक सहरसा में जाय छथि। दोनायर चौक से दोनायर औद्योगिक क्षेत्र यानी दालमिल तक करीब 2 किलोमीटर नम्हर हिस्सा में छोट पैघ मिला के लगभग 56 गड्ढा अछि, जाहि में 60

0: થી જાનલેવા ગઢ્ઢા બની ગયેલા છે. ડીએમ જિલ્લા અતિથિ ગૃહ વ્યાયામશાળા ઓર ખેલ નિર્માણ ભવન કે લાઈન જાય જા. ડીએમ કૌશલ કુમાર બૃહસ્પતિ દિન જિલ્લા અતિથિ ગૃહ પરિસરમાં નિર્માણધીન નવકા ભવન વ્યાયામશાળા ખેલ ભવન કે સ્થળીય નિરીક્ષણ કો નિર્માણ કાજ કે પ્રગતિ ઓર ગુણવત્તા કે જાયજા લેલાઈન. તો શ્રોતાગણ એખન અપના સબ સુન રહલ છલો આકાશવાણી દરભંગા સે હાલચાલ.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
0: क्षणिक विराम के उपरांत श्रोतागण के एक बार फिर से स्वागत छन. नमस्कार मिथिला में. और प्रतिभा जी, आब श्रोतागण का इंतजार है तन मौसम का जानकारी का.
4: जी बिल्कुल. तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 22 से 26 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है. हालांकि 23-24 जुलाई को के आसपास जो है गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. पूर्वानुमानित अवधि में अन्य जिलों में बिजली चमकने एवं तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है. इस दौरान तापमान में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. ज़्यादातर स्थानों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. पूर्वानुमानित अवधि में हवा में काफ़ी नमी बने रहने की संभावना है. सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 85 से 95% तथा दोपहर के समय 50 से 60% के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है.
0: तो ई छल मौसम का जानकारी. और देखियो जे सावन का महीना में ई हाल अपना सबके एखनो चेत जेबाक चाहिए, जाग जेबाक चाहिए ना. बेसी से बेसी गाछ लगाबी. गाछ वृक्ष के संगे संग अपना सबके डबरा पोखर जे छला ओकरो संरक्षण जरूरी छे, साफ सफाई जरूरी छे, क्योंकि यह सब एहन चीज है जे पानि के अपना दिस आकर्षित करित है और बेसी से बेसी अपना सबके क्षेत्र में पानि तखने हैत.
4: बिल्कुल. और पानी के लिए क्या कोहराम कह सकते हैं कि मचना, ये हम सभी तो देख ही रहे हैं और इसे झेल भी रहे हैं. और अभी ये स्थिति है आशुतोष जी, तो फिर आगे आने वाले समय में हम सोच सकते हैं कि क्या होगा. तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अभी से चेत जाएं, अभी से हम इस चीज पे
0: मंथन करें.
4: बिल्कुल. कि पेड़ लगाना कितना ही अधिक आवश्यक है. और देखिए ना, अभी किसान भाई एकदम आस लगाए हुए हैं कि कब बारिश हो और हम धान की जो रुपाई है वो खेती है वो हम करें अच्छे से.
0: छेचा पड़ रहा है पानि का, नहीं एकदम हल्का हल्का जे छे से दू

0: चारि बेर फुहारा पड़ैए आ पानि अपना सबके एकदमसँ बुझैए जे मूनके लालसाके चलि जाइत अछि।
1: आओर हमारा जे देश भारत है वो मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, हर कुछ तो कृषि पर ही खेती पर ही आधारित होती है। हम लोग जो तरह तरह के चावल खा पाते हैं, गेहूं हुआ, दलहन तिलहन की बात करें तो सब कुछ कृषि कार्य पर ही निर्भर है और उसके लिए पानी की तो बहुत ही अधिक आवश्यकता है।
0: एकटा चीजके आओर आवश्यकता अछि
1: जी बिल्कुल,
0: मिथिलामे अपना सबके गीत नादके बड़ महत्व छै ने, जहन बहुत बेसी गप हुअ लगै छै तऽ लोकके मोन जे छै से विचलित हुअ लागै छनि, तऽ हुनका फेर एकठाम अनबाक लेल अपना सब गीत नाद जे छै ओकर उपयोग करै छी।
1: जी बिल्कुल, और हमारा तो उद्देश्य यही है कि सूचना और सूचना के साथ साथ मनोरंजन की तरफ भी ले जाना। आपने हालचाल के माध्यम से मनोरंजित करवाया, तो आइए सुनवाते हैं उन्हें एक फिल्म संगीत।
0: सुनल जाए।

0: तऽ एखन अपना सभ सुन्दर सन फिल्म संगीत के आनंद उठेलहुँ।
1: बिल्कुल, और आज है शुक्रवार, शुक्रवार को हर दिन हम सभी सुनते हैं गांधी कथा।
0: गांधी कथा
1: जी, तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहले गांधी कथा, फिर करेंगे बातचीत।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। सन 1929 का वर्ष समाप्त होने और 1930 का वर्ष प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने भारतवर्ष की आज़ादी का झंडा फहरा दिया और गांधी जी को अपना अगुआ बनाकर पूर्ण स्वाधीनता तथा अंग्रेजी हुकूमत से संबंध विच्छेद की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और नमक कानून उल्लंघन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। लंदन में 12 नवंबर 1930 को पहली गोल मेज परिषद की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू सहित 20 से अधिक अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट करने के लिए पत्र लिखा। इरविन और गांधी जी की पहली मुलाकात 17 फरवरी, दूसरी मुलाकात 18 फरवरी और तीसरी मुलाकात 19 फरवरी को ही। 1 मार्च को इरविन और गांधी जी की फिर मुलाकात हुई जो काफी देर तक चली और आपसी वाद विवाद के बाद 5 मार्च की सुबह गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद सरकार ने उसे भंग कर दिया। इस बार गांधी जी को नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से फिर चर्चाएं करनी पड़ी। मामला तय होने के बाद दूसरी गोलमेज परिषद हुई जिसमें कराची के कांग्रेस अधिवेशन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी का चयन किया। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे और 5 दिसंबर तक वहीं रहे। वे दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे सरकारी तथा गैर सरकारी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे लेकिन गोलमेज परिषद असफल रही। परिषद ने एक अल्पसंख्यक समिति नियुक्त की जिसमें 6 अंग्रेज, 13 मुसलमान, 10 हिंदू, 2 मजदूर प्रतिनिधि, 2 सिख,

राजपूत, दो भारतीय ईसाई, दो भारत प्रवासी अंग्रेज, एक पारसी, एक एंग्लो इंडियन और चार महिलाएं रखी गई। महिलाओं को छोड़कर सभी ने पृथक निर्वाचन की मांग की, लेकिन गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत में सभी भारतीय भारतीयों को भारतीय की तरह मत देंगे। भारत को 1930-31 में जो आंशिक स्वाधीनता प्राप्त हुई, वह गांधी जी, इरविन और ब्रिटिश मजदूर सरकार के प्रयत्न का ही परिणाम थी। लेकिन इरविन जा चुके थे और अक्टूबर 1931 में रैमजे मैकडोनाल्ड की मजदूर सरकार के स्थान पर मैकडोनाल्ड के ही नेतृत्व में अनुदार दल की प्रधानता वाला दूसरा मंत्रिमंडल बन गया था। सर सैमुअल होर को भारत का राज्य सचिव घोषित किया गया। यह नई ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी की भावना पर आघात करने लगी। फलस्वरूप 28 दिसंबर को गांधी जी बंबई पहुंचे और दूसरे ही दिन भेंट करने की इच्छा से वायसराय को टेलीग्राम भेजा। जब वायसराय मिलने को तैयार नहीं हुए तो गांधी जी ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के विषय में सूचित किया। तत्पश्चात 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और सरकार ने सारी कांग्रेसी संस्थाएं बंद करके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में गांधी जी अपने कपड़े स्वयं धोते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे और खूब किताबें पढ़ते थे। जेल में ही गांधी जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के लिए प्रस्तावित नए ब्रिटिश संविधान में न केवल पहले की भांति हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, बल्कि नीची जाति के हिंदुओं के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा। गांधी जी उन लोगों के लिए अलग से मतदाता सूची के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने 11 मार्च 1932 को भारत सचिव सैमुअल होर को एक पत्र में लिखा कि हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। दूसरे ही दिन गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड को लिखा, मैं आपके इस निर्णय का विरोध करता हूं। इसके लिए मैं सोडा और नमक के साथ या खाली पानी के सिवा किसी भी प्रकार का भोजन न लेकर आमरण उपवास की घोषणा करता हूं। 20 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अंतिम बार भोजन किया, जिसमें उन्होंने नींबू का रस, शहद और गर्म पानी लिया। करोड़ों भारतवासियों ने प्रार्थनाएं की और 24 घंटे का उपवास रखा। 20 सितंबर को हिंदू नेतागण राजगोपालाचारी, सप्रू, घनश्याम दास बिरला, राजेंद्र प्रसाद आदि बंबई के बिरला भवन में एकत्र हुए। उस समय हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर सोलंकी तथा डॉक्टर अंबेडकर थे। पहले तो गांधी जी हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों के भी विरोधी थे, परंतु बाद में वे सहमत हो गए थे। अंबेडकर ने इसका विरोध किया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने 20 सितंबर के सम्मेलन में एक योजना पेश की, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया।

0: अभी हम सभी सुन रहे थे गांधी कथा
1: और गांधी कथा तो सुन लो, मुदा एक टा गप हम पूछो चाहे वहां से।
0: जी बिल्कुल पूछिए।
1: अपना सबका मैथिलानी के तो बहुत रास काज रहे छन, हिनके पर पूरा घर छन ना
0: भोर में। मैथिलानी हो या फिर कहीं की भी गृहिणी हो, गृहिणी को कह सकते हैं।
1: हाँ,
0: चूंकि
1: अपना सब मिथिला क्षेत्र से सीधे गृहिणीये कहके मतलब छलैए, तो हुनकर एक टा देखे छियनि जे भोरे उठ के जेना कि अहाँ अयलहुँ हैं तो बुआ सबके तैयार कऽ के स्कूल पठा, पूरा नाश्ता के व्यवस्था जे अहाँ सब करै छी व्यंजन प्रबंधन से बड़ा खास रहैत अछि, जे बच्चा सबके की देबनि, घर में रहनहार जे बुजुर्ग छथि हुनका लेल की करबनि, आ ओनहियो अपना सबके क्षेत्र जे अछि से खान पान के लऽ कऽ तऽ बहुत बेसी प्रसिद्ध अछि ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, हम सभी जानते हैं कि अपना क्षेत्र हो या फिर पूरे देश भारत की ही हम सभी बात क्यों ना करें, कि अपनी सांस्कृतिक भौगोलिक और भाषाई विविधता की तरह ही अपनी जो व्यंजनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भी इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं कि भारतीय व्यंजन जो है दुनिया के लगभग हर देश में, हर क्षेत्र में लोकप्रिय है और हर देश में लोकप्रिय है। यहाँ की बिरयानी की बात कीजिए, बटर चिकन मसाला की बात कीजिए, या फिर मसाला डोसा है, पनीर टिक्का है, दाल की बात कीजिए, तंदूरी व्यंजन की बात कीजिए, या फिर अनेक तरह की मिठाइयाँ यहाँ की पहचान बन चुकी है हमारे देश भारत की।
1: संगे संग अपना बिहारक लिट्टी चोखा, मिथिला का दही चूरा आ मखानक व्यंजन, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब कहाँ कहबे कलो जो मकई के रोटी आ सरसों का साग, गुजरात का ढोकला आ दक्षिण भारत का इडली डोसा आ सांभर, ये सब केवल भोजन नहीं
0: पहचान,
1: अपन अपन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। लोक व्यंजन के विविधता प्रतिभा जी अपना सबके ई कहत है जे भारत विविधता में एकता का देश है।
0: निश्चित तौर पर, और इसी से हमारे देश की जो ये व्यंजन है इसी से पहचान मिली है विदेशों में भी। और यहाँ की यदि मसालों की बात करें तो यहाँ की मसालों की सुगंध और स्वाद विदेशी लोगों को भी आकर्षित करते हैं। आशुतोष जी, सबसे खास बात तो यह है कि पर्व त्योहार में मौसम के अनुसार यहाँ पे व्यंजन बनाने की जो विधि है, प्रावधान है, जो जिस मौसम में जो नया फसल हम सभी खेत में उपजाते हैं आ पाता है घर में, उसको भी शामिल किया जाता है।
1: खास को एक चीज देख लिया ना, जे चिकित्सकीय
0: बिल्कुल ना, बिल्कुल
1: सोच एकदम रहे छन जे कौन समय में कौन चीज अपना सबके
0: फायदेमंद है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए।
1: अब रानी कहां कहलो जे प्रत्येक क्षेत्र के भोजन में स्थानीय स्वाद, पोषण आ परंपरा के एकटा जे छे अजब मेल देखबा में अबैत अछि। ई व्यंजन त्योहार सब में यानी पावन तिहार में, विवाह दान में आ सामाजिक जे कोनो आयोजन होइत अछि तो ओकरो ई एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा होइत अछि ने।
0: निश्चित तौर पर, और ऐसे तो आजकल की बात यदि करें तो हर क्षेत्र में हर तरह के भोजन बनाए और खाए जा रहे हैं। जैसे हमारे बिहार की लिट्टी चोखा है तो कहीं बाहर भी आप दूसरे भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, पर प्रसिद्धि हमारे खास क्षेत्र विशेष में ही होती है।
1: निश्चित निश्चित, ऐसे अपना सबके ई लागत है जे अपना सबका क्षेत्र ओतः तक पहुँच गया है। अब कार्यक्रम का आगा बढ़वी,
0: हाँ चलते चलते अब कार्यक्रम का समय अब समापन की ओर है, तो चलते चलते पहुँचाते हैं एक फिल्म संगीत, फिर लेंगे उनसे आज के अंक से विदा।

0: हम सभी अपने आवाज के माध्यम से अपने श्रोताओं तक तो हर दिन पहुंचते ही हैं।
1: निश्चित।
0: तो फिर अगले अंक में उपस्थित होंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
1: और आशुतोष कुमार झा का विदा दी।
0: नमस्कार मिथिला।

श्रोता सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम, सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप

0: या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है। मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
8: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और

0: प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को

0: भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है, वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है।

0: आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरूनी मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीक इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में यह कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने तवील दूरी के जमीन से फिजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। यह तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि यह पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिसाइल निजाम लड़ाका जेट, हवाई जहाजों, मिसाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतालिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्त सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकतदारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हमनसब ने एक बामाने और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कानात पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के कयाम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 23वें दौरे मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के

0: 70 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वजीर आजम मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वो सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफे अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
4: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
6: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की, दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
5: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जल्द नया कानून लाएगी। विधेयक के प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में होगी चर्चा। पटना में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान

0: दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जल्द नया कानून लाएगी। विधेयक के प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में होगी चर्चा। पटना में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में अब तक 57 लोग गिरफ्तार। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का होगा निपटारा। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा। 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी तबादले की प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी। कल देर रात जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाले विधेयक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले के गुनाहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक जैसे मामलों के दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने आदेश जारी किया है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पटना पुलिस ने अब तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु कुमार सहित 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में विभिन्न थानों में कुल 21 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3000 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने उपद्रव में शामिल संदिग्धों की पहचान के लिए 177 तस्वीरें जारी की हैं। पटना के सदाकत आश्रम के पास भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के मामले में कांग्रेस की ओर से पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यालय प्रभारी नलीन कुमार के आवेदन पर भाजपा के 15 नामजद तथा 100 से अधिक अज्ञात नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भाजपा ने भी इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सहित 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने कहा है कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि संजीव मुखिया प्रश्न पत्र की चोरी या उसके वितरण में शामिल था। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज दोनों सदनों में कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प लिए जाएंगे। वहीं विधान परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद और

0: सरकार का उत्तर होगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन, उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण और अंत में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 9 सितंबर के बीच समायोजन सूची जारी की जाएगी और आपत्तियों का निपटारा होगा। दूसरे चरण में 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची जारी होगी। सामान्य तबादले के लिए 17 से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण सूची प्रकाशित कर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 नियुक्ति पत्र तथा खेल छात्रवृत्ति के लिए 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र प्रदान करेंगे। इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक तथा एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह कार्यक्रम पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। पटना उच्च न्यायालय ने भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ ने मृतक की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। पीठ ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार सरकार को पटना में नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अतिक्रमण 6 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पार्थीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पूर्व के आदेशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद सक्षम अधिकारी अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट हलफनामे के साथ पेश करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने बोधगया में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित मठों और धर्मशालाओं के कथित व्यावसायिक उपयोग से संबंधित मामले में राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी जानकारी मांगी है कि इस संबंध में गठित समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक विभाग के सहायक कार्मिक पदाधिकारी अरुण कुमार मंडल को 50,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार यह कार्रवाई ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर की गई। पूछताछ के बाद उसके सरकारी आवास की तलाशी में 1 अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भोजपुर के करहनी अंचल स्थित पशु चिकित्सालय में कार्यरत परिचारी शिवानंद कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी के अनुसार 3 ठिकानों पर हुई तलाशी में 34 अचल संपत्तियों के कागजात, 1 लग्जरी कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद।

0: किए गए हैं। जब्त संपत्तियों के दस्तावेजों का अनुमानित मूल्य 1,11,00,000 रुपए से अधिक बताया गया है। बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक कार और एक लॉज से प्रश्न पत्रों की प्रतियां, विभिन्न संस्थानों की मुहरें, स्टाम्प, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक और अन्य संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। दो अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जांच में एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, जिनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के नावा गांव में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवा ऑक्सीटॉक्सिन की फैक्ट्री का उद्भेदन कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दानापुर की एक अदालत ने गैस सिलेंडर कालाबाजारी मामले में दोषी बबलू कुमार गुप्ता को 2 माह के कारावास और 3,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पटना की एक अदालत ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले की हरलाखी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 260 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में बालू लदे ट्रैक्टर चालक से अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने गश्ती अधिकारी, एक सहायक अवर निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात दिए वीडियो संदेश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून लाएगी। दैनिक जागरण लिखता है, सोनम वांगचुक ने देर रात तोड़ा अनशन। प्रभात खबर की सुर्खी है, संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई को नहीं मिले सबूत। दैनिक भास्कर ने सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर लिखा है, बुलंद दावों वादों की बहुत तेज रफ्तार, कुछ का असर भी दिखा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधानसभा में लाठी चार्ज पर भिड़े विधायक, हाथापाई की नौबत। आज अखबार की सुर्खी है, सीएजी की रिपोर्ट में बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर कई टिप्पणियां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जल्द नया कानून लाएगी। विधेयक के प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में होगी चर्चा। पटना में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में अब तक 57 लोग गिरफ्तार। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, दोनों सत्रों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का होगा निपटारा। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा। 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी तबादले की प्रक्रिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है, लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
3: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी, मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधान

0: सभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
1: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
0: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
2: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
5: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

0: मीर तकी मीर के इस कलाम को आवाज दे रही थी श्रुति सादोलिकर। मीर तकी मीर की विलादत 1723 या बाज रवायत के मुताबिक 1722 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में हुई। उनका असल नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था। उनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था, जो एक दरवेश सिफत और बाखुदा इंसान थे। मीर का बचपन ज़्यादातर वालिद की मोहब्बत और उनकी सूफियाना तालीमात के साए में गुजरा। वालिद ने मीर को हमेशा मोहब्बत और दरवेशी का दर्स दिया। लेकिन अभी मीर की उम्र 9 या 10 साल की ही थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद मीर को शदीद माली और खानगी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोज़गार की तलाश में मीर दिल्ली मुंतकिल हो गए। उस वक्त दिल्ली सियासी और समाजी एतबार से इंतहाई अबतरी का शिकार थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को ताराज कर दिया था। मीर ने उन हालात को अपनी आंखों से देखा और ख़ुद भी सख्त मसाइब झेले। दिल्ली की बर्बादी के बाद मीर नवाब आसुद्दौलत की दावत पर लखनऊ चले गए। अगरचा लखनऊ में उन्हें माली आसूदगी हासिल हुई, लेकिन दिल्ली की मोहब्बत और अपनी मिजाज की इंफरादियत की वजह से वह वहाँ के माहौल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग ना हो सके। बिलाखिर 1810 ईस्वी में लखनऊ ही में इस अजीम शायर का इंतकाल हुआ। तो सामीन, मीर तकी मीर के बारे में और भी बातें करेंगे। आइए, पेश खिदमत है बातें जिनसे ज़िंदगी संवरती है के तहत हुस्न सलूक के मौजू पर मबनी मकाला। मकाला निगार हैं शाहिद इकबाल।
1: हज़रात ख़वातीन, हुस्न

नवाजा जिस जगह को आपने या सैयदे आलम नवाजा जिस जगह

उसे क्या खौफ महशर का गोला में।

पहले तो बावजू हो लिया कीजिए। रब ने उन्हें को बनाया है मुख्तार कुले, रब ने उन्हें को बनाया है मुख्तार कुले, जिक्र उन्हें का तो सुबह हो मसा कीजिए। जिक्र उन्हें का तो सुबह हो मसा कीजिए। पार हो जाएगी कश्ती के आन में, पार हो जाएगी कश्ती के

बस वसीले से उन्हें के दुआ कीजिए। मुट्ठी में कंकड़ी कलमा पढ़ने लगी, मुट्ठी में कंकड़ी कलमा पढ़ने लगी, पर न माना अबू जहल क्या कीजिए, पर न माना अबू जहल क्या कीजिए। दिल से उन्हें की अता अति भी लाजिम हुई, दिल से उन्हें

घर दवा काम आ ए न कोई तो फिरे।

विरद सल्ले अला का किया कीजिए आपके।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10 बज चुके हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत फिल्म देशवासी के इस गीत के साथ। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अपने देश को संभालो। देशवासी फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे। गायक कलाकार थे नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और साथी। गीत रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में एक बार फिर स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। दोस्तों, जिंदगी की ये जरूरतें हमें दिन रात अपने पीछे भगाती है। चलते रहना है हमें अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरी करने के लिए, मगर इन जरूरतों को पूरी करते करते न जाने हम कब

थक कर चूर हो जाते हैं, कब हमारा शरीर टूटने लगता है, बदन दर्द देने लगता है, सर बोझ से भारी हो जाता है। कहते हैं उस वक्त ये संगीत ही तो है जिसका जादू हमारे तन बदन के मन के थकान को दूर करता है। हमारी भी ये कोशिश है कि हम प्यार भरे वैसे फिल्मी गाने आप तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं आपको तरोताजा करें, साथ ही उन गानों में छुपे संदेश को भी हम अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से उतार सके। आप सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये सुधाकर। सच में दोस्तों, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना।

का नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी

0: दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इस अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। इस अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे अधिकार फिल्म का वो गाना जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। लीजिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सफर अब आगे बढ़ता है। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर मोहम्मद रफी, फिल्म गोपी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सुनने वालों का स्वागत है। आशा फिल्म का ये गाना लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

या सुनने मात्र से ही मन को एक ताजी हवा का झोंका महसूस करता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बेबस हमारा ये तन बदन सावन की बूंदों के पड़ते ही खिल उठता है उन फूलों की तरह, जिनकी खुशबू से खिंचे चले आते हैं भंवरे। बड़ी बेसब्री से इस बार हमें भी इंतजार है सावन का, सावन के भींगी बूंदों का। सावन की ये भींगी बूंदे जब धरती को भिगोती है ना, तो जिंदगी एक नया रूप लेती है। चारों तरफ छाई हरियाली आंखों को एक सुकून दे जाती है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, प्यार भरे फिल्म गीतों के सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। एक बार फिर इस कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे, फिल्म थी आशा। बात सावन की हुई है तो आइए ना इस सावन पर ही एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू

0: इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का गाया वो गीत जिसे हमने लिया था फिल्म आई मिलन की रात से। प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वाले श्रोताओं को हम याद दिला दें, आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शहरयार का लिखा ये गीत आपको सुनवाते हैं खय्याम के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म उमराव जान में।

मान लीजिए। उमराव जान का ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। गीत रचना शहरयार की थी, संगीत खयाम का, फिल्म थी उमराव जान। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है देश प्रेमी।

आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेम फिल्म का ये देश प्रेमी फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। और इस कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ ये गीत फिल्म कर्ज से। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, घड़ी की सुई हमें और ज़्यादा देर आपके साथ बने रहने की इजाज़त नहीं दे पा रही। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, दोपहर 1:15 पर सुनना न भूलें अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा के प्रथम सभा के कार्यक्रमों के साथ हम उपस्थित हैं और सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं अलाउद्दीन खान। सुनिए इनका सरोद वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज के कलाकार थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। आप सुन रहे थे इनका सरोद वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा मीडियम वेव के 231.5 मीटर पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल हैंडसेट पर सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रमों को। फिलहाल हम चलते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आपको सुनवाने।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव।

0: यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है।
1: जी,
0: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
1: जी,
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
1: जी,
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी,
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक

0: भी गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही।
2: भाई मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: ये तो है। चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
2: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
2: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
2: चलो।
0: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
2: चलो।
1: संभल कर।
2: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।

0: बचे।
1: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
2: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
3: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
0: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
3: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
2: हाँ चलो।
1: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी

0: जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें, हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, ए जनाब आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
1: आप इधर आइए।
0: हाँ जी।
2: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
2: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
2: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
2: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
2: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: ए, आप भी इधर आइए, सामान।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मों के गाने।

किसका इंतजार है। समारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हरिहरन और गायत्री सिंह की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं भोला फिल्म से। गायक कलाकार हैं बी प्राक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मेट्रो इन दिनों, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पेपोन की आवाज में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, हम आज भी विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं। बहनों, यह नारी संसार कार्यक्रम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ महिलाओं से जुड़े विविध विषयों पर खुलकर बातें करते हैं। और हाँ बहनों, कार्यक्रम के बीच बीच में हम आपको कुछ नए पुराने नगमे भी सुनवाएंगे। तो बस जानकारी के लिए साथ साथ मधुर संगीत के सागर में गोता लगाने के लिए तैयार रहें और आप बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक, और मनोरंजन से भरपूर अपना पसंदीदा कार्यक्रम का आनंद लीजिए। श्रोतागण, आज हम सबसे पहले एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर घर और हर दिल से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है खुशहाल परिवार की मजबूत नींव, महिला। तो आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि यदि घर एक बगीचा है तो महिला उसकी माली है। उसकी स्नेह, धैर्य और समर्पण से ही परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन खिलता है। परिवार के हर सदस्यों का की ध्यान रखना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बुजुर्गों की सेवा करना और घर में सौहार्द का वातावरण बनाए रखना, ये सब उसके जीवन का अहम हिस्सा है। उसका हर छोटा प्रयास परिवार को मजबूत बनाता है। लेकिन एक खुशहाल परिवार की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है। घर के कामों में सहयोग करते हैं और निर्णयों में महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई परिवारों में महिलाओं को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उनको दरकिनार किया जाता है। ये कतई अच्छी बात नहीं है। सब मिलजुल कर जो निर्णय निकलता है वही अच्छा और सच्चा होता है, तभी परिवार वास्तव में खुशहाल बनता है। आज की महिला शिक्षा, विज्ञान, खेती, व्यवसाय, खेल, प्रशासन और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। वह घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन स्थापित करते हुए यह सिद्ध कर रही हैं कि जिम्मेदारी और सफलता एक साथ चल सकती है। प्रिय श्रोतागण, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक महिला केवल कर्तव्यों से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और सहयोग से भी सशक्त बनाया जा सकता है। एक महिला को एक मधुर धन्यवाद, एक प्रशंसा, घर के कामों में थोड़ा सहयोग और उसके सपनों का पूरा करने का अवसर, ये छोटे छोटे कदम लेकिन परिवार को और भी मजबूत बना देते हैं। ये भावनात्मक अटैचमेंट लाती है। तो आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने परिवार की हर महिला, चाहे वह माँ हो, पत्नी, बहन, बेटी या दादी, के योगदान का सम्मान करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और उनके सपनों को आगे बढ़ाने में उनका साथ देंगे। एक महिला भी दूसरे महिला का सपोर्ट करेगी, ना कि रास्ते का रोड़ा बनेगी। जब एक महिला दूसरे महिला को आगे बढ़ाएगी तो पारिवारिक सौहार्द

अर्थ खुशहाली वैसे ही अनायास ही आ जाएगी, क्योंकि जब महिला मुस्कुराती है तो घर में खुशियाँ बढ़ती हैं, और जब महिला सशक्त होती है तो परिवार मजबूत होता है, और जब परिवार मजबूत होता है तभी समाज और राष्ट्र भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। तो बहनों, आगे भी हम बातें करेंगे, फिलहाल चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम बागीचा में पिरोया हुआ ये पहला गाना।

बहनों, अभी आप कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत फिल्म संगीत का आनंद ले रही थी। उम्मीद करती हूँ ये गाना आप सभी को पसंद आई होगी। बहनों, आँखें हैं तो दुनिया है, दुनिया की सारी खूबसूरती आँखों के द्वारा ही हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। और आँखों की ऐसे में आँखों की अच्छे से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। आँखों की आजकल बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आँखों को कैसे सुरक्षित रखें, इसी विषय पर वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं हमारी रेडियो सखी प्रेरणा, तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: की देखभाल से बेहतर कोई देखभाल नहीं। दृष्टि को सजोना है, जीवन को सजोना है। दरअसल आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो काफी नाजुक होती है। हमारी आंखें अनमोल है क्योंकि वे हमें दुनिया को देखने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। वे हमें सुंदर दृश्यों का आनंद लेना, किताबें पढ़ना, फिल्म देखना और उन लोगों से जुड़ने में मदद करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। साथ ही सुख दुख, अच्छाई, खुशी, गम और संसार के सभी परिदृश्य को हम आंखों से ही महसूस कर पाते हैं। सामने वाले के नजरिया में किस तरह की भावनाएं हैं, यह भी आपको सही प्रकट हो जाती है। इसलिए आंखों के बिना इस संसार में जीना असंभव लगता है। हमारी आंखें हमारे जीवन में अनमोल है। हमें अपनी आंखों की देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए और आंखों के डॉक्टर से नियमित जांच भी करानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वस्थ रहें। आंखें दुनिया के लिए खिड़कियों की तरह है और वे एक अद्भुत उपहार है जिन्हें हमें सजोना और संरक्षित करना चाहिए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना बहुत आवश्यक है। आंखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने के लिए आहार में पौष्टिक चीजों को जरूर शामिल करें। उसी प्रकार आंखों के लिए व्यायाम जरूरी है। आंखों के व्यायाम के लिए हर 20 मिनट में कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी किसी वस्तु को देखने की आदत बनाएं। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर पर बंद करके और फिर खोलें। आंखों की मांसपेशियां को मजबूत रखने के लिए रक्त का संचार बढ़ाने में कुछ योग के अभ्यास को काफी लाभकारी माना गया है। आंखों को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने से आंखों की मांसपेशियां को व्यायाम मिलता है और आंखों की गतिशीलता बेहतर होती है। बहनों, लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क में रहने के कारण समय के साथ आंसू सूखने लगते हैं, हमारी आंखें शुष्क हो जाती है, आंखों में नमी कम होने से दर्द, लालिमा, रगड़ बढ़ जाती है, जिससे आंखों की नाजुक त्वचा को क्षति पहुंचती है। बहनों, इन बातों को ध्यान अवश्य रखें और लंबे समय तक स्क्रीन टाइम कंप्यूटर या मोबाइल पर समय नहीं बिताएं। बीच बीच में आंखों को बंद करके खोले 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। बहनों, विशेष तौर पर 40 की उम्र के बाद आपको और भी सावधान हो जाना चाहिए। नियमित रूप से आंखों की जांच कराना चाहिए। आंखों की कई ऐसी समस्याएं हैं जो बिना किसी लक्षण के लंबे समय तक बनी रहती है और अंदर ही अंदर क्षति पहुंचाती है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप या नेत्र रोग के व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर जांच जरूर कराना चाहिए। हमारी आंखें हमारे जीवन में अनमोल है। हमें अपनी आंखों की देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बहनों, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। घरेलू काम के साथ साथ व्यायाम कितना जरूरी है, आइए इसी विषय पर बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि घर का

काम अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े धोना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब काम महिलाओं को दिन भर व्यस्त रखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इतना काम ही अपने आप में व्यायाम है, यानी कि काम जो कर लेते हैं वही व्यायाम है, इसी से हम फिट रहेंगे। ऐसा कतई नहीं है, होता है कि व्यायाम अपनी जगह, जिस शरीर को चाहिए, शरीर को जैसा चाहिए फिट रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। और काम तो भर दिन व्यस्तता के कारण काम थकान भी बढ़ जाती है काम से। कई बार ऐसा लगता है कि काम करते करते थक गए, चलो दूसरे दिन व्यायाम करेंगे, यानी व्यायाम के लिए टाइम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यायाम के लिए थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालना चाहिए समय। घरेलू काम शरीर को सक्रिय तो रखते हैं, पर वे नियमित और संतुलित व्यायाम का पूरा विकल्प नहीं बन सकते। व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है।

वही व्यायाम है, इसी से हम फिट रहेंगे। ऐसा कतई नहीं है होता है कि व्यायाम अपनी जगह जिस शरीर को चाहिए, शरीर को जैसा चाहिए फिट रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। और काम तो भर दिन व्यस्तता के कारण काम थकान भी बढ़ जाती है काम से। कई बार ऐसा लगता है कि काम करते करते थक गए, चलो दूसरे दिन व्यायाम करेंगे, यानी व्यायाम के लिए टाइम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यायाम के लिए थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालना चाहिए समय। घरेलू काम शरीर को सक्रिय तो रखते हैं, पर वे नियमित और संतुलित व्यायाम का पूरा विकल्प नहीं बन सकते। व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों को लचीला रखता है और थकान को कम करता है। जब महिलाएं रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालकर चलती हैं, तो योग कर सकती है, हल्की कसरत कर सकती है, या फिर गहरी सांसें का अभ्यास कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है, तो उनका शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। इससे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा, तनाव और कमजोरी जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। घर बाहर दोनों काम करना पड़ता है। ऐसे में व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी उतना ही जरूरी है। यह मोटापा घटाता है, नींद बेहतर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब माँ प्रसन्न रहती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और बच्चों की ज़रूरतों को हंसी खुशी पूरा करती है। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के लिए व्यायाम और खेलकूद उतने ही जरूरी हैं जितना पढ़ाई। आजकल मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के कारण बच्चे कम चलते फिरते हैं और एक जगह मोबाइल या टीवी से चिपके रहते हैं। ये अच्छी आदत नहीं होती है। इससे शरीर सुस्त हो सकता है और ध्यान भी कम हो सकता है। यदि बच्चे रोज़ दौड़े, कूदे, खेले, साइकिल चलाए या सुबह की हल्की कसरत करे तो उसका शरीर मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। माताएं बच्चों को यह सिखा सकती हैं कि व्यायाम कोई बोझ नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली है। यह स्वस्थ जीवन शैली के लिए अच्छी आदत है। घर में सुबह कुछ मिनट स्ट्रेचिंग, प्राणायाम या संगीत के साथ हल्का नृत्य किया जा सकता है। आजकल बच्चे हिप हॉप या डांसिंग के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, तो आसानी से ये डांसिंग भी सीख जाएंगे, उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्य मिलकर टहलने जाएं या यह तो एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है। बच्चों को समझाना चाहिए कि खेलना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का तरीका है, यानी आउटडोर गेम के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, ये सब आदत बच्चों को डालने से बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त बनेंगे। तो बहनों, इसी विषय पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

0: बहनों, अभी आप कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत फिल्म गाने का आनंद ले रही थी। स्टूडियो की घड़ी की सुइया हमें यहाँ और ठहरने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसी कार्यक्रम के जरिए हम मिलते रहेंगे। इसी वायदे के साथ अपने रेडियो सखी रजनी को दीजिए इजाज़त। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को

0: फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समह से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के मुख्य कार्यक्रमों में हम एक नजर डालते हैं इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

1:10 से। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 1:15 से। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 2:05 पर प्रसारित किया जाएगा इलाकाई खबरें। रोजगार सूचना के लिए हम आपको जानकारी देंगे 2:10 पर। 2:15 समय होगा दोपहर समाचार का। दो बजकर 30 मिनट पर एक बार फिर से आप आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। तरुण कुसुम आज प्रसारित होगा 5:00 से दूसरी सभा के आरंभ में। 5:40 समय होगा फिल्म संगीत का। 6:00 हिंदी समाचार आप सुनेंगे। कार्यक्रमों की जानकारी के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज और कल के मुख्य कार्यक्रमों की। समय होगा 6:05 पर। 6:10 पर प्रसारित होगा हफ्तावार जायजा। 6:15 समय है विद्यापति गीत का। मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25 से।

गांव घर के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नन्ना मुन्ना राही। समय होगा 6:30 पर। चर्चा आज करेंगे समय पर दिनचर्या का पालन करें। किसान श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी, जिसके अंतर्गत आप चर्चा सुनेंगे बरसाती भिंडी की खेती और समसामयिक कृषि कार्यों की। समय 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार दूसरी सभा में आप सुनेंगे 7:30 पर। जिले की हलचल 7:47 से। बिहार विधानमंडल की समीक्षा 7:50 से। और संसद समीक्षा का समय होगा 8 बजे से। सिंगरहार हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:15 पर। समाचार संध्या 8:45 से। न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। उर्दू खबरें 9:15 से आप सुनेंगे। साहित्यिकी का समय होगा आज 9:30 पर। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। रात्रि 10 बजे से आप सुन पाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग, और इसके बाद प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी

जी हाँ दोस्तों, फरमाइए कैसे हैं मिजाज आपके। यूँ तो आपकी फरमाइश बता देती है कि आपके मिजाज कैसे हैं, क्योंकि आपके पत्र जब हम तक पहुँचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपने किस मूड में उस पत्र को लिखा है। फिलहाल आज के इस अंक में भी बहुत सारे पत्र हमारे हाथ में हैं, उनको लेकर आए हैं और उनसे संबंधित गाने हम आप तक पहुँचाएंगे आपके मिजाज के हिसाब से, आपकी फरमाइश के हिसाब से। स्वीकार करें आज के इस अंक में रविंद्र मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम का, और सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसे पसंद किया आप सबों ने, नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज। बेटी से ये पत्र हमारे पास आया है, राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा सेड़े का। और एक और पत्र है हमारे पास डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, ये सभी हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से। आप सबों ने सुनना चाहा है ये गीत, सोर फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और मन्ना डे की। गीत को लिखा है इंद्रजीत सिंह ने, संगीत बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद आप सबों की, सुनिए ये गीत।

और सुबह शाम चलते रहना चाहिए, यानी हमारी जिंदगी में हम प्रगति के पथ पर हमेशा बढ़ते रहें। चलने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम पैर से चलते रहें, सड़क पर चलते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ये उद्देश्य है। और जो आप लोगों ने पत्र के माध्यम से हमें भेजा, हम वो फरमाइश आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हर शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश आप सबों की है नरहन स्टेट फुटानी चौक से भाई फटफटिया झा, फूलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, भोकली झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, लल्लन मिश्रा, जतुका किशनपुर से आलम दिलकस, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, लाली साफी। ये पत्र है दरभंगा बिहार से आशापुर टावर चौक से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं प्यारे लाल मनोहर, अमर लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर, और नाहर मन टोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। आप सबों ने सुनना चाहे फिल्म शहीद का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज है, गीत और संगीत प्रेम धवन का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की बात आप सुनेंगे रविवार को। फिलहाल अभी हम सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं, आपकी फरमाइशों को शामिल करते हैं। अगली फरमाइश है बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र, वंश प्रसाद और सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोड़वा से भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, लल्लन मिश्रा, ढोलकी सकरा से जयंत कुमार बैरागी, रामपट्टी गौस नगर से सुनना चाहते हैं शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, मनोज कुमार सिंह और भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आखिरी खत का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, कैफी आजमी गीतकार हैं और संगीतकार हैं खयाम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश उस गाने की है जिसे धुन दिया खय्याम ने और पसंद किया आप सबों ने। ये फरमाइश पत्र हमारे पास है ललित कुमार मल्लिक, राजेंद्र यादव, रविंद्र यादव, लक्षण यादव, विजेंद्र यादव, गोल्डन यादव, कौशल यादव, आप सभी हैं कचहरी टोल महेशवा मधेपुरा से। साथ ही साथ इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है आप सबों की कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से मोहम्मद ईसा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आजाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सगुप्ता प्रवीण, शाहीन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण, सुमैया फातमा, सना आफरीन, सादिया नूर, नवासा आरिस बाबू, भाई जगनारायण मुखिया तथा खुशी का। और एक और पत्र है हमारे पास नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, नवासा अरहान।

बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अविहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैख और चीना सैख का। कोकिलबारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल सैख, नुजहत जहां नाज और कांति निकेतन, राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता। आप सबों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को फिल्म रजिया सुल्तान में।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत को हमने दिया है फिल्म खिलौना से। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है राजकुमार सिंह, रामेश्वर सिंह, रजनीश कुमार, रणविजय कुमार, ये सभी मुंबई से हमें ये पत्र लिखते हैं। झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरे राम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी ने हमें पत्र भेजा है। शुभंकरपुर दरभंगा बिहार से मिंटू जी, रंजना जी, राजेश जी, चंचल जी, सालू, साक्षी, अनिकेत, अनमोल बाबू, मिष्टी और मौली, ये सभी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, ये हैं दुबिहार नेवादा गाजीपुर से। और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय, आप सबों ने सुनना चाहा है ये गीत। फिल्म का नाम है खिलौना, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यदि आप भी इस फरमाइश भरे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखिए। आप अपना नाम, अपने चाहने वालों का नाम, पसंद करने वालों का नाम लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, गाने का बोल लिखिए, गायक कलाकार का नाम लिखिए और हमें भेज दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार, पिन कोड होगा 8460004, 8460004। आप हमें इस पते पर पत्र भेजेंगे, आपके पत्र हमारे पास पहुंचेंगे और हम अगले कार्यक्रम में उन्हें शामिल करेंगे आपके नाम के साथ, आपके पसंद के गीत के साथ। अगली फरमाइश आप सबों की है, फिल्म का नाम है क्रांति, गायक कलाकार हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश आप सबों की, वार्ड नंबर 5 भगवतीपुर पंचायत से राहुल कुमार, रोशन कुमार, ज्योति कुमारी, साक्षी कुमारी, विनोद शाह अकेला, मीना शाह, लक्ष्मी कुमारी, मुस्कान कुमारी, बेबी देवी, ज्योति देवी, संतोष शाह, रेणु देवी, अरुण प्रसाद निराला, प्रिंस कुमार, लाल शाह दीवाना, आदित्य कुमार। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ा राजस्थान से ये पत्र आया है, हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागड़ी का। और एक और पत्र है जिसे भेजा है आप सबों ने गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम ने। एक और खत हम शामिल करते हैं, इन्होंने कहा है कि अपनी पसंद का कोई गीत हमें सुना दें। इसी गीत में हम इन्हें शामिल करते हैं। आप है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य। आप सबों को हम ये सुनवा रहे हैं गीत, फिल्म का नाम है क्रांति, गायक कलाकार लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत ये आपके लिए।

दोस्तों, जिंदगी की ये लड़ी टूटनी नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम से भी आपका लगाव या आपका प्यार छूटना नहीं चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप ढेरों पत्र हम तक भेजेंगे अपने पसंद के गीतों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम में, आज के इस अंक से, यानी आपकी फरमाइश के आज के इस कार्यक्रम के अंक से अपने रेडियो दोस्त रविंद्र मिश्रा को दें अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कुछ पलों में अब अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से होगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद में आज लगातार पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन से पहले कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुछ शर्तों के कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई है। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी सदस्यों की यह मंशा है कि इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि पेपर लीक पर सख्त कानून लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर बच्चों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आज अंतिम दिन विभिन्न विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं। विधान परिषद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं के अभाव और एनबीए की मान्यता का मुद्दा

0: जोरदार ढंग से उठा। प्रश्नकाल के दौरान विधान पार्षद सौरभ कुमार और महेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकांश सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के कार्यक्रम को एनबीए की मान्यता नहीं मिली है। प्रश्न के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शीला मंडल ने कहा कि 11 कॉलेजों के लिए मान्यता की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर विधानसभा में रजौली विधायक विमल राजवंशी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान पीडीएस के माध्यम से लाभुकों को निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मामला उठाया। श्री राजवंशी ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र तथा खेल छात्रवृत्ति के लिए 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र प्रदान किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक तथा एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर विभाग ने पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया और समस्तीपुर सहित 18 जिलों में अगले 2 घंटों के दौरान वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। किशनगंज जिले के गलगलिया चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 233 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा के सोनामनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। कुल पद 200 हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है। आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इसके लिए आपके पास योग्यता मैट्रिक पास की होनी चाहिए। ITI पास भी इसके लिए सक्षम उम्मीदवार होंगे। आयु सीमा 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है। ऑफिशियल वेबसाइट होगा www.igcar.gov.in।

रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट NFR 2026 के लिए कुल पदों की संख्या 6777 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 20 जुलाई 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 होगी। आयु सीमा 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nfrrecruitment.in। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कुल 163 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। 22 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है। ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in।

0: रोजगार सूचना अब समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। रोजगार सूचना आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल हैंडसेट पर। फिलहाल जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों के लिए।
1: जार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना

0: कहा था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On the 2nd

0: nation, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू

0: उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स। द इंडिया ईयू एफटीए इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया सौदागर, दामनी, फर्स्ट लव लेटर, मासूक और एक और गीत सौदागर से ही। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना मनहर, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, कुमार सानू, साधना सरगम, लता मंगेशकर, बप्पी लहरी, अभिजीत और सुखविंदर सिंह को। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी उसकी मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी बात,
1: हिचक खुलती गई थी।
0: सृष्टि बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कोई शौक आपके?
1: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं, मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक है।
0: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी जी।
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
1: लिख नहीं सकते आप।
0: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी।
0: सृष्टि जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: दीदी, जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी कक्षा आठवीं में।
0: कक्षा आठ में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है दीदी। दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है, तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन
0: जी,
1: पांचवी तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर पांचवी के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी?
1: जी दीदी।
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वो यहाँ उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है,
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: जी दीदी।
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी।

0: कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
0: जी
1: इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: तुम्हें

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी। मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज ए प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चले जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत बहुत
1: प्रिया,
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव।
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देती है, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा होता, मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई, मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा गोयल बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे?
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं।
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात कर रही हैं, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना, जूही।
0: हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार

0: में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए, मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में MBA करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा। और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है, जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे, जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, जैसे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहिए, किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाने कैसे गा लेते हो, कहीं सीखा है? मैं कहती हूँ कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा ही।
0: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है,
0: तो
1: वो
0: बताइए
1: गाना
0: आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: है महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने
1: हाँ
0: बारे
1: जी
0: में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम, मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैम, मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से।
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम, सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है।
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के।
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: सूजी के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भून कर।
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी जी मैम। और मैम, आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं?
1: जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम।
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं।
1: मैडम
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली।
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा, और उस

0: के बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की,
0: अच्छा,
1: सितारे, सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हम दोनों ही है,
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ,
0: तो
1: हम
0: आज आप,
1: दोनों ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना,
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ, और वो नहीं, वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा,
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है, मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार। मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी,
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म।

0: भरम ना हो और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
1: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी, और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और यही जीवन की सच्चाई है।
0: जी
1: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
0: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
1: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब

0: चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं, तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
0: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
1: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये गीत।

0: सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी।

कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या

तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मैं सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4। बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं।

इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूं, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूं, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो। कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी।

राकेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं, आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकालकर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

युवा श्रोताओं के प्रिय कार्यक्रम में युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेते हैं कुछ गीतों का आनंद, करते हैं किसी खास विषय पर बातचीत जो युवाओं से जुड़े होते हैं। आज भी होगी ऐसी बातचीत। हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन लोकगीत, लोक संगीत और आपसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत के संग।

0: अभी आप अरविंद कुमार झा से यह झूमर सुन रहे थे। कार्यक्रम युववाणी जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय से ढेर सारे विंग्स यानी कि ढेर सारे पंख निकलते हैं, ढेर सारी चीजें निकलती हैं। शब्द है डिजिटल। डिजिटल शब्द से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं और युवा चूंकि इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस विषय पर अगर कोई और बातचीत करनी हो तो आप हमें खत लिखिएगा। लेकिन पहले आज इस कार्यक्रम को गौर से सुनिए। सबसे पहले डिजिटल शब्द से जुड़े हुए डिजिटल क्रिएटर के विषय में हम बात करने वाले हैं। डिजिटल क्रिएटर क्या है, क्या करता है, कैसे बनते हैं, इस विषय पर आइए छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल क्रिएटर वह व्यक्ति है जो इंटरनेट

और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो, फोटो, लेखन और ऑडियो जैसी मूल सामग्री यानी कंटेंट बनाता है और साझा करता है। सरल शब्दों में यह YouTube, Instagram, Facebook या ब्लॉग पर अपनी कला, जानकारी या मनोरंजन के जरिए लोगों से जोड़ने का एक आधुनिक पेशा है। यानी जितने भी तरह के सोशल साइट्स हैं, जितनी भी तरह की सोशल मीडियाज हैं, वहां अपनी मूल सामग्री को बनाकर साझा करना कंटेंट क्रिएटर का मूल काम है। कंटेंट में क्या क्या आते हैं? वीडियो, रील्स, ब्लॉग, लेख और ग्राफिक्स। यानी एक तरह से देखा जाए तो आज के रचनाकार और कहानीकार भी आप उन्हें डिजिटल क्रिएटर को मान सकते हैं, जो अलग अलग माध्यम से हम तक चीजें पहुंचा रहे हैं। ऑडियंस से जुड़ाव, अपने चाहने वालों और फॉलोअर्स के साथ संवाद करना, विभिन्न श्रेणियों में शिक्षा, मनोरंजन, फैशन, तकनीक, खानपान से जुड़ी जानकारी साझा करना, इसके अलावा भी और बहुत सारे फील्ड हैं जिनसे जुड़े हुए लोग कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं। इसका महत्व आज की तारीख में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विज्ञापन और प्रमोशन, ये दोनों चीजों के लिए आज एक सशक्त माध्यम बन चुका है सोशल मीडिया। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो विज्ञापन के माध्यम से आप आय प्राप्त कर सकते हैं, प्रायोजित आय प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, और इसकी अब एक आधिकारिक और रजिस्टर्ड कैरियर के रूप में देखा जाने लगा है। तो आप अपने कैरियर को भी बना सकते हैं इसमें। डिजिटल क्रिएटर की परिभाषा और कार्यशैली, ये दोनों चीज़ें हमने जानी। हम में से बहुत सारे युवा हैं जो इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं, खासकर सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करने के लिए, अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति के क्षेत्र की अपनी एक खास विशेषता होती है। उस विशेषता के अनुरूप अगर वह कंटेंट क्रिएट करता है, अपने क्षेत्र की विशेषताओं को दूसरों तक पहुंचाता है, तो लोग देखने के लिए भी तत्पर होते हैं। खासकर अगर आपका कोई अपना ब्रांड है, अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसे भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और जहां जहां आप जा रहे हैं वहां के जरिए आप दूसरों को भी घुमा सकते हैं, जी हां, जिसे कहते हैं ट्रैवल ब्लॉगर। आपको खाना पीना बनाने का शौक है, अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो आप खान पान से जुड़े हुए ब्लॉग और वीडियोस बनाकर साझा कर सकते हैं। आजकल ऐसे वीडियोस खूब देखे जाते हैं। इससे फायदा यह होता है, अब हम बिहार के रहने वाले, मिथिला के रहने वाले लोग, हमने बनाया अपने क्षेत्र का एक बढ़िया सा खाना और आपने उसे परोस दिया है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के होते हुए वह खाना पहुंचा कहीं केरला, कभी राजस्थान, तो कहीं गुजरात, और वहां के लोगों ने भी मिथिला के भोजन का स्वाद लिया। ठीक ऐसे ही राजस्थान से कोई खानपान का वीडियो चल के निकला और हमारे पास पहुंचा, हमने घर बैठे स्वाद लिया राजस्थान के भोजन का। यही तो है इस सोशल मीडिया के जमाने में खास चीज। तो चलिए बातचीत जारी रखेंगे, अभी सुनते हैं एक और झूमर।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: युवा कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज जो शब्द हमने चुना है बातचीत के लिए वह है डिजिटल। डिजिटल पे आप अभी क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर के बारे में बात कर रहे थे और अब डिजिटल के आगे हम लगाने वाले हैं शब्द मार्केटिंग। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग यह शब्द भी बहुत प्रचलन में है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरण के माध्यम से अपने उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करने की यह एक प्रक्रिया है। यानी अपनी चीज़ों को अगर आप किसी ब्रांड के मालिक हैं या आप कुछ बना रहे हैं, कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, तो उसे अगर आप सोशल मीडिया के जरिए सेल करने के लिए आप प्रचार करते हैं या उस माध्यम से आप ऑर्डर ग्रहण करते हैं, तो यह डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इसके मुख्य प्रकारों में ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग SEO इससे जुड़ा एक शब्द है। वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लाना ताकि लोग उसे आसानी से देख सकें, यानी आपकी वेबसाइट बनी हो जिसे सर्च करते ही तुरंत आपका प्रोडक्ट लोगों को दिखाई दे जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें विभिन्न सोशल मीडिया के अकाउंट शामिल हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर विज्ञापन या पोस्ट के जरिए ब्रांड का प्रचार करना। ईमेल मार्केटिंग, ग्राहकों के ईमेल पर ऑफर्स और जरूरी जानकारी भेजना। और

कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग, लेख या वीडियो के माध्यम से उपयोगी जानकारी साझा करना, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख में एक ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। अलग अलग चीज़ों को आप देख भी रहे होंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, झट से हम मोबाइल उठाते हैं, ऑर्डर करते हैं और कुछ ही पलों में हमारे पसंद की चीज़ हमारे पास होती है। यहाँ तक कि ट्रैवल करना हो तो टिकटों की बुकिंग से लेकर कैब की बुकिंग तक ऑनलाइन हो रही है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी पहुँच बड़ी है। आज के समय में लोग अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बिताते हैं, जिससे सीधे उन तक पहुँचना आसान होता है और दूर तक पहुँचना भी आसान होता है, कम खर्च होता है। पारंपरिक विज्ञापन जैसे टीवी पोस्टर की तुलना में यह काफ़ी सस्ता और असरदार है। सही दर्शक हमें अपने आप विज्ञापनों में उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिन तक वो सामान या सेवा की ज़रूरत होती है, और लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही विज्ञापनों को चुनते हैं और देखते हैं। तो ये बातचीत हुई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आगे भी बातचीत जारी है, लेकिन सुनते हैं एक नचारी पूनम कुमारी के स्वर में।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युववाणी। कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: युववाणी कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। अगला शब्द है डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया यानी ई रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। यह कागजी नोटों और सिक्कों का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इसका मूल्य सामान्य नकदी के बराबर ही होता है और यह यूपीआई से अलग सीधे वॉलेट से ट्रांसफर होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, आरबीआई की गारंटी, यह सीधे केंद्रीय बैंक की देता है जो भौतिक नकदी जितना ही सुरक्षित है। टोकन पर आधारित होता है या डिजिटल टोकन के रूप में काम करता है जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सीधे ट्रांसफर होता है। यूपीआई से थोड़ा सा अंतर है। यूपीआई एक भुगतान प्रणाली है जो बैंक खाते से पैसे काटती है, जबकि डिजिटल रुपया खुद एक डिजिटल मुद्रा है। इसके उपयोग के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने बैंक के आधिकारिक ई डिजिटल रुपए का ऐप डाउनलोड करें, पंजीकरण करें, अपने बैंक के खाते से जुड़े मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर पिन या बायोमेट्रिक सेट कर सकते हैं। लेन देन, बैंक खाते से डिजिटल रुपये को वॉलेट में लोड करें और दुकानदारों या अन्य लोगों के क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करें, जिस तरह यूपीआई का भुगतान करते हैं। तो ये आज हमने डिजिटल से जुड़े तीन शब्दों पर बातचीत की। पहला था डिजिटल क्रिएटर, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग और यह तीसरा शब्द था डिजिटल रुपया। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं बोध नारायण सिंह से यह नचारी।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

इसी के साथ युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय अब यहीं समाप्त होता है। पुनः मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: नए जमाने के नए तराने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए फिल्म भीड़ से, आवाज है रूमी और अनुराग साकिया की। शकील आजमी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनुराग साकिया ने।

0: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए, फिल्म गदर 2 से आवाज है विशाल मिश्रा, नीति मोहन, शैल अख्तर, शहनवाज अख्तर की। संगीत दिया है मिथुन ने और बोल लिखे हैं सईद कादरी ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए लापता लेडीज से। आवाज है सुखविंदर सिंह की। राम संपत के संगीत में, गीत लिखा है दिव्य निधि शर्मा ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नए जमाने के नेता राणे, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए मेट्रो इन दिनों से। अरिजीत सिंह की आवाज है, प्रीतम के संगीत में बोल लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
4: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
3: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
3: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
6: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की 3री और 4थी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
7: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर

0: की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं कल प्रथम सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर के बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। प्रस्तुत कर रहे होंगे मोहम्मद सनाउल्लाह। संध्या 6:15 पर सुनिएगा विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का समय होगा संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत नन्हा मुन्हा राही। 7:00 संध्या में समय होगा खेती गृहस्थी का। प्रादेशिक समाचार आप हमारे पटना केंद्र से सुनेंगे संध्या 7:30 पर। संध्या 7:47 पर सुनिएगा जिले की हलचल। बिहार विधानमंडल समीक्षा, इसका प्रसारण करेंगे संध्या 7:50 पर। रात्रि 8:00 सुनिएगा संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। सिंगरहार यह कार्यक्रम सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, न्यूज एट 9 रात्रि के 9:00 और उर्दू खबरें 9:15 पर। साहित्य के कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 9:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे रात्रि 10:00।

हमारे केंद्र से कल प्रातः 5:45 पर वंदे मातरम के संग हमारी पहली सभा आरंभ होगी। प्रातः 5:50 पर सुनिएगा चिंतन, विषय है प्रेम, आलेख एवं वाचन होगा कुसुमाकर दुबे का। प्रातः 5:55 पर कृषि चर्चा सुनवाएंगे, आगत फूल गोभी की उन्नत खेती, वाचन होगा शांतनु कुमार मिश्र का। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, संतुलित आहार, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर नंदिनी सिन्हा। प्रातः 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, रामचरित मानस गान सुनवाएंगे प्रातः 6:40 पर, प्रमुख स्वर होगा अनुराधा पौडवाल का। नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:05 पर। प्रातः 8 समय होगा समाचार प्रभात का। पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और प्रातः 8:30 पर खबरनामा, प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:10 पर। प्रातः 10 आप आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। भक्ति संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनवाएंगे वसुंधरा कोमकली एवं साथियों के स्वर में गायन, समय होगा प्रातः 11:00। 11:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। नारी संसार महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम सुनिएगा।

12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत, कलाकार होंगे मोहम्मद रफी। आपकी पसंद यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कल पहली सभा के अंत में आप सुनेंगे दोपहर के 3:00 प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल एवं साथियों के स्वर में राजस्थानी गीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में एवं कल प्रसारित होने वाले प्रथम सभा के कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

अभी आप विद्यापति गीत का आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आप सुनेंगे मैथिली संवाद। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। संसद मे आई पांचम दिन सेहो हल्ला गुल्ला के कारण लोकसभाक कार्यवाही सोम दिन भोर 11 बजे धरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। स्थगन सँ पहिने कार्यवाहीक बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जनौलनि जे सरकार पहिल दिन सँ नीट पेपर लीक मामला पर चर्चा लेल तैयार अछि। ओ जनौलनि जे कांग्रेसक किछु शर्तक कारण चर्चा आगू नहि बढ़ि सकल। ओ जनौलनि जे सभ सदस्य लोकनिक मनसा छनि जे एहि मुद्दा पर सार्थक चर्चा होयबाक चाही। श्री रिजिजू जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के भरोसा देने छथि जे पेपर लीक पर कड़गर कानून बनाओल जायत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह आ सीजेपीक प्रतिनिधि सभक बीच नव दिल्ली में दोसर दौरक गपशप संपन्न भ गेल। बैसारक बाद संवाददाता सब सँ गपशप में भाजपाक वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जनौलनि जे गपशप ढंग सँ भेल अछि। ओ जनौलनि जे गपशप काल्हि सेहो होयत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्षी दल सब पर नीट पेपर लीक मामला पर राजनीति करबाक आरोप लगौलनि अछि। श्री सिंह संसद सँ बाहर पत्रकार सब सँ गपशप में जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं एहि मामला पर बच्चा सभक संग ठाढ़ छथि। ओ जनौलनि जे पेपर लीक जेहन घटना सब के रुकबा लेल कड़गर कानून बनाओल जा रहल अछि। नीट पेपर लीक मामला के लऽ कऽ प्रदेश में भऽ रहल विरोध प्रदर्शन आ कानून व्यवस्थाक स्थितिक समीक्षा लेल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतक अध्यक्षता में बैसक आयोजित कयल गेल। बैसार में अधिकारी सब के छात्र सभक प्रति संवेदनशील रवैया अपनायब, संवादक माध्यम सँ स्थिति के बढ़िया सँ संभारब और बल प्रयोग के अंतिम विकल्प रखबाक लेल जनाओल गेल अछि। मुख्य सचिव जिला में प्रशासन आ पुलिसक बीच नीक संबंध बनाकऽ राखैत अफवाह पर शीघ्रही खंडन करबाक लेल सेहो जनौलनि। ओ जनौलनि जे राज्य सरकार स्थिति पर सदिखन नजर रखने अछि और कानून तोड़ेवला सभक खिलाफ कड़गर कार्रवाई कयल जायत। वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यम सँ भेल एहि बैसक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक अभियान कुंदन कृष्णन सहित सभ जिलाक जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक आ पुलिस अधीक्षक सब छलाह। एहि बीच पुलिस महानिदेशक विनय कुमार कोचिंग संस्थान सब पर निगरानी राखब, सब जिला में दंगा नियंत्रण उपकरण आ बेसी सँ बेसी संख्या में पुलिस बलक तैनाती करबाक लेल जनौलनि। विधानमंडलक मॉनसून सत्रक आई अंतिम दिन कतेको विधायी काज सब निपटाओल गेल। विधान परिषद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकक कमी, बुनियादी सुविधाक अभाव और एनबीए के मान्यताक मुद्दा उठाओल गेल। प्रश्नकालक दरमियान विधान पार्षद सौरभ कुमार आ महेश्वर सिंह आरोप लगौलनि जे राज्यक बेसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजक बीटेक कार्यक्रम के एनबीए के मान्यता नहि भेटल अछि। प्रश्नक जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शीला मंडल जनौलनि जे 11 कॉलेज लेल मान्यताक प्रक्रिया शुरू कऽ देल गेल अछि। एम्हर विधानसभा में रजौली विधायक विमल राजवंशी ध्यानाकर्षण प्रस्तावक सम्बद्ध जन वितरण प्रणालीक माध्यम सँ लाभुक सबके खराब गुणवत्तावला खाद्यान्न देबाक मामला उठौलनि। श्री राजवंशी सरकार सँ पूरा मामलाक उच्च स्तरीय जाँचक मांग कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई उत्कृष्ट खिलाड़ी सब के मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में 19 खिलाड़ी सब के नियुक्ति पत्र आ खेल छात्रवृत्ति

33 लेल 637 खिलाड़ी सबके चयन पत्र सौंपलनि। पटनाक ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीमक तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार के पुलिस उपाधीक्षकक आ एथलीट पीयूष राज के पुलिस अवर निरीक्षकक पद लेल नियुक्ति पत्र देल गेल। संगहि 5 पैरा खिलाड़ी सहित कतेको खेल विधाक आनो आन प्रतिभाशाली खिलाड़ी सब के नियुक्ति पत्र सौंपल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई का आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम में देश आ विदेशक लोक सब सँ अपन विचार साझा करता। ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक 136वीं कड़ी हैत। कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सब चैनल, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कयल जायत। बाद में मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत। एहि प्रसारण के दोबारा राति 8 बजे से सेहो सुनल जा सकैत अछि। मॉनसूनक सक्रियता से प्रदेशक बेसी क्षेत्र में थमथम कऽ वर्षा भऽ रहल अछि। आइ भिनसर, पटना आ लगपासक क्षेत्र में झमाझम वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग जनौलक अछि जे अगला 24 घंटाक बीच राज्यक उत्तर पश्चिम आ दक्षिण पश्चिम भाग में किछु ठाम तेज हवाक संग वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुननिहार समस्त नन्हा मुन्हा राही के कार्यक्रम गाम घर में स्वागत है। और हमरा संग में छथि सत्तू भाई। सत्तू भाई अहों के स्वागत है और नमस्कार है।
1: कार्यक्रम गाम घर सुनबला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तू भाई के दिश से नमस्कार। संगे धियापुता के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आ देवू भाई अहों के नमस्कार।
0: त सबसे पहले त जे छे आई हमरा लोकन जे शुक्र दिन है आ शुक्र दिन को हमरा लोकन साप्ताहिक कार्यक्रम सत्तू भाई सुने छी नन्हा मुन्हा राही तो कार्यक्रम नन्हा मुन्हा तराही सुनबे करब संग संग बाल गीत का आनंद सेहो लेब
1: किसला सेहो सुनब। ताई सबसे पहले अपना में किछ गप क ली
0: की गप क ली देखो जे आई हमरा लोकन के जे विषय ल के आयल छी सत्तू भाई जे समय जो होय छे ना बड़ा बलमान होय छे। समय ककरो इंतजार नहीं करे छे तो तें दुआरे आई हमरा लोकन धियापुता के लेल विशेष कके गप सब ल के अयलौं हैं कि समय पर दिनचर्या के पालन कोना करी और समय के जे छे देखत एकर समय के उपयोग कोना करी तो आई पर आई हमरा लोकन विशेष रूप से पर प्रकाश डालो। सत्तू भाई जे सबसे पहले त हमरा लोकन के जे गप सब जे चर्चा के विषय कहबे कलो हैं ओना धियापुता और छात्र लोकन के जीवन में दिनचर्या के पंच लक्षणम बताओल गेल अछि। ओ अछि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथेव च। कौवा के समान फुर्तीला बगला के समान नजर रखनाय

0: आ आहट भेला पर जगनाय ई सबटा गुण जे छै धियापुता में हेबाक चाही, युवा लोकन में हेबाक चाही, ओतबे ने जो जीवन में लक्ष्य के प्राप्ति करे चाहे छी सतो भाई त युवा लोकन क अल्पहारी गृह त्यागी आ विलासिता जीवन आ भ्रमित करे वाला विषय वस्तु से हमारा लोकन के दूर रहबाक चाही।
1: ओना ही देखू देबू भाई जे प्रकृति जे है ओहो अपना नियम से चलत है। अखन देखे छी जे बरसात के समय अला तो गर्मी फिर गर्मी पड़ रहल है, फिर एना ही ठंडा आयत, बसंत ऋतु आबत है तो गाछ वृक्ष पतझड़ भ जात है, फेरो अहाँ के ओ समय आबत है तो फिर देखबे नव पात आबि जात है। ओहिना धियापुता के छोट छोट लक्ष्य बना कर आगा बढ़वा से उनका सफलता भेटे छन। अपन दिनचर्या के अई ढंग से बना लेवा के चाही, प्रकृति से सीख लक जे भर दिन में कखनो समय के दुरुपयोग नहीं करी, समय के जखन सदुपयोग करब तो निश्चित रूप से आगा बढ़ब आ लक्ष्य के जे निर्धारण क के आगा जखन हमरा लोकन बढ़े छी तो ओहिमे निश्चित सफलता भेटत है कि।
0: बहुत नीक, बहुत नीक सत्तो भाई। दिनचर्या यानी समय प्रबंधन का बड़ पैग महत्व
1: है,
0: तें समय पर नित्य क्रिया, समय पर स्नान, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान, स्वास्थ्य कोना निक रहत लेल जो छे व्यायाम हेबाक चाही। व्यायाम के संग जो छे खाली व्यायामे नहीं हेबाक चाही, संग संग भोजन सेहो हेबाक चाही, तो ओहि लेल पौष्टिक आहार और अपन काज में जे अपन देखे छी धियापुता के जे स्कूल से आयल बस्ता किस्ता वाला कतौ फेंक देलक, अपन अंगा के अपन शरीरक अंगा कतौ फेंक देलक, तो से नहीं काल खुनमा उहे अंगा अहाँ पहन के फिर अहाँ स्कूल जेबे, तो तै दुआरे ओ अपन वस्त्र के एकटा नियमित स्थान पर सेहो रखबाक चाही और अपन काज के स्वयं जो छे स्वयं स्वयं अपना काज के जो छे करबाक चाही।
1: आ छोट छोट देखू जे धियापुता में छोट छोट जे बदलाव है ओहिसे अहाँ के जखन हमरा लोकन पैघ होइ छी तो वह बदलाव हमरा लोकन के काज आबत है। देखे हुए जे भर दिन में अहाँ के कखन स्कूल जा के कखन फिर ओकर होम टास्क बनब के कखन उठ के कखन सुत के सब चीज के समय निर्धारित क के जखन कोनो काज करे छी तो वो काज आसान भ जात है। आ ई नहीं जे देखे हुए कते धियापुता के अहाँ के परीक्षा के समय में एते ने धड़फड़ा जता जे सब चीज वो एक महीना में चाहता जे हम तैयारी क ली, तो ई संभव नहीं है। एक साल के जे रूटीन बनल है, समय सारणी बनल है अहाँ के, तो एक साल में अहाँ के पूरा सिलेबस के तैयार करवा के तो वो तो एक दिन में भ नहीं जात। अल छोट छोट बदलाव समय के निर्धारण क के कखन पढ़ के कखन उठ के कखन विद्यालय जा के सब निर्धारण केनाई बड़ बेसी आवश्यक।
0: बहुत नीक यही हेबाक चाही सत्य भाई। संग संग जो छे देखे छे धियापुता के जे स्कूल से आयल और अपन जो छे कपड़ा फेंक दिलखिन गंदा छे
1: फेंक दिले,
0: तो ई काज जो छे हुनका लोकन के स्वयं करे पड़त। ई नहीं कि माता पिता पर जो छे जे नहीं छोड़बाक चाही। आ जखन ई काज के अहाँ बचपने से देखियो धियापुता कांच करची जका होय छे सत्तो भाई,
1: कांच करती के अहाँ लिबा सकै छी
0: जखन जेना लिबेबै जै रूप में ढालबै एमे मातो पिता के जो छे विशेष योगदान हेबाक चाही कि धियापुता के जो छे जे व्यवहारिकता ज्ञान जो छे सिखेबाक चाही देबाक चाही कि एक तो परिवार के प्रथम पाठशाला कहल गेल
1: घर होइत छै
0: तै दुआरे मतो पिता के कर्तव्य बनत है धियापुता के केहन शिक्षा दीक्षा अहाँ दौ रहा छी। बच्चा के जो छे नियमित रूप से जे हुनक जो छे वस्त्र अछि और हुनक जो नाखून अछि जो माथक जो केस नम्हर भ गेल अछि हजामत करवा के लेल हुनका चाही जे स्वयं के जो छे माता पिता के प्रेशर देबाक चाही कि ई सब काज जे अछि जे अहाँ स्वयं करू। ई नहीं कि माता पिता जो छे अपने नहीं करे लगथिन, यदि वस्त्र गंदा भ गेल छे तो धियापुता के स्वयं कहियो कि अहाँ अपन वस्त्र खुद साफ करू,
1: ऐसे
0: होइ छे कि बच्चा में आदत पड़त
1: छै। संगे भोजन जे अछि से बाहर के नहीं खेबा के चाही, जना बहुत रास बाहर के सामान सब बिकत अछि तो धियापुता के देखबनि जे ओ चीज खरीद के खा लै छथि। भोजन अपन घरे के टटका करबा के चाही। आ बरसात के मौसम अखन अछि तो देखते छिए जे बरसात के मौसम में धियापुता के देखबनि जे ननपन के दिन रहै छनि तो ओ सब अहाँ के भिजत चलि गला विद्यालय फिर भिजत घर आबि गेलथि तो ओहिसे बुखार लागि जाइ छनि, कते धियापुता के सर्दी भ जाइ छनि, तो ई सब नहीं हेबा के चाही हमरा लोग।

0: विद्यालय जाइ छी तऽ छत्ता लऽ कऽ जाइ, सङ्गे नीक जेना पढ़ाइ करी, घर आबी, भीजल छी तऽ तुरंत देह हाथ पोछि कऽ नव कपड़ा पहिर लेबाक चाही। ई सब पर ध्यान देनाय बड्ड बेसी आवश्यक
1: छै। हे ना, जहन स्वास्थ्य नीक रहत तखने ना कोई काज करे में अहाँके मन लगत। सत्य भाई, तै दुआरे स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन के वास होइत अछि। तै हमरा लोकन के स्वास्थ्य संबंधी गप का सदखन ध्यान रखबाक चाही। जेना तुरंत तुरंत जो छै भोजन नहीं करबाक चाही, भोजन करबा से पहिने नीक जका जो छै हाथ मुंह पैर के सफाई कऽ लेबाक चाही। ओतबे नहि, बेसी काल भूखल सेहो नहि रहबाक चाही। सत्य भाई, भोजन नियमित समय पर करबाक चाही। भोजन के बाद नीक जका मुंह हाथ क जे सफाई करबाक चाही। जँ धियापुता ऐ तरहक आदत डालथिन तऽ अवश्य ऐसे जीवन में हुनका लक्ष्य के प्राप्ति हेतन। तै दुआरे समय प्रबंधन जो छै सबसे बहुत ही नीक चीज अछि, बहुत ओकर महत्व राखै छै।
0: आ समय देखू, एक बाजी यदि अहाँके हाथ से चलि जाय तऽ फेर ओ दोबारा नहि अबैत अछि। अहाँ देखैत हेबै जे हमरा लोकनि धियापुता छलहुँ हैं, फेर युवा भेलहुँ, फेर वृद्ध होयब, तऽ ओ समय जे धियापुता के रहै छै, बच्चा के समय धियापुता के, तऽ ओहिमे सिखबा के बहुत चीज अवसर भेटै छै। आ ओ यदि हमरा लोकनि सीखै नहि छी, ओकर दुरुपयोग कऽ दै छी, तऽ वएह बाद में पछतावा बनि जाइत
1: अछि। तै दुआरे ना कहलहुँ हँ, पहिनहो कहलहुँ हँ, परिवार ही प्रथम पाठशाला
0: छै।
1: अहाँ अपन धियापुता के केहन शिक्षा दीक्षा दऽ रहल छी, हुनक साथी संगति केहन छै, यदि साथी संगति जे कहबितो छै सत्य भाई कि जेहन अहाँ के संगी रहत ओहने प्रभाव अहाँ पर पड़त। तो तै दुआरे अपन संगियो साथी के जो चुनाव जो करी तो अहाँ जे छै अहाँ से नमहर, अहाँ से गुणमान वाला जखन हुए अहाँ के लेल और निक
0: अछि, ओकरा से बहुत किछु सीख
1: सकै छी। तो सत्य भाई बेर रहत फेन आगू गपशप करब, मुदा आगे की विचार?
0: हमर विचार है धियापुता के एकटा बाल गीत सुना
1: दी। सुनी हमरा लोकनि ई बाल गीत
0: सुनल जाय।

0: अने नैनपन के दिन रसगुल्ले छे सत्तो भाई वो दिन याद आब रहल छे जखन ने खाए के ठेकाना ने कपड़ा पहने के ठेकाना कखनो टाल गुल्ली ता कखनो कबड्डी
1: धियो पुता को होत रहे छन जे भर दिन खेलते रही समय अहाँ के हमरा घर से एते भेटा जे भर दिन हमरा लोकन खेलते रही पढ़ाई नहीं करे पड़े तो बहाना एक टा अलग चीज है लेकिन समय जे है से प्रतीक्षा नहीं करे
0: ककरो
1: ओ समय अपना गति से चलत 24 घंटा निर्धारित कैल गेल समय तो वही के अंदर में सब काज करवा के पड़त खेल कूद खेली लेकिन
0: समय के देखत पढ़ाई लिखाई जरूरी है सत्तो भाई हमरा लोकन पढ़ाई लिखाई सेहो करी खेलकूद सेहो करी तो हमरा लोकन आई हमरा लोकन किसले जे लोक जो आयल छी तो ओ अछि हमरा लोकन जे छै धियापुता के सुना दियन धियापुता के मुख से हमरा लोकन सुनै छी मिसर टोला दरभंगा के धियापुता के संग संकलन वाचन आ निर्माण में सहयोग अछि आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊद के
1: तो सुनल जा
2: धियापुता जय

0: आजू किस लाइक कार्यक्रम है मिश्र टोला मोहल्ला से ये तो बहुत रास धियापुता बैसल बहुत किस सुनाब चाहे तब आप हिंदे सबसे गपशप करी वो की नाम छह के
1: अमिताभ कुमार
0: आजू कार्यक्रम में अहाँ की सुनाब चाहे
1: कविता
0: सुनाओ
1: उदय हुआ सूरज पूरब में आसमान में छाई लाली रही न रात न रहा अंधेरा रही न चंदा की उजाली डाल डाल पर बैठे पक्षी चाचा चाचा चाक रहे खिले फूल मुस्काए कलिया सारे उपवन माक रहे हैं हवा बह रही धीमी शीतल मांदर सुखदाई जाग गए हैं खेत बागवन पेड़ ले रहे हैं अंगड़ा कनकन पर बिखरे हैं मोती कनकन पर बिखरे हैं मनिया कन कितने सुंदर कितने मनहर सुखद सुहानी एक लिए
0: वो की नाम छी अहाँ के
2: मनीषा कुमारी
0: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे छी
2: कविता
0: सुनाओ
3: अगर नहीं सूरज होता तो यह होता अंधियारी अगर न आता चांद न लगता आसमान में यह प्यारा अगर नहीं ये तारे होते चमकीले चमकीले आसमान में कहाँ चमकते झिलमिल पीले पीले और रंगीले रंग बिरंगे फूल न खिलते होते तो क्या होता हम फूलों की यह सुंदरता खोते
0: वो की नाम छी अहाँ के
4: चिंकी कुमारी
0: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे
4: कविता
0: सुनो
4: बिजली रानी बहुत हुआ छोड़ो अब आना जाना सोचो सर पर इंतहाम है गर्मी करती परेशान पंखे कूलर बंद करा के नहीं कया मत जाना तुमको क्या चुंचल अचानक हम भुगते परिणाम भयानक इधर मेज पर प्रेस अधूरी उधर किचन में खाना थोड़े दिन तो साथ निभाओ कच्ची खू दुखाओ पाओ बारिश के आते ही फिर नखरे भले दिखाना
0: वो की नाम छी अहाँके
5: गुंजा कुमारी
0: आज कार्यक्रम में की सुनाबे चाहे
5: कविता
0: सुनो
5: चाहे वह हवा लुबाली फूल हमेशा मुस्कुराए चाहे वह हवा लुबाली फूल हमेशा मुस्कुराए पत्ते की गोद में रह के फूल हमेशा मुस्कुराए कांटे की नोक सा कर फूल हमेशा मुस्कुराए ऊपर रहा डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराए रोना नहीं फूल को आता फूल हमेशा मुस्कुराए इसलिए वह सबको भाता फूल हमेशा मुस्कुराए।

0: रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
1: वो की नाम छे यहाँ के?
2: सुहानी कुमार।
1: आज वो कार्यक्रम वहाँ की सुनाबा चाहे?
2: कविता।
1: सुनो।
2: ठीक से पढ़ने लो जाओ, ठीक से पढ़ चलो नहा, ठीक से पढ़ खाना खाओ, ठीक से पढ़ पढ़ने जाओ, ठीक से पढ़ मौज उड़ाओ, ठीक से पढ़ ज्ञान लगाओ, ठीक से पढ़ सबका बड़ा, तो तुम बहुत बड़े कहाँ रहा।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
3: चटकी।
1: आज वो कार्यक्रम वहाँ की सुनाबा चाहे?
3: बाबा कुछ जरूर
1: सुनो।
3: वहाँ
1: की नाम छे?
3: नाक्षी कुमारी।
1: हाँ, दोनों मिलकर एक गीत सुनाबा चाहे छे, सुनो।
4: पापा कुचे चोर ओढ़ डाली, दाता पलम उदाल चाई, कियो कमलिया जलवा लाबे, केकर बटुला को बाल चाई।
1: वो की नाम छिया का?
5: शिवा भंडारी।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनाबा चाहे?
5: कविता। प्यारा भारत देश हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, सारी धरती के देशों में सबसे सुंदर सबसे न्यारा, उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में है सागर लहरा, सूरज सबसे पहले आकर इसे प्रेम से सिर झुका, इसी देश के आंगन में गंगा यमुना बहती, सदियों से जो इस माटी की गौरव गाथा करती।
1: वो की नाम से यहाँ का?
6: कुसुम।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनाबा चाहे?
6: फूलों का संसार।
1: सुनो।
6: पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती इकट्ठा नहीं कर सकते, अकेले फूल को कई कांटों की इच्छा करने की जरूरत नहीं होती, आपको गुलाब देने वाली के हाथों में हमेशा थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, फूल यूं ही नहीं खिलते, इसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है। हम एक फूल से यह सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को न्योछावर करके और बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशियाँ को और भी बढ़ा सकते हैं। हम फूल प्रकृति में खिली आत्मा है, पतझड़ एक दूसरी बसंत की तरह है, लुहावने फूल ईश्वर की अच्छाई की मुस्कान है, फूल प्रेम की सच्ची भाषा है, फुलवाली लगाना ईश्वर के साथ टहलना है।
1: वो की नाम से यहाँ का?
7: श्याम भंडारी।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनाबा चाहे थी?
7: कविता।
1: सुनो।
7: गुड़िया को चल बुखार, डॉक्टर को तो पड़ी गुहार, मुन्ना बन कर चला डॉक्टर, बोला लूंगा रुपए चार, मुँह लटका कर मुन्नी बोली, यह गुड़िया गरीब है भोली है, कुछ तो इस पर दया दिखाओ, कुछ तो अपनी फीस घटाओ, चुन्नी बोली सुनो डॉक्टर एक बात का ध्यान रखे, पर कभी दवा बिल्कुल ना देना, चाहे फीस चौगुनी लेना।
1: वो की नाम छे यहाँ का?
8: प्रिंस कुमार।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुनावा चाहे छे?
8: गाना।
1: सुना।
8: ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए चौधर चाहे, मैं पूछ रहे वो आंध चदा, या जाने मेरी ये रहे न रहे, ए मेरी जमी मैं वो मेरी, तेरी नच नच में मेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी अंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे,

खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू, अफसोस नहीं खलियान में झूम के भंगड़ा पाल करता था, आबाद रहे वो गांव मेरा जिस गांव में लौट के वापस जा न सका, वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा साथ निराला था, कुर्बान हुआ तेरे चम्मच पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबंगे मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू, ओ हीर मेरी तू हस्ती है मैं मरता था जिस मुख मुकरे पर कभी कम ना हो, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबंके मैं खिल जावा इतनी है।

0: दिल की आरजू, तेरी नदियों में बहजावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
1: बुआ की नाम जी यहाँ का
2: सामवी कुमार।
1: आज कार्यक्रम माँ की सुनावा चाहिए जी।
2: बड़े सवेरे
1: सुना।
2: बड़े सवेरे जब खिलते बेला गुलाब कचनार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार। गेंदा चंपा और चमेली महकी है अरवेरी, आंगन में आ गई अचानक आज बसंत बहार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार। लंग लंग के फूल खिल मुझसे तो सभी ले मिले हैं, फूलों की सारी बगिया है अपना ही परिवार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार। रंग घोलते महक उठाते फूल हमेशा ही मुस्काते, डूबता को चाहे वर्षा पड़े मुसलाधार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार।
1: आज कार्यक्रम की सुनावा चाहिए
3: कविता। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसली सी घोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें लच लच बोलो, जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो, हंसकर मन की गांठें घोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो।

0: साल गेंदा चंपा और चमेली महकी महकी है अरवेली, आंगन में आ गई अचानक आज बसंत बहार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार, रंग रंग के फूल खिल मुझसे तो सभी ले मिले हैं, फूलों की सारी बगिया है अपना ही परिवार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार, रंग घोलते महक उठाते फूल हमेशा ही मुस्काते, डूबता फूल चाहे वर्षा पड़े मूसलाधार। मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार।
1: आज कार्यक्रम की सुनावा चाहिए
2: कविता। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसली सी घोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें लच लच बोलो, जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो, हंसकर मन की गाँठें घोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो।
1: की नाम से यहाँ का
3: दिव्या कुमार।
1: आज कार्यक्रम माह की सुनावा चाहिए
3: कविता।
1: सुनो।
3: खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अभी चलो कर सब संकट तूफानी में, डीवो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नव के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में, मर जाने दो।
1: अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बहुत सुंदर। बुआ की नाम से यहाँ का
4: सृष्टि कुमार।
1: आज कार्यक्रम में यहाँ की सुनावा चाहिए
4: कविता।
1: सुनाओ।
4: चाहे बहे हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवा लुवाली फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, ऊपर डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता, रोना नहीं फूल को आता वो हमेशा मुस्काता, इसलिए वह सबको भाता फूल हमेशा मुस्काता।
1: बउआ एक बेर एक संत लग में दूटा विद्वान अलथ, दुनू स्वयं के एक दूसरा से श्रेष्ठ बता रहा छलखिन। ओ संत से अनुरोध कल जे वह तय करे जे दुनू में से श्रेष्ठ संत के छथि। संत दुनू के परीक्षा लखिन तो दुनू एक से बढ़ के एक छलथि। हुनका बुझो में नहीं आबि रहा छलन जे श्रेष्ठ किनका कहल जाए। किछ काल सोच के संत बजला, एखन त अहाँ सब बराबर छी, लेकिन एकटा और परीक्षा लेल जात, एकर बाद जहन अहाँ सब उत्तीर्ण भऽ जाएब वह श्रेष्ठ मानल जता। ई बात कह के गुरुदेव हुनका सामने फल फूल आ आन आन वस्तु सब राखि देलखिन। फिर हुनका सबसे कई एकटा विषय पर चर्चा होमय लागल। एकटा प्रश्न पर दुनू विद्वान अड़ि गेला आ संतक जवाब के गलत सेहो साबित करय लगला। हुनकर बात सुनि के संत आवेश में आबि गेला आ हुनका नीक खराब से कह लगलखिन। संत के तामस में बाजैत देख के पहिल विद्वान त अपना आप पर काबू रखलथि आ धीरज से अपन पक्ष रखलथि, मुदा एकर विपरीत दोसर विद्वान अनाप शनाप बाजय लगला, तामस में फल फूल सेहो इम्हर आम्हर फेंक देलखिन। एत तक कि महात्मा जी संगे हाथापाई करय पर सेहो उतारू भऽ गेला। हुनका देख के महात्मा जी भाई उठला, बस अहाँ के परीक्षा खत्म भऽ गेल, आब शांत भऽ जाओ। दुनू विद्वान हुनकर बात सुनि के चुप भऽ गेला। हुनका चुप होइत देख के संत कहलखिन, एहिमे कोनो दूटा राय नहि जे अहाँ दुनू आदमी बहुत ज्ञानी आ विद्वान छी, मुदा श्रेष्ठ अहाँमे से ई पहिल विद्वान छथि। एना कहैत महात्मा जी पहिल विद्वान दिस इशारा केलखिन। ई सुनि के दोसर विद्वान हैरान भऽ गेला। ओ तुरंत महात्मा जी से कहलखिन, महोदय हमहूँ तऽ अहाँके सबटा गपक जवाब देलहुँ, मुदा अहाँ फैसला पहिल के पक्ष में किया देलियन। महात्मा जी हुनकर बात के जवाब देत कहलखिन, अहाँ के ज्ञान में कोनो कमी नहीं, मुदा क्रोध पर नियंत्रण अहाँ नहीं रख पावे छी। याद राखू, क्रोधी व्यक्ति कखनो अपन ज्ञान के उपयोग नहीं कऽ पावैत अछि। हुनकर गप सुन के दोसर विद्वान लज्जित भऽ गेला। एहि कथा से अपना सबके यह सीख भेटित अछि जे क्रोध बुद्धि के दिया के मिझा देत अछि, ताहि कारणे एकरा से सदैव दूरी बना कर राखी। एक संग हम आज कार्यक्रम के विराम दे छी। एक बेर फिर एही विश्वासक संग विदा ले छी जे फेर भेंट है अगला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लाय के संग धिया पुता जय हिंद।
5: सतो भाई अखन हमारा लोकन किसले सुने छलो धियापुता के मुख से ई छल मिसर टोला दरभंगा के धियापुता के संग छलो हमारा लोकन। संकलन वाचन आ निर्माण में सहयोग छला आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊद के। तो हमारा लोकन जो छे खूब निक जका आनंद लेलो किसले के संग संग आशा करे छियन जे धियापुता संग संग श्रोता लोकन के सेहो नीक लागल हेतन।
6: अखुनका समय में देखू जे बरसात के

0: अछि। तऽ एहनमे तऽ विद्यालय खुलले अछि, लेकिन बरसातके समयमे धियापुताके किछु बचिकऽ रहबाके चाही, कि भिजवासँ बचबाके चाही, सङ्गे टटका खाना खेबाके चाही, सुसुम पानि जे होइत अछि से पीबाके चाही, आ सवेरसँ सवेर उठबाके चाही आ सवेरे पढ़ि लिख कऽ सुति रहबाके चाही। कि
1: हँ हँ छैहे ने समय, किएक तऽ बिहान काल्हि खुनमा तऽ सेहो ने उठबाके छै, इसकुल जयबाके छै, तऽ समय प्रबन्धन जे छै बहुत जरूरी छै।
0: समय प्रबन्धन पर यदि ध्यान राखि कऽ दिनचर्याके बनायब तऽ निश्चित रूपे ओ अहाँके अखन तक काज देबे करत, सङ्गे जखन पैघ होयत तऽ ओ दिनचर्या बनल रहत, तऽ ओ आगाँ
1: सभदिन काज देत रहत।
0: छै
1: तऽ सत्तो भाई, हमरा लोकनिके जे छै कार्यक्रम आब गाम घरके समेट कऽ आब हमरा लोकनि खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही। तऽ कार्यक्रम खेती गृहस्थीमे समस्त किसान श्रोता लोकनिके अन्नदाताके स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि,
0: बहुत स्वागत छनि किसान भाइके।
1: आ चलै छी तनि बाधवन्दिस, बाधवन्दिस तऽ देखे रहल छियै जे अखन बादल उठैया आ ई फुकफुकिया गाड़ी जकाँ धुआं देत जे छै, जेना देखै छियै धुआं पहिले इंजन वाला जो गाड़ी, कोयला पानी वाला जो गाड़ी होइ छै तो भुक भुक करते हुए ओ निकल जाइ छै, तेहने देखै छियनि अखन जे पूरब दिस से बादल उठैया आ फुकफुकाते हुए बाहर माने निकल जाय, अपना जो छै बाट पर चल जाय। कहबाक तात्पर्य ई अछि जे हमर किसान श्रोता लोकनि जे अखन बहुत परिश्रम सँ खेती बाड़ी कऽ रहल छथि, बरखा नहि भऽ रहल अछि, जे बिया बाल अछि बुझू जे खेतेमे जे पड़ल अछि
0: आ किछु खेतो केलथि हे किसान भाइ, तऽ पटौनी कऽ कऽ केलथि हे, तऽ ओ देखै छी जे बाधमे एकदम हरियर कंचन बनल अछि, देखिए कऽ सुन्दर वातावरण।
1: सत्तो भाइ रहत कि एखने एखने मौसमे एहन छै, नहि बुझलियै हरियाली यहाँ जतय अखन देखब हरियालिये हरियाली नजर अहाँके चौर चाकर मे आयत आ सुन्दरो लगै छै। तऽ आइ हमरा लोकनि जे छै सत्तो भाइ, जे आइ हमरा लोकनि खेती गृहस्थीमे गपशप करब जे बरसाती भिंडीके खेती कोना करी, केना कर लाभ प्राप्त करी।
0: बरसाती भिंडीके जे खेती अछि, हमरा लोकनि तऽ निचला खेतमे धानके खेती कऽ लै छी, आन खेती कऽ लै छी, लेकिन ऊँचास जे खेत अछि ओहिमे अहाँके बचल रहि जाइत अछि, तऽ ऊँचास खेतके ताकि कऽ हमरा लोकनिके अखुनका समयमे भिंडीके खेती कऽ सकै छी की?
1: हँ हँ छैहे ने, ओनाहियो जे देखै छियै रामतोरैके जो भाव होइए आ कोनो तरहक तीमन तरकारीके जे सत्तो भाइ ओ बुझू जे उचगरे रहैए, आ जखन हमर अन्नदाता किसान श्रोता लोकनि जहन नीक जकाँ तीमन तरकारी लगैथिन, लत्ती फत्ती बाड़ी झाड़ीमे लगैथिन, तऽ अवश्य अछि जे नीक जकाँ उपजा बाड़ी हैत, आ जहन नीक जकाँ उपजा बाड़ी हैत तऽ बुझिते छी जो अहाँके जो छै बाजारक जे हाट बाजारके जो मूल्य अछि ओ बुझू जे दुनूके जे छै तालमेलके सन्तुलन कऽ सकैत अछि।
0: आ ई अहाँके लोकप्रिय सब्जी सेहो अछि भिंडीके, अहाँके सब्जीमे अहाँके कम मेहनतमे अहाँके बेसी उपजा दैत अछि आ एहिमे रोग व्याधि सेहो बहुत कम लागैत अछि, तऽ भिंडीके खेती किसान भाइ यदि ऊँचास खेतमे करैत तऽ बेसीसँ बेसी बेच कऽ एकरा उपज जे हैत तऽ बेच कऽ नीक कैचा कमा सकैत छी।
1: हयौ सत्तो भाइ, तऽ उपजा हैत तखन ने, मुदा ओहिसँ पहिले तऽ हमरा लोकनिके खेतके चुनाव करय पड़त, ओकर जो प्रभेद अछि ओकरो चुनाव ना करब तखने ना नीक उपजा हैत।
0: नस्ल प्रभेदके कहियौ कि कोन कोन प्रभेद
1: चाही। तऽ सबसे पहिने जे ओकर प्रभेद अछि ओकरा हमरा लोकनिके खेती करबासँ पहिने चुनाव कऽ लेबाक चाही। ओ अछि बरसाती रामतोरैके उन्नत प्रभेदके जो गप करी तऽ ओ अछि परभन्नी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, KS 312, ओकरा 4, पंजाब 7, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी लीला, एहि तरहक जे छै ई प्रभेद अछि। सङ्ग सङ्ग शंकर किस्ममे सेहो हमरा लोकनिके ध्यान रखबाक चाही, शंकर किस्ममे एकर प्रभेद अछि भवानी, कृष्णा, काशी भैरव, काशी महिमा, एहि तरहक जे छै उन्नत जे छै संकर किस्मके ई प्रभेद अछि।
0: सङ्गे अहाँके आरो उन्नतशील प्रभेद यदि करय चाहै छथि किसान भाइ तऽ पूसा A4 अछि, सङ्गे अहाँके पंजाब 7 अछि, अहाँके अर्का अनामिका अछि, वर्षा उपहार अछि, ई सबके सेहो उन्नतशील प्रभेदके चयन कऽ कऽ खेती कऽ सकै छथि किसान।
1: सङ्ग सङ्ग हमरा लोकनिके जे छै खेती करबासँ तऽ उन्नत प्रभेदके गप कयलहुँ हँ, सङ्ग सङ्ग बाउग करबाक सेहो समय ध्यान रखै, किएक तऽ हमरा लोकनि पूँजियो लगायब, मेहनतो करब, आ जँ नीक जकाँ उपजा बाड़ी नहि होत तऽ सबटा कयल धैल बेकार भऽ जाइ छै, तऽ ताहि दुआरे बाउगके

0: समय जो छै जे सेहो ध्यान रखबाक चाही, ओ अछि फरवरी सँ मार्च आ बरसाती अछि जून सँ जुलाई धरि, जे अखन समय बहुत उपयुक्त अछि अगर हमरा लोकनि राम तुरैके खेती अखन कऽ सकै छी। बिया दरके जँ गप करी तऽ बिया दरके लेल जे छै 15 सँ 18 किलो प्रति हेक्टेयर दरसँ हमरा लोकनिके व्यवहार करबाक चाही। सङ्ग सङ्ग सत्तो भाइ दूरी, आब देखै छियै कि हमर किसान सौदा लोकनि एक मने घनगरे लगा दै छथिन, ओहिमे होइ छै कि पेड़ पौधा जो छै ने जे ओकर पेड़ पौधाके फैलाव नहि भऽ पाबै छै, गाम घरमे ओकरा बियान कहै छै, ओ नहि भऽ पाबै छै। तऽ ओहि लेल हमरा लोकनिके दूरीके सेहो ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल अछि 45 × 30 सेंटीमीटर आओर बरसाती लेल जो अछि दूरी 50 × 45 सेंटीमीटर रखबाक चाही।
1: संगे भिंडीके खेती यदि करै छथि किसान भाइ तऽ एकरा लेल गर्म आ नम वातावरण श्रेष्ठ मानल जाइत अछि। 25 सँ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जे होइत अछि से एकर खेतीके लेल उपयुक्त होइत अछि। एहिसँ यदि नीचाँ आबि जाइत अछि तापमान तऽ अंकुरित हेबामे कठिनाइ होइत अछि। संगे ग्रीष्म ऋतु अखन खरीफके समय चलि रहल अछि तऽ एहन समयमे यदि भिंडीके नीक जना भूमिके तैयारी कऽ कऽ जकर भूमिके पीएच मान जे अछि से 7.0 सँ 7.8 के बीच हुए, ओहन भूमि नीक मानल जाइत अछि। संगे भूमिके 2 सँ 3 बेर जोताइ कऽ कऽ माटिके भुरभुरा कऽ लेबाक चाही, तकर बाद पाटा लगा कऽ समतल केलाके बादमे एक लाइनसँ दूरी बनाके एकरा से टोभबाक चाही आ टोभनी केलाके बादमे से अहाँके 15 सँ 20 दिनके बाद ई अंकुरित भऽ जाइत अछि। संगे जखन पैघ भऽ जाए गाछ तऽ एकरा कमठौनी करैत रहबाक चाही, निकाय गोड़ाई करैत रहबाक चाही।
0: हाँ हाँ सत्तो भाई, कमठौनी तऽ मेन चीज अछि। अखन तऽ देखिए रहल छै बाड़ी झाड़ीमे जे फसिल पाछू पाछू आ खर पतवार आगू आगू, आ जे हमरा जो पोषक तत्व होइए खेतमे ओ तऽ बुझू जे सबटा खरे पतवार जो छै टान लैया। तऽ जँ समयसँ पहिले हमरा लोकनिके कमठौनी करी आ कमठौनीके उपरान्त जकर पोषक तत्व यऽ खाद उर्वरक अछि ओकरो हमरा लोकनिके व्यवहार करबाक चाही, किएक तऽ सब किछु करबे करबै आ ओहिमे पोषक तत्व नहि देबै तऽ पौध जो छै अहाँके विकास नहि कऽ पाबत। तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके खाद उर्वरकके सेहो ध्यान रखबाक चाही। तऽ किसान श्रोता लोकनिके बता दियनि जे कम्पोस्ट 200 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दरसँ व्यवहार करबाक चाही। सङ्ग सङ्ग जो छै जे निकाय गोड़ाइके कहबे कयलहुँ हँ, निकाय गोड़ाइ समय समय पर करैत रही आओर नमीके ओना अखन बरखा नहि ओहन भऽ रहल अछि, जँ खेतमे जँ खेतमे नमी नहि अछि तऽ नमीके देखत जे छै ओकरा पटौनी सेहो करैत रही। तऽ जँ एहि तरह हमरा लोकनि सत्तो भाइ जे राम तुरैके खेती करब तऽ अपनो खायब आ सङ्ग सङ्ग टोला मोहल्लामे तऽ सेहो ने बाँटब, किएक तऽ स्वार्थिये नहि बनबाक चाही, बाँटि के खाउ तखने जे छै भगवान ऊपर से देखैत रहै छथिन। तऽ हमरा लोकनि खेती गृहस्थी पर गपशप कयलहुँ, अब आगे की विचार सत्तो भाइ?
1: आगे विचार अछि जे किसान भाइके पहिने एकटा से गीत सुना दी।
0: आओ हमरा लोकनि सुनी लोकगीत।

0: हमरा अंगना में उग गेले चांद तखन पड़वा है कि। राधा मोहन मिश्र के गाल किसान भाई अखन गीत सुन रहा चलत है। आप देवू भाई हमरा लोकन एक भेंट वार्ता सुनी। प्रगतिशील किसान संतोष यादव से गप केने देव नारायण यादव आ भेंट वार्ताकार संतोष यादव तो सुनल जाए गप।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज हम आयल छी महेशपट्टी गांव। ई गांव दरभंगा सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत वासदेवपुर के अंतर्गत आबत है। एतो के किसान के देख रहल छी जे अखन बाध वन में लागल छे और चारू कात जे देख रहल छी हरियाली छायल अछि। तो आउ वही क्रम में एतो के किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने की नाम भेल?
2: जी हमर नाम संतोष यादव भेल।
1: संतोष यादव जी अपनी खेती बाड़ी करे छे?
2: हाँ करे छी, खूब खेती करे छी।
1: कोन कोन फसल के खेती करे छी?
2: सीजन के हिसाब से जे खेती होय छै ओहे करे छै, लेकिन खेती ई होना चाहिए कि खेती में इनकम के साथ साथ सामाजिक जरूरत भी पूरा।
1: बहुत निक विचार है संतोष जी। अखिनका जे बाद मन में जे अहाँ जे लगेने छी तो मखान कोन कोन फसल के लगेने छी?
2: ओना तो अभी धान मरुआ कोमी कोदा यही सब करे छी।
1: बहुत निक विचार है संतोष जी। आज समय में जे हमर सरकार के जो सेहो जे विशेष ध्यान है जे किसान बेसी से बेसी मोटा अनाज के ओर बढ़ावा दे, तो मोटा अनाज के बढ़ा...

0: दावा के पाछू की कारण भ सकत अछि।
1: उना तो फसल 3 महीना में तैयार हो जाए छै, जेकर फलस्वरूप किसान खरीफ के और फसल के खेती के लाभ प्राप्त कर सकै छै। खरीफ मौसम में किसान मक्का के साथ खेती के रूप में खारी, भिंडी, बीन्स, बीन्स जैसे सब्जी खेती करै छै।
0: यानी मिश्रित खेती यहाँ सो करै छै, एकरे कहल जाय छै आम के आम आ कुठली के दाम। बहुत नीक विचार है। एक तरह खरीफ फसल करै छै आ संग संग खरीफ फसल के संग संग जे आनो जे फसल होइया सेहो करै छी, तऽ बहुत नीक गप अछि। संतोष जी, संतोष जी, अखिनका समय में जे देख रहल छी जे हमर किसान श्रोता लोकन अखन खास कऽ के धान के फसल में लागल छै, तऽ अखन पानि तानि नहि भऽ रहल अछि, जेहे पानि भेला ओहे मे हमर किसान श्रोता लोकन लागल छै, तऽ पानि अपने जो खेती बाड़ी जो करै छी धान फसल के, तऽ ओहन तऽ कोन विधि से करै छी, कदबा विधि से करै छी या छिड़का विधि से करै छी?
1: देखियौ, कदबे विधि से करै छी हमसब खेती, लेकिन ई मौसम में तो देखे छियै पानी होय छै नै होय छै, अभी भेलक है कनी मनी बारिश भेलै है, कनी ऊपर वाला भी साथ देलकै है, स्टार्ट केलौ वह खेती आ बोर्डिंग छै अपना, वो से पानी वानी के व्यवस्था कऽ के खेती करै छी, जे कि बहुत दिक्कत होय छै पानी बिना, मौसम परिवर्तन के कारण बहुत समस्या होय छै।
0: संतोष जी, अपने जो अखन फसल जो लगेने छी, तहमे अखन जो छै कोन कोन फसल लगेने छी खेत पथार में?
1: अभी तो मक्का के खेती करै छी।
0: बहुत सुंदर, अखन अहाँ अखन जो छै खरीफ मक्का के अहाँ खेती लगेने छी, तो खरीफ मक्का के जो खेती लगेने छी, तो मक्का लगेबा से पहिने अहाँ तऽ बीया के व्यवहार तऽ सेहो करत होबै, तऽ बीया के जो व्यवहार जो करै छियै तऽ अपन घरेलू बीया के व्यवहार करै छियै या आन ठाम से कीन के आनै छी?
1: देखियौ, थोड़ो में रहै छै और नै रहला के बाद कीनो के लाबै छियै, तऽ बिहार सरकार के तरफ से देखियौ किसान के बहुत सुविधा भेटै छै और उनकर वेबसाइटो छै, ओ पे ढेर सरकार प्रकार के जानकारी दै छै किसान के कि केना मक्का के खेती होतै, कोन बीज से बढ़िया मतलब होतै, मोट दाना, सब सब तरह के जानकारी ओहि पे छै, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जानकारी, तऽ मक्का के बीज प्राप्त भी करल जाय छै वहाँ बिहार सरकार के थ्रू, और हम सब वहाँ से लेलौ, और जितना अंतर्राष्ट्रीय कृषि विभाग सरकार के अधिकारी हम सब किसान के विभिन्न क्षेत्र में भी घूमे छी और तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करे छी, उस हिसाब से हम सब खेती करे छी, तो सरकारों के बहुत योगदान छै हमरा सब।
0: तो यहाँ जो छै अब बीया के जो व्यवहार करे छी, यानी सरकार की से सो समय समय पर जो छै योजना चला के जो बीज के देल जाते है, और नहीं भेल तो अहाँ घरेलू उपचार घरेलू बीया के से व्यवहार करे छी?
1: हाँ, घरेलू बीया के व्यवहार भी कैली और सरकार के तरफ से भी मिलल वो व्यवहार कैली।
0: व्यवहार जो अहाँ करे छियै संतोष जी, तो अखन मानसून के बारिश भ रहल छै, खरीफ फसल में जो छै एकर बुआई के जो छै कोना की करै छै, कोई कखन एकर बुआई करै छै अहाँ जो छै आ केना लगाबै छै एकरा?
1: देखियौ, ओना तो सबके पता छै मानसून बारिश के साथ खरीफ फसल के बुआई के काम शुरू हो जाय छै। खरीफ फसल प्रमुख छै, जेकि ओने तो धानो होय छै, धानो के खेती करै छी, लेकिन अभी मक्का के खेती लगेने छी। मक्का के खेती में होय छै कि एमे कमाई भी बहुत होय छै, क्योंकि मक्का के खेती ढेर सारा चीज में उपयोग होय छै मक्का, जैसे कि मक्का से किसान के बिक्री होय छै, बड़ा बड़ा ब्रेड कंपनी वाला सब ब्रेडो बनै छै, और देखै छियै आउ सीजन के हिसाब से मक्का के भुट्टो बना करके आग पे सेक के खाय छै, और ओकर आटो होय छै, हम सब रोटी रोटी खैली और तागतो खूब होय छै ओहिमे, तऽ मक्का के रोटी के लेल आटा भी बिकै छै और ढेर तरह के सामग्री बनै छै मक्का से, तऽ एकर खेती से हमरा सबके खूब लाभ है और खूब बिक्री होय छै एकर, तऽ यही सब ध्यान में रखते हुए हम सब एकर खेती करै
0: छी। संतोष जी, बहुत नीक गप कहली, एकरे कहल जाय छै कि आम के आम आ गुठली के दाम। एक तऽ अहाँ अपन खेती करै छी, दोसर एकरा बेच बिकीन के जो छै आमद सेहो प्राप्त करै छी, आ तेसर जो छै व्यवसायिक दृष्टि से एकर खेती सेहो अहाँ कऽ के नीक से नीक कैचा सेहो प्राप्त करै छी। तो संतोष जी, खेती जखन करै छियै तऽ खेती के तऽ समय समय पर देखरेख तऽ सेहो करत होबै, तऽ एकरा जो छै खर पतवार निवारण तऽ सेहो करत होबै, ओकरा केना की करै छियै?
1: पहला तऽ एगो बात कहै छी, मक्का के खेती करू, सब जाने छै खेती करे के तरीका, लेकिन मक्का के खेती करे के केना चाही, तऽ पहले तक बनाओ क्यारी में दूरी बनाओ, एक एक हाथ के करके

0: ओकर बीज के रोपियौ और ओहिमे खाद बीज के व्यवहार जे कहै छै अहाँ, जेकि हम तऽ खेती करै छी तऽ खेती के मतलब बाल बच्चा के तरह समझै छी, खेती के हमेशा ध्यान देलहुँ कीट पतंग नहीं लगे, कीट पतंग लगे तो कनी छिड़काव कैलू और ओकर जड़ में हम सब रखने छियै, देखै छियै चूल्हे पे खाना बनै छै, राख ताख एकदम गोबर माटि सब ओहिमे धऽ दै छियै, चारू खेत के अरिये आरू धऽ दै छियै आ सबके जड़ो में धऽ दै छियै ताकि कोनो तरह के कीटनाशक ओहिमे नहीं लगे। जेकि पेड़ के
1: संतोष जी बहुत नीक विचार, खेती करवा से पहिने खाद उर्वरक के सब व्यवहार करत होबे, खाद उर्वरक में जो छे कौन खाद के व्यवहार करे, रासायनिक खाद के व्यवहार करे या जैविक खाद के व्यवहार करे?
0: नहीं, हम तो जैविक खाद के व्यवहार करे, अब दुनिया करे होते रासायनिक खाद के, लेकिन हम जैविक खाद के, चूंकि जैविक खाद इला व्यवहार करे ताकि अपनो घर में यूज करे के छे ना, तो शुद्ध अनाज होते तो सेहत के लिए भी बढ़िया रहते, तो जैविक खाद के व्यवहार कलो और बड़ा निमन से खेती होइ छै, कोनो दिक्कत नहीं होइ छै, बढ़िया दाना होइ छै और मोटा।
1: बहुत सुंदर, बहुत नीक विचार, ताहि लेल जो छै जैविक खेती जे अपन से खेती करै छियै त आइ लेल आन किसान के सेहो की सलाह देबै?
0: हाँ, आनो किसान के सलाह देबै, समय समय पे अहाँ जो भी फसल उगेने छी समय समय पे ओकरा ध्यान दियौ और जैविक खाद के व्यवहार करियौ, गोबर के कम्पोस्ट बनैयौ और ओहिमे डालियौ और समय समय पे ओकरा ध्यान दियौ, किसी तरह के नुकसान न हो ओहो पे ध्यान देबा चाहिए।
1: संतोष जी बहुत नीक विचार कि अपने तो जैविक खेती करबे करे छी, संग संग आनो किसान श्रोता लोकन के सलाह दे के मन बुझू जे गप सुन के प्रफुल्लित भ गेल, अपने से खेती गृहस्थी विषय पर गप सप क के बहुत नीक लागल, आशा करे छी जे आन श्रोता लोकन के सेहो नीक लागल है, एहि लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, अखन भेंटवार्ता सुनै छलहुँ हैं, प्रगतिशील किसान सब बातचीत, भेंटवार्ताकार छलथि संतोष यादव, इनका से गप कर रहल छलथि देवनारायण यादव।
3: तो ई सब हमारा कन सुनलहुँ।
2: हाँ, आप किसान भाई के मौसम पूर्वानुमान कह दियन, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 22-26 जुलाई धर के मौसम पूर्वानुमान एहि प्रकारे रहबा के अनुमान अछि। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में नीक वर्षा हुआ के संभावना नहीं अछि, हालांकि 23-24 जुलाई के आसपास गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिला में किछु स्थान पर हल्लुक से मध्यम वर्षा भऽ सकैत अछि। पूर्वानुमानित अवधि में आन जिला में बिजली चमकवा एवं तेज हवा के संग कतौ कतौ हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि, संगे एहि दौरान तापमान में थोड़े बदलाव भ सकैत अछि, ज्यादातर स्थान पर तापमान 30-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री के बीच रहबा के संभावना अछि। एहि दौरान से पूर्वानुमानित अवधि के दौरान काफ़ी नमी रहबा के संभावना अछि, भोर में सापेक्ष आर्द्रता 85-95% आ दुपहरिया में अहाँ के 50-60% के बीच रहबा के अनुमान अछि। एहि दौरान में मुख्यतः पूर्वी हवा 5-15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलबा के संभावना अछि।
3: ई छल मौसम संबंधी सूचना। आप सतो भाई जे हमर किसान श्रोता लोकन जो अखन जो समसमायिक खेतीबाड़ी सेहो खेतीबाड़ी में लागल छै, तो हमरा लोकन के अखन कोन कोन खेती करबाक चाही, कोन फसल के जो छै करी तऽ ओकरा देखरेख कोना करी, तो आइ हमरा लोकन जे सबसे पहिने जे धान के रोपनी अय माह के अंत धर संपन्न क ली, मक्का बाग के 15-20 दिन बाद कमठाउन करी, मक्का में बाली निकलला से पहिने नेत्रजनक उपवेशन करबाक चाहिए, शंकर बाजरा के बाग जुलाई मास के 2nd और 3rd मास में क लेबाक चाहिए, संग संग मिश्री कंद जकरा गाम घर में किशोर सेहो कहल जात अछि तो जो छे हमारे लोकन के लगावाक चाहिए।
2: आप देखू जे अहाँ के खेती गृहस्थी के समय संपन्न हुआ पर अछि, तो किसान भाई से चलवा के आज्ञा हमरा लोकन के लेबा के चाहिए। नमस्कार देवू भाई।
3: नमस्कार सत्तो भाई।

अभी आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
1: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
0: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
2: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
4: कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत संपन्न। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी बधाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। नवादा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। संसद में आज लगातार 5वें दिन भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन से पहले कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
3: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत संपन्न हो गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। श्री नड्डा ने कहा कि बातचीत कल भी जारी रहेगी।
6: बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा कि हम कल से भी आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो कार्य हो वो आपको बताएंगे।
3: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है।
7: हमसे दागी हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो अपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स।
3: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष

0: पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार पेपर लीक पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल केवल राजनीति कर रहे हैं।
1: विपक्ष का रवैया पूरा गैर जिम्मेवार रवैया, और विपक्ष की मांग थी बहस कराइए, सरकार तैयार है हर तरह की बहस कराने के लिए। तुम बहस करिए, कौन रोका है? आप अपनी बात रखिए, सरकार अपनी बात रखेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। श्री सरावगी ने आज पटना में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि छात्र हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रश्न पत्र लीक मामले में कुछ नहीं किया गया।
2: परीक्षा पत्र लीक का मामले को भारत सरकार गंभीरता से ले रही है। बिहार सरकार ने भी कल कानून बनाकर इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कल एक्स हैंडल पर बोले, हमारी प्राथमिकता में, हमारे छात्र हमारे प्राथमिकता में है। और पेपर लीक मामले कांग्रेस के समय इससे बहुत ज्यादा होते, कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ, उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज सीबीआई जांच चल रही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने, संवाद के माध्यम से स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने और बल प्रयोग को अंतिम विकल्प रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक अभियान कुंदन कृष्णन सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने, सभी जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान 21 सरकारी विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिकाओं और गैर सरकारी संकल्पों पर भी सदन में चर्चा हुई। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इधर विधान परिषद का सत्र भी आज संपन्न हो गया। सत्र के समापन पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने संबोधन में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और संसदीय परंपराओं के अनुरूप कार्यवाही का संचालन किया गया। सभापति ने बताया कि सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गईं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन

0: पूरे होने पर सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
1: पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तथा बिहार की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ।
0: विपक्ष की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में तमाम अराजकता और नाकामियों के बावजूद विपक्ष की ओर से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे करने पर सरकार को बधाई देते हैं।
2: महोदय, तमाम नाकामियों के बावजूद, तमाम तरह की अव्यवस्था, अराजकता और बिहार की जनता के तबाह होने के बावजूद ये बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ।
3: अब आलोक कुमार सिंह
2: एक नौजवान
3: आलोक कुमार सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र तथा खेल छात्रवृत्ति के लिए 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र प्रदान किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक तथा एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है।
4: बिहार के खिलाड़ियों को सही मान सम्मान, छात्रवृत्ति के साथ साथ आज नौकरी से भी सम्मानित किया जा रहा है ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। निश्चित रूप से जहां एक तरफ आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है और भी विस्तार करना अभी हम कार्य कर रहे हैं, तो एक जो सपना हम सजाते हैं 2036 के ओलंपिक गेम्स का, वो सपना अब कहीं ना कहीं लगता है कि सच बिहार के लिए बन सकता है।
0: राजद के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मृत्युंजय तिवारी को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंगल पांडे और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। श्री तिवारी ने कहा कि बिहार और देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ वो भाजपा में शामिल हुए हैं।
5: भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर हर वर्ग, हर लोगों को, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, गरीब हो, आज हर लोगों के लिए योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। ऐसे पार्टी में जुड़ने का आज मुझे गर्व और सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
6: दिनांक 25 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के सांगोवर गांव में आज बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक 10 वर्षीय बालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। इधर अरवल जिले के सदर प्रखंड के कोरियम गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। कटिहार जिले के बरारी थाना के सुरजापुर और कलिकापुर गांव के समीप पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री से 4 देशी पिस्तौल, 1 बंदूक और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 44 आवेदकों के बीच ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया। किशनगंज जिले के गलगलिया चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 233 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत संपन्न। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष

0: डॉक्टर प्रेम कुमार ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी बधाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक, कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। नवादा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
1: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया की

0: is All India Radio. The news read by
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: जिले में लगातार हो रही बारिश और कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण आलमनगर और चौसा अंचल में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। संभावित बाढ़ और नदी कटाव से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने पुलिस अधीक्षक के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां समय पर पूरी करने, संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी रखने तथा राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। इधर जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने बताया कि खरीफ मौसम में 1,04,883 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, साथ ही धान की रोपाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिले के प्रसिद्ध मनोकामना लिंग सिंहेश्वर स्थान में 30 जुलाई से एक माह का श्रावणी मेला शुरू होगा। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, बिजली, वाटरप्रूफ पंडाल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के सदस्य वरिष्ठ पुजारी लाल बाबा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
3: जिला प्रशासन एवं सिंहेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की सेवा के सुविधा एवं सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।
2: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिले को 13 अगस्त तक 36,742 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 160 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर प्रतिदिन 1,280 राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर लगाए जा रहे शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। इनके त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी और जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल लगातार निगरानी कर रहे हैं।

0: सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जीविका की लखपति दीदियों फूल कुमारी और विनीता देवी को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए 1-1 लाख रुपए का सांकेतिक चेक देकर सम्मानित किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और बीपीएल परिवारों के लिए संचालित विशेष अभियान के तहत जिले में लोगों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। हालांकि अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और डिग्री कॉलेज रहित प्रखंडों में स्नातक स्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 4 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। इससे चौसा, शंकरपुर, घैलार और कुमारखंड प्रखंड के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक चरण में यहाँ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका के माध्यम से जीविका सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 75,000 रुपए लागत के परियोजना वाले इस केंद्र के लिए 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि लाभार्थी को 15,000 रुपए का अंशदान करना होगा। योजना के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुरलीगंज प्रखंड के दिग्घी पंचायत में पायलट परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से 40 घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना है। शुरुआती चरण में 7 घरों में गैस चूल्हे उपलब्ध कराकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में अब तक 3,100 घरेलू और 6 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के दौरान जिले के 4,64,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। और जवाहर नवोदय विद्यालय सुखासन के कक्षा 10वीं के छात्र सुधांशु कुमार का चयन इसरो के प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2026 के लिए हुआ है। देश भर से चयनित 456 विद्यार्थियों में बिहार के केवल 14 छात्र शामिल हैं। सुधांशु का चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, ऑनलाइन स्पेस क्विज, विज्ञान एवं खेल गतिविधियों, ओलंपियाड तथा भारत स्काउट एवं गाइड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। नीट मामले को लेकर देश और प्रदेश में चल रहे छात्र आंदोलन पर शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के आलोक कुमार मेहता ने कहा कि देश और प्रदेश में छात्र नीट के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे संवाद करने के बजाय लाठी और गोली का सहारा ले रही है। उन्होंने सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। इस पर लोजपा रामविलास की राजू तिवारी ने कहा कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। राजद ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट के बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा। राजद के रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों और दानवीरों द्वारा स्कूल के लिए दान दी गई जमीन और भवनों पर उनके नाम से संचालित विद्यालयों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या स्कूल किया जा रहा है, जो परंपरा और पूर्व सरकारी आदेशों की अवहेलना है। वहीं आईआईपी के आईपी गुप्ता ने कहा कि तांती, पाल और ततवा मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में समय पर तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके कारण मामला खारिज हो गया। उन्होंने सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन नियमावली के आधार पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। इसी दौरान मनीष कुमार के ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमान्यता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा प्रोन्नति के पद सोपान में पूर्णता अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य

कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि की वरीयता के आधार पर सामान्य कोटि के कर्मियों के साथ साथ एससी एसटी के कर्मियों को भी उच्चतर प्रभार दिया जा रहा है। अगर एससी एसटी के कर्मी कार्यरत नहीं है तो कुल स्वीकृत पद का 70% पद सुरक्षित रखा जाता है। इसके बावजूद अगर एससी एसटी कर्मियों के कर्मियों में किसी तरह की समस्या है तो सरकार समीक्षा करेगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट प्रश्नकर्ता के साथ जदयू की श्याम रजक सहित सदन में मौजूद एससी एसटी वर्ग के कई विधायक हंगामा करने लगे। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर एससी एसटी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। जिवेश कुमार के ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य आयोग ने हिंदू समुदाय की उच्च जातियों में केवल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले वर्ष भूमिहार ब्राह्मण शब्द के प्रयोग पर चर्चा अवश्य की थी, लेकिन इस संबंध में सरकार को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। उन्होंने सरकार

जिवेश कुमार के ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य आयोग ने हिंदू समुदाय की उच्च जातियों में केवल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले वर्ष भूमिहार ब्राह्मण शब्द के प्रयोग पर चर्चा अवश्य की थी, लेकिन इस संबंध में सरकार को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण शब्द लिखने पर आपत्ति जताई और पूर्व में जारी दस्तावेजों में आवश्यक सुधार करने की बात कही। मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट जिवेश कुमार सहित भूमिहार समाज से जुड़े कई विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करने लगे। इस दौरान तरारी के विधायक विशाल प्रशांत ने तंज कसते हुए कहा कि फिर भूमिहारों को ही एसटी में शामिल कर लिया जाए। पड़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। इसके बाद सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान 21 विधेयक पारित किए गए। अध्यक्ष के समापन संबोधन के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक है वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। शुक्रवार को बिहार विधान परिषद की पहली पाली सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव के प्रश्न पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे किए जाने के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला करेगी। इससे पहले प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे तक शनिवार को 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई का प्रावधान है। भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देने का मुद्दा उठाया। इसका समर्थन भाजपा के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी किया। जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि संबंधित संचिका विधि विभाग को भेजी जाएगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राजद के सौरभ कुमार और निर्दलीय महेश्वर सिंह ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग 50% पद रिक्त होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3,300 स्वीकृत पदों में करीब 1,700 पद खाली हैं तथा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता भी आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष केवल 5,000 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। इसके उत्तर में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि मान्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है। इस बीच भाजपा विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सरकार ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में ये बात कही। ये मामला एमएलसी नागेंद्र ने सदन में उठाते हुए आरोप लगाया कि 22 जुलाई को पटना की एक महिला एएसपी ने अनामिका सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया था। विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सोनू कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और वंशीधर प्रजवासी ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों और परिचारियों के वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वर्तमान में लिपिकों को 16,500 रूपये और परिचारियों को 15,200 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद वेतन वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे शुरू हुई। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट को पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीविका दीदियों के सहयोग से बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपारण का मीट प्रसिद्ध है, इसलिए यहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 8,12,000 परिवार बकरी और मुर्गी पालन से जुड़े हैं। वहीं 7,781 जीविका दीदियां पशु सखी के रूप में पशुओं के उपचार का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राजद सदस्य सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष पर की गई टिप्पणी और सुनील सिंह को टोके जाने के बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब जदयू के संजय सिंह वेल में पहुंच गए। बाद में निर्दलीय सदस्य महेश्वर सिंह ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। सभापति ने सुनील सिंह के व्यवहार की निंदा की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हुई। सभापति के समापन वक्तव्य के साथ विधान परिषद के 213वें सत्र का समापन हुआ। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित हुई। इस अवधि में अल्पसूचित 262 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से

0: 240 प्रश्न संबंधित विभागों को उत्तर के लिए भेजे गए और 12 प्रश्नों के उत्तर
1: यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद
0: अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
1: लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले सदन के बाद 12 बजे।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति

टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी NBS योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी।
राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्ण

ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूर वीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सिंगर हार।

नमस्कार बंधु लोकन, स्वागत है अपने सब गोटे के मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम में। जना कि अपने सब जानित छी जे एठाम हम साहित्यिक गप करित छी, कोनो साहित्यिक कृतिक प्रसंग बात करित छी, साहित्यिक कृतिकारक संदर्भ में अपन विचार रखित छी, तो कोनो पोथिक प्रसंग सेहो विचार करित छी, आ एकरा सभक अतिरिक्त थोड़ेक सामाजिक गप करित छी, किएक तो साहित्य तो समाजे लेल लिखल जाइत अछि ने। साहित्य रचबाक लेल स्रोत सेहो समाजे से भेटित छैक ने, तैं समाज तो महत्वपूर्ण होइते अछि, से साहित्य लेल सेहो, साहित्य साधक लेल सेहो। से हम एहि हेतु कहि रहल छी जे जखन कोनो साहित्य सर्जक अपन साहित्यमे खेत पथारक गप करैत छथि, खेतिहर किसानक बात लिखैत छथि, तखन हुनका निश्चितहि हुनका खेतक आरि पर जाय पड़तनि, अथवा एना कही जे ओकरा सभक जीवनके जावे धरि लग सँ जाकर नहि देखता तावे धरि कोना कोनो खेतिहर पर, बाकी किसान पर, आकि खेत खरिहान पर मे साहित्य रचल जायत, साहित्य लिखल जायत। आ जखन से केओ व्यक्ति कोनो लेखक ओतऽ जाकर देखैत छथि, ओकरा संग रहैत छथि, आ तखन जे साहित्यिक रचना होइत अछि, तऽ निश्चय ओ प्रभावकारी होइत अछि। अन्यथा मात्र कल्पनाक आधार बना कऽ जँ कोनो रचना कयल जाइत अछि, तऽ से ओकर प्रभाव ओतेक नहि पड़ैत छैक, ओ ओतेक प्रभावकारी नहि भऽ सकैत अछि। हाँ, एकटा बात तऽ छैक, कोनो रचना करबाक लेल कोनो साहित्यके जखन हम बात करैत छियै, कथा कविता वा आन जे कोनो रचना करैत छी, ताहिमे कल्पनाक पुट तऽ देबहि पड़ैत छैक। से एहि दुआरे जे रचनामे ओहि कल्पनासँ चमत्कार उत्पन्न होइत अछि, ओकरा पढ़वाक जिज्ञासा बढ़ैत छैक। एहिसब लेल से कल्पनामे तऽ जाय पड़तैक, ओकर रूपरेखा तैयार करबाक लेल कल्पनामे ओझराय पड़तैक। मुदा सत्यता लिखबाक लेल, वास्तविकता लिखबाक लेल ओहिठाम जायटा पड़तैक। जावे धरि हम रौदमे जेबै नहि, देहसँ पसेना निकलतै कि नहि, ताबे धरि बुझेतै कोना जे पसेनाक गन्ध केहन होइत छैक। जावे धरि बरखामे भिजबै नहि, ताबे धरि हम कोना लिख सकै छी बरखामे भिजबाक आनन्द केहन होइत छैक। हाँ, एकदम सही कहलहुँ हैं जे जावे धरि हम कोनो चीजके आत्मसात नहि कलबै, ताबे धरि हृदयसँ से हम लेखनो नहि कऽ सकैत छियै। जा देखियौ, गपक क्रममे तऽ हम उजरा गेलहुँ,

हाँ, बरखा फुहार जखन पड़ित रहित छै तऽ भिजवामे असगर आनंद तऽ नहिए अबै छै। जँ दुनू आदमी रहै छै तऽ निश्चित ओकर आनंद आर द्विगुणित भऽ जाइ छै। पावस मास आनंददायक तऽ होइते अछि आ एहि समयमे चारूकात तऽ ओहिना हरियर हरियर रहै छै, से देख कऽ मोनो हरियाएल रहैत छै ने। एखन एहने सन मोन हरियाबैवला गीत सुना रहल छली है लक्ष्मी कुमारी। बंधु लोकनि, हमसब गप करैत छी, साहित्यिक गप करैत छी, अपन साहित्य सर्जकके विषयमे गप करैत छी, तऽ कहियो हमसब अपन कोनो साहित्यिक कृतिक प्रसङ्गसँ गप करैत छी। तऽ आइ जे हम गप कऽ रहल छी से साहित्य अकादमीसँ वर्ष 1971 ईस्वीमे पुरस्कृत पुस्तक पयस्विनीक विषयमे किछु गपसप करब, जकर सर्जक छथि आचार्य सुरेंद्र झा सुमन। जेनाकि एहि पुस्तकक नामेसँ स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे एहि संग्रहमे संग्रहित जेकर पहिल कविता छैक पावस पयस्विनीक, एहि आधार पर एकर मने एहि पुस्तकके शीर्षक देल गेल अछि, पुस्तकक नाम राखल गेल अछि पयस्विनी। एहि पुस्तकक प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वीमे भेल अछि। असलमे एकर जे नामकरण भेल अछि ने से पावस पर दुग्धधारिणी धेनुक संग आरोपित कऽ कऽ ओकरा संग समरूपता देखाओल गेल अछि। आ एखन मासु तऽ सह अछि ने। एकर जे नामकरण भेल छै, एकर जे प्रेरणा स्रोत कवि छथि, एकर जे प्रेरणा कवि के भेटल छनि से अर्थ वेदोक्त पृथ्वी सूक्त सँ। पयस्विनीक आरंभिक जे तीन गोट कविता अछि से पावस विषयक अछि आ तीन गोट कविता

सरिता विषयक छैक आ एक गोट कविता घन तमैल मेघ विषयक अछि। ई जे कविता संग्रह छै ने, माने पयस्विनी कविता संग्रह जे अछि, से कवि कविवर सीताराम झा, कवि शेखर बद्रीनाथ झा आ बाबू भोला लाल दास के समर्पित केने छथि। खास बात ई अछि जे कविक समर्पणक उद्गार जे एहि पुस्तकमे आयल अछि से कवितेमे व्यक्त कयल गेल अछि आ समर्पण लगा कऽ एहिमे कुल्लम 26 गोट कविता अछि। असलमे सुमन जी जाहि कालमे साहित्यमे प्रवेश कऽ रहल छलाह ने, ओ समय छलैक अंग्रेजीक रोमेंटिक कविता सब होइत छलैया, कहि सकै छी रोमेंटिसिज्मक समय छलैया। ओकर लहरि जे छै संपूर्ण भारतीय भाषामे पसरि रहल छलैया आ हिंदी साहित्यमे तऽ ओकर बेस प्रभाव पड़ल छलैया। छायावादी काव्यधारा के रूप में ओ मान्य भ रहल छल। बांग्ला साहित्य में सेहो विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरक काव्यकृति सेहो अपन प्रभावक विस्तार कर रहल छल तथा अन्य भाषाक कविगण ओहि दिस विशेष रूप सँ आकृष्ट भ रहल छलाह। आ सुमन जी संस्कृत काव्य परम्पराक अवगाहन कऽ ओकर वैशिष्ट्यकेँ आत्मसात कऽ लेने छलाह। परन्तु अंग्रेजीक जे रोमेंटिक काव्य हिंदीक छायावाद आ रविन्द्रनाथक काव्यसँ ओ सेहो प्रभावित होइत रहला, जकर अवक्षेपण हिनक कविता सबमे देखाइत अछि। सुमन जी के विषय में तो कहल गेल छन जे ओ संस्कृत के गला कऽ मैथिलीक सिंगार करै छथि, असे ठीके हुनक जे कविता सब छैक, हुनक जे काव्य सब छनि से जखन हम पढ़ैत छी तऽ लगैत रहैत अछि जेना ओकरामे संस्कृतक जे प्रभाव छै, संस्कृतक जे छाप छै, संस्कृतक जे सौन्दर्य छै से अवश्य भेटैत अछि, चमत्कृत करैत अछि। से हुनक जतेक कविता छनि, जतेक काव्य संग्रह छनि, सबमे ई बात देखबामे अबैत अछि। सामान्य रूपमे सुमन जीक काव्य जे छनि, काव्यक विषय जे रहलनि से मानव समाज, मानव मन आ जीवन, भक्ति, प्रकृति और राष्ट्र चेतना सँ ओ तप्रोत रहलनि हैं। एकरे सभक जे सब रूप सँ समेकित रूप में जँ कहल जाए तऽ हुनक जे काव्य सब छनि जाहिमे पयस्विनी सेहो अछि। पहिने कहलहुँ हैं जे एकर जे तीनटा प्रारंभिक कविता छै, आरंभ में जकर तीनों कविता छै से पावस विषयक अछि, माने एखन जे वर्षा भ रहल छै ताहि समयक छै। ओना कहल गेल छै ने जे मेघ के जलोधर कहै छी हमसब, पानि दैत छैक। तऽ एक कविता संग्रह

में सेहो तहिना ई बात सब आयल अछि। बंधु लोकनि, हमरा सब जखन एहिठाम अबैत छी, गपशप करैत छी, गपक क्रममे अपन साहित्य जे अछि, अपन जे पुस्तक अछि, ताहिपर तऽ परिचर्चा करिते छी। संगे संग पहिने कहलहुँ हैं जे हमसब अपन साहित्य सर्जककेँ सेहो मोन रखैत छियनि, मोन पारैत छियनि। आइ से एहि गपक क्रममे हमरा मोन पड़ि रहल छथि मैथिली साहित्यक मूर्धन्य समीक्षक, समीक्षके नहि कही जे ओ कथाकार सेहो छलाह, मने मोहन भारद्वाज हमरा मोन पड़ि रहल छथि। आइ हुनक पुण्यतिथि छनि तऽ हुनका सेहो हम मोन पारित छियनि। एहिसँ एकटा बात कहऽ चाहब जे हिनका सबके मोन पारबाक जे प्रयोजन अछि से अहू लऽ कऽ होइत अछि, हमर जे बादक पीढ़ी अछि, हमर जे नव पीढ़ी अछि, हमर जे नव साहित्य अध्येता अछि, साहित्य सर्जक छथि, हुनका सबके बुझबाक चाहियनि जे हमर जे पूर्वक साहित्य साधक छलाह ओ के छथि, हुनक साहित्य केहन छलनि हैं। ताहि क्रममे हमरा हिनका सबके निश्चित रूपे मोन पारबाक चाही। देखियो जे गपक क्रममे गप करैत से रूपरेखामे हम कहने रही जे जखन हम एहिठाम अबैत छी तऽ अपन जे कार्यक्रम अछि, मने सिंगारहारक जे रूपरेखा छै, ताहिमे शब्द विमर्श सेहो रहैत अछि। ओहि शब्दपर सेहो हमसब गप करैत छी। एहि क्रममे आइ किछु शब्द सेहो लऽ कऽ आयल छी, ओहन शब्दसब अछि जे आब रह रहा से ओकर प्रयोग हमरा लोकनि नहि करैत छियै। जेना बिलैया, बिलैयाके आब हमसब छोड़ि देलियैक, बिलैया शब्दक उपयोग आब नहि करैत छियैक, आ जँ करबै तऽ सम्भव अछि जे नव पीढ़ी नेना भुटका सब ओकर अर्थ बुझबो नहि करतैक। बिलैया मने होइत अछि केवाड़के भीतरसँ जे बंद कयल जाइत छल, ओ लकड़ीक बनायल एकटा छिटकली रहैत छल जे दुनू केवाड़के मध्य फँसैत छल, जाहिसँ केवाड़ बंद भऽ जाइत छलैए, तकरा बिलैया कहल जाइत छल। आ बिलैयेसँ एकटा आर शब्द मोन पड़ैत अछि, बिला जायब। बिला जायब मने हेरा जायब, फेर नहि भेटब, ओ भेलै बिला जायब। तहिना एकटा शब्द अछि हरनट। हरनट मने की होइत अछि? हरनट मने होइत अछि एकदमसँ सुखा जायब, जकरा कनिको छुबै तऽ ओ टूटि जेतै, एहन जे रौदमे सुखा कऽ सुखा जाइत अछि तकरा कहै छियै हरनट भऽ जायब। आ पनगल मने होइत अछि कोनो गाछ जखन टूटि जाइ छै, ओतऽ जे फेरसँ नवका पेपी लैत छै, तऽ हम कहै छियै जे गाछ पनगलैए, गाछ फेरसँ पनगि रहल छै। आ ओहिसँ एकटा शब्द आर बहराइए, पांगल। पांगल मने की होइत छै? पांगल मने कोनो गाछके सोझ रखबाक लेल

ओकर अवांछित डारि सब रहैत अछि तकरा जे हटा दै छियै ओकरा कहल जाइत छै पांगब। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। अब देखियो जे हमसब गप करैत करैत कार्यक्रमक अंत अंत धरि आबि गेल छी। तऽ हम एतबे कहब जे हमर जे साहित्य सर्जक लोकनि सब छथि जे अब हमरा सबक सोझा नहि छथि हुनका हमरा लोकनि मोन पारित रही समय समय पर, कारण जे चलि जाइत अछि एक बेर फेर ओ घुमि कऽ नहि अबैत अछि।

सिंगरहार, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब से कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस

0: के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने

0: 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47

0: कायम किए जाएंगे।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: भाव्य रसायन स्कीम पर 3030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल की मुद्दत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णु ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1000 करोड़ रुपए मुतालिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम अज़ कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामलों पर आज लगातार 5वें दिन शोरगुल के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आज लगातार 5वें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्ताम को पहुँचा और कोई ख़ास काम इस दौरान नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी तज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखना अंदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारिस्त में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकत दारी में पेशरफ के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और तिजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले महफूज काबिले भरोसा और ज़िम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने के तहीं पुरअज़म है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज़ रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसां रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت

0: साहित्यिकी। श्रोताओं नमस्कार, साहित्यिकी के आज के इस अंक में आप सुनेंगे आशुतोष कुमार वर्मा से उनकी कहानी समाधान। इसके बाद आप सुनेंगे काव्य पाठ भारती रंजन कुमारी और मनोज कुमार झा से, लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, साहित्य और सिनेमा ऐसे माध्यम हैं जिसमें समाज को बदलने की ताकत सबसे अधिक होती है। ये दोनों कहीं न कहीं हमेशा ही एक दूसरे के विस्तार में सहयोग करते रहे हैं। कहना सर्वथा उचित ही होगा कि साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में बनने वाली पहली फीचर फिल्म भी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हरिश्चंद्र से प्रेरित थी। प्रारंभ से ही हिंदी सिनेमा में लिखित और अलिखित साहित्य की भूमिका अहम रही है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक परंपरा वाले देश में इसकी व्यापक पहुंच ने इसे लोगों के मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना दिया है और इसमें हिंदी का व्यापक योगदान है। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा से आज तक सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई गई। इस तरह हिंदी भारत ही नहीं, भारत के मुख्य सिनेमा की भी भाषा है। विश्व में हिंदी सिनेमा ही भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर जब हम हिंदी सिनेमा में साहित्य के योगदान की बात करते हैं तो इसे लिखित साहित्य से जोड़ देते हैं। प्रारंभ में बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर पारसी थिएटर की विरासत भर था, जिसमें अति नाटकीयता और गीत संगीत का ज्यादा समावेश था। पहली बार हिंदी सिनेमा में स्थापित लेखक के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रवेश हुआ। वर्ष 1933 में हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी के निर्देशन में फिल्म मेल मजदूर बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। 1934 में प्रेमचंद की ही कृतियों पर नवजीवन और सेवा सदन बनी, लेकिन दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर और चतुरसेन शास्त्री जैसे साहित्यकारों की रचनाओं पर भी फिल्में बनी। हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्यकारों का सुनहरा दौर 7वें दशक में नजर आता है, जिसमें उपन्यासकार कमलेश्वर का अहम योगदान है। उपेंद्रनाथ अश्क और अमृतलाल नागर के बाद कमलेश्वर ही ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने सिनेमा की भाषा और जरूरत को बेहतरीन ढंग से समझा। गुलजार ने कमलेश्वर की कृति पर आंधी और मौसम बनाई। दोनों फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा को शिखर पर ले जाने वाले साहित्य को पुष्पित पल्लवित करना जरूरी है। आज हिंदी फिल्में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का लोकदूत बनकर विश्व स्तर पर हिंदी की पताका फहरा रही है। ऐसे में आवश्यकता है इसकी पुनर्व्याख्या करने की। तभी हिंदी सिनेमा कुछ नकारात्मकता के बाद भी अपने मजबूत सकारात्मक पक्षों के बल पर अपनी खोई हुई विरासत को पा सकेगा और अपनी जड़ों को सिंचित कर पाएगा। इसके लिए कलमकारों को भी अपनी कलम को उस ओर मोड़ने की जरूरत है जहां भारतीय समाज उठता जागता है। कलमकारों को फिर अपनी कलम उस ग्रामीण समाज की ओर मोड़ना होगा जहाँ आज भी बहुसंख्यक समाज रहता है। तभी हिंदी भाषा और साहित्य के संबंधों से भारतीय सिनेमा नया आकार ले पाएगा। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय। साहित्यिकी में लीजिए अब प्रस्तुत है आशुतोष कुमार वर्मा से उनकी कहानी समाधान।
1: पूर्व के क्रम को दोहराए जाने की आशंका से रमा का तनाव में आ जाना स्वाभाविक था। करीब 2 वर्षों से वह इस पीड़ा को झेल रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि उसे पहले किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल होने से ऐतराज नहीं था, किंतु आज उसने अपनी खुददारी को पहचान लिया था। आक्रोश में आकर उसने बीते वर्षों को सोचना प्रारंभ किया। मम्मी पापा की नसीहत थी कि जितना पूछा जाए उतना ही धीमी आवाज़ में आँखें झुकाकर जवाब देना और धीरे धीरे चलना। चेहरे पर कुलीन भाव हों, फिर मम्मी पापा का भय और चिंता से खींचा हुआ चेहरा, हर पल पहले से अधिक डरा और झुका हुआ चेहरा होता था मम्मी और पापा का। रमा को समाज की इस व्यवस्था से नफरत होने लगी। बीए पास सुंदर और छरहरे बदन की 21 वर्षीय युवती है रमा, फिर महज कागज़ के चंद टुकड़ों की वजह से लड़के वाले विवाह का प्रस्ताव क्यों ठुकरा देते हैं? क्या गरीबी उसे जीवन भर कुंवारी बनाकर रखेगी या फिर पुरुष के बिना स्त्री के

जीवन का कोई वजूद ही नहीं होता। अगर वह विवाह नहीं करेगी तो क्या बिगाड़ लेगा समाज उसका? समाज की यह कौन सी मानक परंपरा है कि शादी के वक्त लड़के वाले सब कुछ मांग सकते हैं और लड़की वालों को सब तरह की मार झेलनी पड़ती है? इन सवालों ने रमा को अंदर तक मथ कर रख दिया। रमा ने निश्चय किया कि कल वह इस परंपरा का जमकर विरोध करेगी। बला से लड़के वाले भाग जाएं, वह अपने मम्मी पापा को इस चिंता से मुक्त कर देगी। आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। फर्श पर पोछा करके उसने सामान को व्यवस्थित किया। पुराने टेबल क्लॉथ की जगह नए टेबल क्लॉथ बिछाए गए। नाश्ते के लिए खास आइटम की तैयारी मोहिनी देवी ने स्वयं कर ली थी। देवेंद्र बाबू घर में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे थे। रमा के दोनों भाई अंशु और अंकित बाहर भीतर का छोटा बड़ा काम संभाले हुए थे। इस बीच रमा की सहेलियाँ और पड़ोस की कुछ महिलाओं ने भी आयोजन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। दिन के लगभग 11 बजे लड़के वाले पूरे दल बल के साथ आ गए। साथ ही उनके खानदानी पुरोहित भी इस उद्देश्य से आए कि आज ही हाँ या ना में निर्णय हो जाना था, क्योंकि इसी वर्ष शिवनाथ बाबू छोटी लड़की को ब्याह देने का निश्चय कर चुके थे। लड़के वालों के आते ही घर की चहल पहल बढ़ गई। देवेंद्र बाबू और मोहिनी देवी ने स्वयं कार के पास जाकर उन लोगों की आगवानी की और उन्हें आदर सहित बैठाया। शरबत और नाश्ते के बाद कॉफ़ी चली। इस बीच इधर उधर की औपचारिक बातें भी चलती रही। सामान्य शिष्टाचार के पश्चात रमा द्वारा कॉफ़ी सर्व करने के दौरान देवेंद्र बाबू ने देखा कि आज न तो रमा की आंखें झुकी हुई हैं और न चेहरे पर दीनशालीनता तैर रही है। देवेंद्र बाबू ने इशारा भी किया, किंतु रमा पूर्ववत बनी रही। मोहिनी देवी गंभीर भाव से मेहमानों का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कॉफ़ी सर्व करने के पश्चात रमा बगैर किसी के कुछ कहे माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ ने उसे हल्की सी चिकोटी काटी, किंतु वह यथावत बैठी रही। इस बीच पुरोहित ने जन्मपत्री मिलाकर हरी झंडी दे दी थी। शिवनाथ बाबू ने शर्ट की जेब से एक कागज़ देवेंद्र बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये लिस्ट अगर आपको स्वीकार हो तो शादी का मुहूर्त अभी पक्का हो जाएगा। लिस्ट देखते ही देवेंद्र बाबू की भौहों पर बल पड़ गया। हर बार इसी बिंदु से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा था। ये तो देवेंद्र बाबू जब तक वाक्य पूरा करते। इसी बीच रमा ने कागज़ अपने हाथों में ले लिया। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। बोलो बेटी, कुंदन देवी ने रमा के तेवर नापते हुए कहा। लिस्ट के अनुसार सुई से लेकर जहाज़ तक देना है मेरे पापा को। मम्मी पापा के लाख रोकने के बावजूद मोहिनी देवी की ओर मुखातिब होकर रमा बोल पड़ी, किंतु इसमें एक चीज़ मांगने के लिए छूट गई है, वह यह कि इसमें आपके बेटे के जन्म और छठी का खर्च नहीं मांगा गया है, व्यंग्य और आक्रोश में भरकर रमा ने कहा। रमा ने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने लड़के की शादी कर रही हैं या बिक्री? यह इस समाज की कौन सी परंपरा है कि जिस बेटी के बाप के पास दहेज के पैसे नहीं हो उसकी बेटी कुंवारी रह जाए? लड़कों में क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं कि लड़के का खरीदार होकर भी लड़की का बाप बेटी को ससुराल भेज देता है? होना तो यह चाहिए कि लड़का ससुराल में रहकर काम धंधा संभाले। चुप रहो, देवेंद्र बाबू ने रमा को डांटते हुए कहा। नहीं पापा, चुप नहीं रहूंगी। आज मैं इस बात को साफ कर देना चाहती हूं कि दहेज लड़के को नहीं लड़की को मिलना चाहिए, क्योंकि त्याग लड़की करती है। अपने माँ बाप का घर छोड़कर अनजान जगह पर लड़की जाती है, जलाई लड़की जाती है, बच्चे लड़की पैदा करती है, सारा दुख हमारे नाम और ऐश लड़कों के खाते में। यह और नहीं चलेगा, रमा ने ऊँची आवाज़ में काँपते हुए कहा। देवेंद्र बाबू ने रमा को पुनः रोकने की कोशिश की तो कुंदन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवेंद्र बाबू, इसे दिल की भड़ास निकाल लेने दीजिए, आज आखिर बोलेगी कहाँ? हम लोग इसके प्रगतिशील विचारों को नहीं सुनेंगे तो सोसाइटी में इसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? और हाँ देवेंद्र बाबू, आप इस रिश्ते को पक्का ही समझिए। पूरा माहौल जैसे एकाएक तनाव मुक्त हो गया। कुंदन देवी के अनपेक्षित भाव से रमा कुछ नरम पड़ी और उसके विचारों की श्रृंखला टूट गई। आंखों में आंसू आ गए। बोलो बेटी रमा, पुनः कुंदन देवी ने कहा, किंतु रमा को तो जैसे काट मार गया था। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए कहा, माँ जी, मुझे तो आपसे इस महानता की उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो समझा था कि मेरे विचार को मेरी अशिष्टता समझकर आप विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देंगी। कहते कहते रमा की आवाज़ भर्रा गई और आंसुओं की अविरल धारा बह चली। यह देखकर कुंदन देवी उठी और रमा को सीने से लगाकर बोली, बेटी, तुम्हारी किसी भी बात को हम अशिष्टता नहीं समझ रहे हैं। अब तो तुम ही मेरी बहू हो, कोई और बात तुम्हारे मन में हो तो बोलकर हल्की हो जाओ।

0: अब मुझे आपसे कोई बात नहीं कहनी है माजी, रमा संतुष्ट थी। इधर देवेंद्र बाबू और मोहिनी देवी आश्चर्य और कृतज्ञता से भरकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसके पहले उन्होंने ऐसा सुना था किंतु आज देख रहे थे। अब मैं भी कुछ कहूँ रमा, कुंदन देवी ने रमा को इंगित करते हुए पूछा। मुझसे पूछ कर बोलेंगी आप माँ जी, अपने घर में झिझक कैसी, कह डालिए जो कुछ भी कहना हो। रमा का स्वर गीला था। मैं एक समाजसेवी संस्था की अध्यक्षा हूँ, मेरे पति भी प्रगतिशील विचार रखने वाले हैं। अब से 25 साल पहले हम दोनों की शादी बिना दहेज के हुई थी। संपन्नता के बावजूद मेरे पिता का एक पैसा भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले से ही मेरे पति नौकरी में थे, इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी पिताजी से कुछ मांगने की। शादी के बाद हम दोनों ने निश्चय किया कि हम अपने बच्चों की शादी में दहेज का आदान प्रदान नहीं करेंगे, किंतु समय और परंपरा ने हमें कहाँ छोड़ा। इतना कहकर कुंदन देवी ठहर गई। पुनः लंबी सांस लेकर गंभीर लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया, 2 वर्ष पहले हमने बड़े लड़के नितिन का आदर्श विवाह किया। समाज में खूब वाहवाही मिली, लड़की बालों को तो जैसे हम ईश्वर के रूप में मिल गए। पर जब हमने अपनी बड़ी लड़की के लिए वर खोजना शुरू किया तो दहेज का दानव मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया और मुझे बर्बाद करके ही दम लिया। मकान और जेवर तो बिक ही गए, ऊपर से 1,00,000 रुपये का कर्ज हो गया। हमें लगा कि दुनिया में आदर्श और सिद्धांत की बातें केवल कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, व्यावहारिक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारी आस्था हिल गई। हमने उसी दिन निश्चय किया कि दहेज देने के लिए दहेज लेना ही होगा। थोड़ी देर रुककर लंबी सांस छोड़ने के पश्चात कुंदन देवी ने फिर कहना शुरू किया, यह लिस्ट जो तुम देख रही हो बेटी, हमारा मौन आक्रोश है। दहेज लेना मेरी फितरत नहीं है। वैसे तो तुम्हारे आदर्श ने हमारे सोए संस्कार को पुनर्जीवित कर दिया, किंतु तुम्हारा सवाल मैं तुम ही से कर रही हूँ बेटी, कि क्या दहेज के अभाव में तुम्हारी छोटी ननद कुंवारी रह जाएगी। इतने में कुंदन देवी की छोटी बेटी बोली, माँ मैं कुंवारी रहना पसंद करूँगी बजाय इसके कि अपने लिए भाभी के घर से दहेज लिया जाए। थोड़ी देर के लिए रमा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। ऐसी स्थिति उसके जीवन में अब तक नहीं आई थी। उसने अपने को झकझोरा और इस बात के लिए समाधान के रूप में बोल पड़ी, अगर आप चाहें तो अंशु के साथ मेरी ननद का ब्याह कर दें, या फिर मैं भी नौकरी करके अपनी ननद की शादी का दहेज जुटाऊंगी। कुंदन देवी को यह बात अच्छी लगी, साथ ही रमा की मेधा और उदारता पर गौरव भी हुआ। वह गदगद होती हुई बोली, आज से तुम मेरी बहू और शालिनी तुम्हारी भाभी हुई। रमा अपनी जगह से उठकर कुंदन देवी के चरणों में झुक गई।
1: अभी आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार वर्मा से उनकी कहानी समाधान। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत है भारती रंजन कुमारी से उनकी कुछ काव्य रचनाएं।
2: मेरी कविता का शीर्षक है, वो गांव मेरा नहीं रहा। अब वो गांव मेरा नहीं रहा। चाचा भाई बाबा दादा संग खेली जहां, वो पीपल वो नीम का छांव मेरा नहीं रहा। अब वो गांव मेरा नहीं रहा। वो पेड़ों का लहराना, कोयल का कूकना, बारिश में घूमता डूबता, वो कागज़ का नाव मेरा नहीं रहा। अब वो गांव मेरा नहीं रहा। वो दादी वो काकी वो बुआ वो भाभी अपनों के घर घूमता भागता। वो छोटा सा पांव मेरा नहीं रहा। अब वो मेरा गांव मेरा नहीं रहा। रिश्तों के बीच पैसों का आ जाना, अपनों के बीच लालच का बढ़ जाना। वो रोशनी वो दिन वो सांझ का घेरा नहीं रहा। अब मेरा गांव मेरा नहीं रहा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, एक बेटी। दहेज की आग।

में दहेज की आग में एक बेटी धू धू कर जल रही है। दहेज की आग में एक बेटी धू धू कर जल रही है और ये समाज, ये संस्कृति उसे जलता हुआ देख रही है। दहेज की आग में एक बेटी धू धू कर जल रही है और ये समाज, ये संस्कृति उसे जलता हुआ देख रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। नए पेड़ का कोई नया तना नहीं है, नए पेड़ का कोई नया तना नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है, नए पेड़ का कोई नया तना नहीं है। ये देन है, ये देन है इतिहास की, ये देन है इतिहास की, इसी धरती इसी सूर्य के प्रकाश की। ये देन है इतिहास की, इसी धरती इसी सूर्य के प्रकाश की। किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है। और उस दूल्हे के दूसरी शादी के लिए मंडप भी सजाया जा रहा है, और उस दूल्हे के दूसरी शादी के लिए मंडप भी सजाया जा रहा है। किसी को जिंदा जलाया जा रहा है और उस दूल्हे के दूसरी शादी के लिए मंडप भी सजाया जा रहा है। क्या बेटियां बोझ बन गई हैं, क्या बेटियां बोझ बन गई हैं, दुल्हन अग्नि की गोद बन गई है। क्या बेटियां बोझ बन गई हैं, दुल्हन अग्नि की गोद बन गई है। क्यों पिता, क्यों पिता वैसे संबंध को बनाता है, क्यों पिता वैसे संबंध को बनाता है। एक बेटी जिस घर में जल चुकी है, एक बेटी जिस घर में जल चुकी है, दूसरी बेटी को भी वहीं जलने को दे आता है, दूसरी बेटी को भी वहीं जलने को दे आता है। क्या बेटियां बोझ बन गई हैं, दुल्हन अग्नि की गोद बन गई हैं, क्यों पिता वैसे संबंध को बनाता है। एक घर में एक बेटी जिस घर में जल चुकी है, दूसरी बेटी को भी वहीं जलने को दे आता है। प्रण ले ये हर बेटी का जन्मदाता, प्रण ले ये हर बेटी का जन्मदाता। हाथ रखे बेटी के सिर उसका पिता, हाथ रखे बेटी के सिर उसका पिता। माँ आंचल फैला कर बेटी को गले लगाएगी, माँ आंचल फैला कर बेटी को गले लगाएगी। तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी, तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी। प्रण ले ये हर बेटी का जन्मदाता, हाथ रखे बेटी के सिर उसका पिता। माँ आंचल फैला कर बेटी को गले लगाएगी, तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी, तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी। एक से दो, दो से चार, घर घर ये अलख जगाई जाएगी, घर घर ये अलख जगाई जाएगी। दहेज दानवों को पकड़ पकड़ कर, दहेज दानवों को पकड़ पकड़ कर फंदों पर लटकाई जाएगी। तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी, तब बेटी इतनी आसानी से नहीं जलाई जाएगी। अब बेटी दहेज की आग में जल रही है और समाज, ये संस्कृति उसे जलता हुआ देख रही है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है क्यों। क्यों जिंदगी तू इम्तहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तहान सी लगती है। मुझे अब तो हर मुश्किल भी आसान सी लगती है। क्यों जिंदगी तू इम्तहान सी लगती है, मुझे अब तो हर मुश्किल भी आसान सी लगती है। तेरे सवालों के घेरे में आज भी घिरी हूँ मैं, तेरे सवालों के घेरे में आज भी घिरी हूँ मैं। फिर भी तेरी आहट मुस्कान सी लगती है, फिर भी तेरी आहट मुस्कान सी लगती है। तेरे सवालों के घेरे में आज भी घिरी हूँ मैं, फिर भी तेरी आहट मुस्कान सी लगती है। क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है। दर्द को ऐसे दबाया दिल में, तू हंसती देख रही मुझे हर मुश्किल में। दर्द को ऐसे दबाया दिल में, तू हंसती देख रही मुझे मुश्किल में। क्यों तू चांद छुपता है जहाँ वो आसमान सी लगती है, क्यों तू चांद छुपता है जहाँ वो आसमान सी लगती है। जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है। पलट कर देखती हूँ जब भी पुरानी राहों को, तू जीत कर भी हैरान सी लगती है, परेशान सी लगती है। तू जीत कर भी हैरान सी लगती है, परेशान सी लगती है। सामने राहों में तू छुपी हुई कभी मुस्कान सी लगती है। थोड़ी सुबह थोड़ी ढलती हुई शाम सी लगती है। क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है। छीना है मुझसे मेरा सब कुछ,
छीना है मुझसे मेरा सब कुछ और तू

0: ही परेशान सी लगती है और तू ही परेशान सी लगती है। तूने जीने का सबक सिखाया है, तूने जीने का सबक सिखाया है, मैं हौसलों से लड़ना सिखाती हूँ, मैं हौसलों से लड़ना सिखाती हूँ। फूलों के राहों को छोड़कर, फूलों के राहों को छोड़कर, हंसते हंसते कांटों पर चलना सिखाती हूँ, हंसते हंसते कांटों पर चलना सिखाती हूँ। तू दिल में दफनाई हुई जिंदगी, तू दिल में दफनाई हुई अरमान सी लगती है, तू दिल में दफनाई हुई अरमान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है। जन्म जन्म के रिश्तों वाली, जन्म जन्म के रिश्तों वाली पहचान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, तू इम्तिहान सी लगती है। जीवन के चढ़ते उतरते पल में, जीवन के चढ़ते उतरते पल में सुरों को छेड़ती तान सी लगती है, सुरों को छेड़ती तान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है, क्यों जिंदगी तू इम्तिहान सी लगती है। मुझे अब तो हर मुश्किल भी आसान सी लगती है, मुझे अब तो हर मुश्किल भी आसान सी लगती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भारती रंजन कुमारी से काव्य पाठ। कार्यक्रम के अंत में कुछ और काव्य रचनाएं मनोज कुमार झा से।
2: पहली कविता का शीर्षक है क्या ऐसे ही मृत्यु। पीली चादर में लिपटा मैं लेटा हुआ उसारे पर, घर में शोर, बच्चों का, स्त्रियों की गपशप, बड़े बूढ़े 50 साल पहले घटी घटनाओं के ब्यौरे तलाश रहे, मुझे हल्की हल्की नींद थपक रही। क्या ऐसे ही आएगी मृत्यु, लोगों चीज़ों के कोलाहल मध्य गिरेगा एक पत्ता पियरा कर। पीली चादर में लिपटा मैं लेटा हुआ उसारे पर, घर में शोर, बच्चों का, स्त्रियों की गपशप, बड़े बूढ़े 50 साल पहले घटी घटनाओं के ब्यौरे तलाश रहे, मुझे हल्की हल्की नींद थपक रही। क्या ऐसे ही आएगी मृत्यु, लोगों चीज़ों के कोलाहल मध्य गिरेगा एक पत्ता पियरा कर। तथा जब भी मुझे मौत की याद आती, मसान की याद आती, कच्ची लकड़ी की मुखाग्नि की। जब भी मुझे मौत की याद आती, मसान की याद आती, कच्ची लकड़ी की मुखाग्नि की। 3 दिन पहले प्यारे दोस्त इफ्तिकार की छोटी बच्ची मरी, तब लगा कि मौत से याद आनी चाहिए कभी कभी कब्रिस्तान भी, और वह जिन्न भी जो रोती माओं को कंधा देता है। जब भी मुझे मौत की याद आती, मसान की याद आती, कच्ची लकड़ी की मुखाग्नि की। 3 दिन पहले प्यारे दोस्त इफ्तिकार की छोटी बच्ची मरी, तब लगा कि मौत से याद आनी चाहिए कभी कभी कब्रिस्तान भी, और वह जिन्न भी जो रोती माओं को कंधा देता है। प्रति जो कुछ प्रकृति में है उसकी एक छाया प्रति कहीं किसी कंप्यूटर में कैद है या फिर हजारों कंप्यूटर में। जो कुछ प्रकृति में है उसकी एक छाया प्रति कहीं किसी कंप्यूटर में कैद है या फिर हजारों कंप्यूटर में। जो कुछ मौजूद है उसका अश्लील भर्जन बन चुका है। शाम का मतलब प्रेम ही नहीं, बासी हो चुका अखबार भी होता है जो धकेल देता टावर तोड़ अपडेट्स में। जो कुछ प्रकृति में है उसकी एक छाया प्रति कहीं किसी कंप्यूटर में कैद है या फिर हजारों कंप्यूटर में। जो कुछ मौजूद है उसका एक अश्लील भर्जन बन चुका है। शाम का मतलब प्रेम ही नहीं, बासी हो चुका अखबार भी होता है जो धकेल देता टावर तोड़ अपडेट्स में। मन का खांचा मशीनों के पास है, मशीनों का खांचा आंखों के पास। हर दीवार का पलस्तर उखड़ रहा है, हर शरीर की त्वचा अब शरीर से दूर जा रही माया बाजार में। ऐसा कहना पड़ रहा कि निरंतर बजता लाउडस्पीकर कोयल की आवाज़ पर हमला है। ऐसा कहना पड़ रहा कि निरंतर बजता लाउडस्पीकर कोयल की आवाज़ पर हमला है, या क्या ऐसे कहूँ कि बल्ब का फ्यूज होना तारे टूटने का विलोम है। है जो धकेल देता ताबड़तोड़ अपडेट्स में। मन का खांचा मशीनों के पास है, मशीनों का खांचा आकाओं के पास। हर दीवार का पलस्तर उखड़ रहा है, हर शरीर की त्वचा शरीर से दूर जा रही माया बाजार में। ऐसा कहना पड़ रहा कि निरंतर बजता लाउडस्पीकर कोयल की आवाज़ पर हमला है, या क्या ऐसे कहूँ कि बल्ब का फ्यूज होना तारे टूटने का विलोम है। घर छोड़कर जा रहा हूँ, एक घर जहाँ रात को किसी भी तरह सो सकता था, जहाँ बिछावन पर खा सकता था चादर पर गिराते रोटी के टुकड़े, जहाँ बारिश में बैठ सकता था दरवाजे पर धुआं उगलते, जहाँ रात के 3 बजे पढ़ सकता था काफ्का की डायरी। काफ्का यानी वह बुजुर्ग नौजवान जिसकी रगों में दुख का काला शहद बहता था। एक घर जहाँ रात को

बिछावन पर खा सकता था, चादर पर गिराते रोटी के टुकड़े, जहाँ बारिश में बैठ सकता था दरवाजे पर धुआं उगलते हुए, जहाँ रात के 3 बजे पढ़ सकता था काफ्का की डायरी, काफ्का निवनी वह बुजुर्ग नौजवान जिसकी रजाओं में दुख का काला शहद बहता था, एक घर जो मेरे बुढ़ंगेपन को छुपाता था, मैं एक सूखा पत्ता किसी जिद की तरह चिपका था इस पेड़ से इस पतझर में, एक घर जहाँ मूर्खता मूर्खता नहीं थी वह जीने का एक ढब था, मैं जिंदा रहना चाहता था जीने की कुछ कम तरकीब जानकर भी, लेकिन मैं जा रहा हूँ जैसे एक बदनसीब नौजवान को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, घर छोड़कर जा रहा हूँ। एक घर जो मेरे बढ़ंगेपन को छुपाता था, मैं एक सूखा पत्ता किसी जिद की तरह चिपका था पेड़ से इस पत्थर में, एक घर जहाँ मूर्खता मूर्खता नहीं थी वह जीने का एक ढब था, मैं जिंदा रहना चाहता था जीने की कुछ कम तरकीब जानकर भी, लेकिन मैं जा रहा हूँ जैसे एक बदनसीब नौजवान को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। उजाड़ का गवैया। बिला गए वे सारे कंदमूल जिन्हें नीचे से आए कहे जाने वाले लोग ज़्यादा बेहतर जानते थे, बिला गए वो कंदमूल

0: मैं जिंदा रहना चाहता था जीने की कुछ कम तरकीब जानकर भी, लेकिन मैं जा रहा हूँ जैसे एक बदनसीब नौजवान को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। उजाड़ का गवैया बिला गए वे सारे कंदमूल, जिन्हें नीचे से आए कहे जाने वाले लोग ज़्यादा बेहतर जानते थे। बिला गए वो कंदमूल जो जमीन से सटे लोग बेहतर जानते थे। लुप्त हो गई कथाएं जो स्त्रियां पुरुषों को सुनाती थीं। सोने के बाद्य वाले महंतों ने छीन ली जोगियों की सारंगियां। धनिकों ने फोड़ डाले मंगतों के भिक्षापात। शीतल पेय संगत्रों ने खींच लिया मटके का जल। उपद्रवियों ने छीनी चिता की आग। बाढ़ में बह गए सारे आंसू। अकाल में भस्म हुआ लोकगीतों का सारा सोना। मैं बिकता है और मैं बिकता हूँ, ओह कौन रचता है मेरा मैं। एक अंधा गवैया गाता है इस सदी का सारा दुख लिए, नाचता है एक रस्सी पर जिसका नहीं ओर छोड़। उजाड़ का गवैया सोने के वाद्य वाले महंतों ने छीन ली जोगियों की सारंगियां। धनिकों ने फोड़ डाले मंगतों के भिक्षापात। शीतल पेय संयंत्रों ने खींच लिया मटके का जल। उपद्रवियों ने छीनी चिता की आग। बाढ़ में बह गए सारे आंसू। अकाल में भस्म हुआ लोकगीतों का सारा सोना। मैं बिकता है और मैं बिकता हूँ, ओह कौन रचता है मेरा मैं। एक अंधा गवैया गाता है इस सदी का सारा दुख लिए, नाचता है एक रस्सी पर जिसका नहीं ओर छोड़।
1: काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे मनोज कुमार झा। इसी के साथ ही साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।

अभी आप सुन रहे थे साहित्य की, सूत्रधार थे अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम में। हेलो आकाशवाणी में आपके फ़ोन कॉल का हमें रहता है इंतज़ार। आप हमें फ़ोन करें और अभी इस कार्यक्रम में बिना नंबर बताए ही हमारे पास पहले श्रोता का फ़ोन आ चुका है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं पहले। हेलो,
1: हेलो, कमल जी बोल रहा है।
0: कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। कहिए कैसे हैं आप?
1: आपको भी स्वागत है
0: जी। कहिए।
1: प्रेम रूप का फिल्म गाना सुनना।
0: प्रेम रूप फिल्म का?
1: प्रेम रूप का
0: जी।
1: लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक।
0: जी जी, लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक से।
1: नंबर 15।
0: जी जी, समझ गए हम आपका पता, पूरा हमने समझ लिया है। और कहिए कमल जी, मौसम का मिजाज कैसा है स्टूडियो के बाहर अभी?
1: ठीक है।
0: अच्छा है,
1: ठीक है। शाम में पानी
0: शाम में

0: हुई है थोड़ी सी। चलिए तो इस सुहाने मौसम में आपकी फरमाइश का गाना हम आप तक भेज रहे हैं, आनंद लीजिए प्रेम रूप फिल्म का ये गाना।
1: अच्छा ठीक है
0: जी नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। मैं हूं आपका होस्ट सागर। आज मेरे साथ बातें होंगी हेलो आकाशवाणी में। आप भी चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9430029353 9430029353। हमारे साथ लाइन पर बने हुए एक श्रोता, सबसे पहले उनसे बात करते हैं।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो आकाशवाणी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन जनाब?
1: सर, मैं हाजीपुर से, मैं ताजू से बात कर रहा हूँ।
0: जी, अपना नाम बताया जाए।
1: मेरा नाम ताजू से है, मैं हाजीपुर से बात कर रहा हूँ, बेनीपुर।
0: बेनीपुर में मौसम का क्या मिजाज है अभी, तो सबसे पहला प्रश्न।
1: आज मौसम तो सुहाना है, थोड़ा पानी हुआ है,
0: बारिश हुई है आज।
1: हाँ हाँ, बादल लगा हुआ है।
0: चलिए, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बरखा रानी आए, कब बादल बरसे और कब मौसम सुहाना हो।
1: ठीक है, तो हम
0: ताज जी बताया तो जाए, अपनी फरमाइश बता दीजिए पहले।
1: आज मेरा फरमाइश है, नीलकमल का गाना सुनाइए रफी साहब की आवाज में।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, लेकिन ताज साहब ये बताया जाए कि मौसम सुहाना होते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है, क्या ख्याल आता है आपको बारिश के मौसम में?
1: नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई हम लोग तो रात में कि हम लोग तो नल और कल दोनों चला गया है।
0: अच्छा, तो मतलब बारिश का लेवल
1: पानी टाइम से आता नहीं है।
0: जी जी,
1: कल तो सुखा ही गया है, इसलिए
0: ये गंभीर समस्या बनी हुई
1: है।
0: हाँ, ये तो एक गंभीर समस्या है हर क्षेत्र में, लगभग पानी का चला जाना, जल है तो जीवन हम कहते हैं, तो इसी बहाने जी इसी बहाने हम लोग बात कर लें, श्रोताओं तक ये संदेश चला जाए कि बरखा का मौसम है और बारिश का पानी हम जितना संचित कर पाएं उतना संचित करें, क्यों ताज साहब? चलिए ताज साहब, हम और आप मिलकर एक अच्छे काम के लिए आज बातचीत कर रहे हैं कि जल का हम संचय करेंगे और मौसम सुहाना है, आप भी बिल्कुल अच्छे मिजाज में दिख रहे हैं, तो क्यों ना आपके मिजाज को थोड़ा और बेहतर किया जाए। सभी श्रोताओं के साथ मिलकर सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुभरात्रि।
0: आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी। रेडियो लाइन पर मौजूद हैं एक श्रोता। हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम शहाबुद्दीन बोल रहे हैं भैया, नहर मुंडोला से।
0: शहाबुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहिए, कैसे हैं आप?
1: ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आप लोग का दुआ है, कृपा है, दया दृष्टि है भैया।
0: और अभी गर्मी से कुछ राहत है या नहीं?
1: जी भैया, गर्मी से तो राहत है, हम लोग की इधर बारिश नहीं हो रहा भैया।
0: हाँ, बारिश के इंतजार में तो हम सब भी बैठे हैं, आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। बादल आते हैं, उड़ के चले जाते हैं। ये घनेरे बादल कब बरसेंगे, कब बरसेंगे, है ना?
1: जी भैया।
0: शहाबुद्दीन जी, बताया जाए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: उड़ जा रहे पंछी, देश हुआ बेगाना, वही वाला गाना सुना दीजिए भैया, बहुत अच्छा गाना है।
0: बिल्कुल,
1: हम लोग का चाचा है, वो भी गाना सुनेंगे।
0: जरूर,
1: मेरे चाचा दुदू को चाचा है।
0: श्योर, सबों के साथ मिलकर सुनिए। आपके आप ही के चाचा जी क्यों, रेडियो सेट पे मौजूद अभी जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना जिसे आपने चुना है, भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज है।
1: थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी सर, मेरा नाम विष्णु देव ठाकुर है
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सिंगलपुर गाँव बहादुरपुर प्रखंड जिला दरभंगा से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताया जाए विष्णु जी, आज किस गाने की फरमाइश के लिए फोन लगाया गया है?
1: जी सर, भक्ति देशभक्ति गीत है, मुकेश कुमार सर के आवाज में एक
0: जी जी
1: वही सुना दीजिए।
0: देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं, किस कारण से आज आप देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज के दिन हमारे क्षेत्र के एक वीर सैनिक का जो है सो शहादत दिवस है।
0: अच्छा, आप उनका नाम बता पाएंगे हमें?
1: जी, नाम रमन कुमार चौधरी उनका नाम है।
0: जी बिल्कुल, देश के लिए शहादत देने वालों के लिए सलाम है हमारी ओर से भी, उनको हम नमन करते हैं। और 26 तारीख को, आने वाले 26 तारीख को हम कारगिल दिवस भी मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस हम मनाते रहे हैं हमेशा। 27वां साल होगा इस बार, तो हम बाकी शहीदों को भी याद करते हुए आपकी फरमाइश का गाना रेडियो सेट पर भेजते हैं।
1: ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए आपका।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं रामपट्टी बिहार से शुभ नारायण से बोल रहा हूँ।
0: शुभ नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। कैसे हैं आप?
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है सर, बहुत सुंदर है, बहुत ठीक ठाक।
0: और भी जो कॉमन सा सवाल हम सबों से पूछ रहे हैं, आपके इधर बारिश का क्या मिजाज है? बादल बरस रहे हैं या नहीं?
1: बारिश तो हम लोग के यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ 10 मिनट पहले लगा कुछ बारिश हुई थी तो कुछ आबादी हुआ था उस समय में, लेकिन अब जो है सब बारिश बिल्कुल बंद हो चुका है। काफी गर्मी पड़ रहा है हमारे यहाँ अभी, और गर्मी से परेशान है। लाइन भी नहीं है, जब उसकी पंखा चलता है गर्मी से हम परेशान हो चुका है।
0: बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन थोड़ी सी नरमी हम ला सकते हैं बाहर के मौसम में तो नहीं, लेकिन आपके अंदर के मौसम में आपकी फरमाइश को पूरा करके बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: सर हमें सुबह चिंता की सुना लीजिए, बाहर फूल खड़ता है मेरा महबूब आया।
0: बहुत खूबसूरत गाने की फरमाइश की है शुभ नारायण जी आपने। इस गाने को सुनने के बाद दिल बहुत खुशनुमा हो जाए आपका, गर्मी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, हम ये उम्मीद करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश का गाना आपके रेडियो सेट पे आनंद लीजिए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जनाब, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार, ट्रेनिंग ग्राम पोस्ट अजमेर जिला महोगा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश जी उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम आजकल?
1: जी सर, अभी तो दो दिन तीन दिन हमारे यहाँ लगातार बारिश होती रही, लेकिन आज बहुत तेज धूप निकली हुई थी, अच्छा मौसम एकदम साफ हो गया था।
0: चलिए कम से कम दो तीन दिन, दो तीन दिन आप लोगों ने बारिश का मजा लिया है। यहाँ तो बिल्कुल बारिश हमसे रूठी हुई है, बादल हमसे रूठे हुए हैं, थोड़ी बहुत फुहार आ जाती है और चली जाती है दिल को ललचा करके। बताइए सुरेश जी। जी जी सुरेश जी, बताया जाए सबसे पहले आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: आज मुझे सुनिया फिल्म का नाम, फिल्म का नाम शायद नेत्रदन है और गीत के बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता पावन होगा।
0: झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म है शायद जीवन मृत्यु।
1: जीवन मृत्यु है जी
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो सुरेश जी आप अपने रेडियो सेट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, आई थिंक न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप सुन रहे हैं हमें।
1: न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भेज रहे हैं आपके पास आपका प्रिय गाना। मोबाइल के साउंड को थोड़ा बढ़ा लीजिए और अपने प्रिय गाने का आनंद लीजिए।
1: ओके सर, नमस्कार।
0: आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं साहब?
1: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सज्जीत रघुवंशी बात कर रहा हूँ। सर
0: सज्जीत जी?
1: जी सर।
0: कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया सर जी, और आपको कार्यक्रम का आनंद ले रहा है सर जी।
0: बिल्कुल, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आकाशवाणी दरभंगा को सुनने वाले श्रोताओं को जब हम अपनी चीज़ें पहुंचा पाते हैं और जब आप हमारे साथ बनते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है।
1: जी सर हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है सर जी, क्योंकि जी हमको सर आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे श्रोताओं जो भाग लेते हैं सर कार्यक्रम में उनकी मनपसंद चीज सुनने को मिलते सर जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी दरभंगा की पूरी कोशिश है कि श्रोता जैसा चाहते हैं, क्योंकि श्रोताओं से ही कार्यक्रम है। तो बताइए आज आपकी फरमाइश क्या है?
1: सर जी आप मुझे सुनो दीजिए सर, फिल्म का नाम है कसूर और गीत के बोल रहेंगे सर जी, जो मेरी वो कुछ है नित्य प्यार से वो खुशी बन गए हो तुम।
0: जी बिल्कुल, कसूर फिल्म का गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज।
1: जी सर, और कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना सर जी?
0: जी बताइए
1: सर। सबसे पहले तो आपको
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: और हमारे सर गौतम राय बोले जी हैं, मोहम्मद नूर अंसारी जी हैं, गौतम राय बोले जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, टेक्टन अग्रवाल जी हैं और राजन गंगवार जी हैं, सुनने वाले सर सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश का गाना आपके सभी दोस्तों के लिए और हमारे रेडियो सेट से जुड़े हुए अभी सभी श्रोताओं के लिए आपकी फरमाइश का गाना हम भेज रहे हैं, तो आनंद लीजिए अपने गीतों का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। हेलो आकाशवाणी, चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गाना। हमारा नंबर है 9430029353 9430029353। अभी जुड़ चुके हैं लाइन पे हमारे साथ एक श्रोता, चलिए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नार मंतोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: साबिर परवाना जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे रेडियो के रेगुलर लिस्नर हैं जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप तो दुआ है, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपका कॉल आ गया तो और मिजाज खुश है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे आगे गाना सुना दीजिए, जब प्यार किया तो दौड़ना क्या।
0: बहुत खूबसूरत गाने की फरमाइश की है आपने, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। और बताइए सबीर जी, लोगों से बस अभी एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि बरसात आपकी ओर क्या रुख करके बैठा है?
1: हमारे दोस्त नारायण जी बता ही दिए आपको, दोनों आदमी का घर 10-1 किलोमीटर का दूरी
0: है। अरे बहुत खूब बहुत खूब, आप सब लोग एक ही जगह से लगातार हमें फोन आ रहे हैं, देखिए क्या बात है। नाहर मंटोला में लगता है सिग्नल बहुत तेज है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबों से बात करेंगे, सबकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो साबिर जी चलिए अपने मित्रों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने परिवार के साथ और हमारे सभी श्रोताओं के साथ सुनिए अपनी पसंद का गाना, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो पर।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल करें हमारे नंबर 9430029353 पर 9430029353। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक श्रोता, चलिए करते हैं उनके साथ बातचीत शुरू। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं जनाब?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला से बात कर रहे हैं राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
0: और शिमला में क्या करते हैं राकेश जी आप?
1: हम तो बागवानी करते हैं, और हम कहना चाहता हूँ कि कल जो हमारा जो है अपने घर में बाकी तो तोड़ दी है, कल हम सेब तोड़ रहे हैं, हम सेब की बागवानी करते हैं और कल परसों मार्केट में हम पहुँचा देंगे।
0: और बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
1: जी गाना सुनना है कोरा कागज मूवी का, रुके रुपया कैसे मनाऊं, ये बड़ा सुनना है।
0: कोरा कागज फिल्म का गाना, आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। आप सेब की खेती करते हैं, मीठे फलों की, गाना भी उतना ही मीठा आपने चुना है और बातचीत भी आप उतनी ही मीठी कर रहे हैं हमारे साथ।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: राकेश जी, शिमला का मिजाज कैसा है मौसम का?
1: शिमला का मिजाज अच्छा है, और बीच बीच में जो है बारिश भी हो रही है, और जो जैसे कि पूरे देश में जो बरसात का जो सीजन चल रहा है सावन में लगा, तो और शिमला में भी झमाझम बारिश हो रही है।
0: झमाझम बारिश हो रही है। अच्छा, ये सेब की खेती के लिए बारिश फायदेमंद है या नुकसानदेह होता है?
1: फायदेमंद भी है, फायदा अगर मैं टाइम से अगर बारिश है तो सेब ज्यादा जाते, और नुकसान इसका ये है कि जैसे कि फल कम तोड़ते हैं
0: जी,
1: तो उसका नुकसान ये है कि अगर हम छिड़काव कर दिया, अगर मानो कि अगर छिड़काव अगर छिड़काव से पहले बारिश आ गई तो जितनी हमने छिड़काव किया वो सब धुल जाता है, तो फिर जो है सेब में जो कलर नहीं आता।
0: अच्छा अच्छा, मतलब अगर सही समय पे हुआ तो फायदेमंद, और अगर गलत समय पे हो गया तो फिर नुकसानदेह।
1: नुकसान भी है। जी जी जी जी।
0: चलिए राकेश जी, आपकी फरमाइश का गाना हम भेज रहे हैं, गाने को जरा तेज साउंड में बजाइएगा, हो सकता है सेबों का दिल भी खिल जाए, थोड़े और लाल हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फरमाइश का गीत आपके पास भेज रहे हैं, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी।

0: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जनाब, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ। सर
0: मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया सर जी।
0: और बताइए, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का मौसम कैसा है?
1: सर हमारे यहाँ तो कभी कभी बारिश हो रही है और गर्मी भी काफी तेज है।
0: हर जगह का वही हाल है, पूरे देश में लगता है मानसून रूठा हुआ है अभी।
1: जी सर, जी सर, एक दिन बारिश हो जाती है तो 10 दिन तक रुक जाती है, गर्मी होती है बहुत तकलीफ है।
0: गर्मी तो हर जगह, लोग गर्मी से परेशान हैं। जितने साथियों से बात हो रही है, जितने श्रोताओं से बात हो रही है, सबकी यही शिकायत है। उम्मीद करते हैं मौसम अपना
1: और
0: जी।
1: सर ये जो ज्यादा गर्मी का कारण हम ही है सर।
0: बिल्कुल,
1: हम और तुम क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, ज्यादा लगा नहीं रहे। बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी बात आपने कही कि हम लगा कम रहे हैं, पेड़ काट ज्यादा रहे हैं, अंधाधुंध हम लोग उन्नति के लिए कर रहे हैं।
1: जी जी प्रकृति से अगर 6 साल करोगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आप बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो प्रकृति हमें दे रही है हम उससे दोगुना उससे वसूलना चाहते हैं। यही कारण है कि वो भी हमसे रूठी हुई है। मुकेश जी बताइए, आप आज किस गाने की फरमाइश लेकर हाजिर हुए हैं?
1: सर फिल्म का नाम है लैला मजनू, गीत को बोला कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कुछ नाम बोल सकता हूँ सर?
0: बिल्कुल जरूर आप बोल सकते हैं।
1: सर मेरे बड़े भाई साहब असूल सुरेश राजपाल पंकज मेरी बहन काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्मी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह और हमारे एक दोस्त जयपाल यादव जी।
0: तो चलिए अपने सभी साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने सभी अजीजों के साथ आनंद लीजिए आप अपनी फरमाइश के इस गीत का। नमस्कार, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो प्रणाम भैया।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम मुबारकपुर रेलवे से अक्रम बात कर रहे हैं, गांव
0: अकरम
1: कोठवन्ना, जिला दरभंगा मेरा।
0: अकरम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। जी बताइए, आपकी फरमाइश क्या है?
1: फरमाइश तो वही धर्मवीर का है, हम बंजारों की बात में पूछो जी। ये एक दफे तो मेरा कॉल कट गया था भैया।
0: जी जी बिल्कुल, आपने कॉल किया था और हमारी बात नहीं हो पाई थी।
1: हाँ तो ये भी है, ये बहुत बड़ा जो है ये है कि मैं एक ही हाथ का आदमी हूँ, वो भी उल्टे हाथ का, और कॉल लगाने में हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है कि मैं लगाता हूँ रोटेली, आप पकड़ भी लेता है।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप कॉल लगाते हैं और कॉल पकड़ लेता है, यानी आप रेडियो

0: से जितना प्यार करते हैं, रेडियो भी आपसे उतना ही प्यार कर रहा है।
1: जी, बहुत पूरे हिंदुस्तान का नंबर है मेरा, मेरे पास
0: जी।
1: और ये भी तो ये है कि उल्टा ही हाथ है मेरा
0: जी,
1: बहुत कॉलर भाई जानते हैं, सीधा हाथ नहीं है।
0: अकरम साहब, कुदरत ने अगर कुछ लिया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो देती जरूर है, ये हमारा मानना है। तो अकरम साहब, समय कम है तो हम चाहते हैं कि आप अपने गाने की गाने का आनंद ले पाएं, तो हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे गाना, आनंद लीजिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: इसी गाने के संग हेलो आकाशवाणी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर लिख करके भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460004। तो दीजिए अपने रेडियो दोस्त सागर को इजाजत। शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे हेलो आकाशवाणी। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज

0: लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news brought by Saira Mujtaba.